सुप्रभात। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 की श्रावण मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 1 अगस्त सन 2026 सुबह के 7 बजने को है। आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अब आज की प्रातःकालीन सभा का शुभारंभ करते हैं।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर देश का चैनल देश के लिए। आइए श्रोताओं आपको बताते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। कौन कौन से कार्यक्रम आज आप सुनने वाले हैं। जीवन सौरभ कार्यक्रम का प्रसारण होगा अब से कुछ ही देर के बाद। अक्षय निधि कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे 7:10 से, जिसमें आज आप सुनेंगे ऋग्वेद के प्रथम मंडल से सूक्त 178 का वाचन। भक्ति संगीत प्रसारित किया जाएगा 7:20 से। 8 का समय होगा कार्यक्रम वतन का राग सुनने का। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित रहेगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर। 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से, जिसमें आज राजा संग्राम शाह शीर्षक होगा कार्यक्रम का और इसका एपिसोड प्रथम प्रसारित किया जाएगा। 9:00 समय होगा कार्यक्रम योग संवाद का, जिसमें आप सुनेंगे योग वाशिष्ठ मुमुक्ष व्यवहार प्रकरण। भारत विभूति कार्यक्रम में आज का आकर्षण है आशुतोष मुखर्जी, प्रसारण समय 9:30। भोपाल शहर की साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी आप सुनते हैं परिक्रमा कार्यक्रम में। आज ये कार्यक्रम दिन में 10:00 प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम आजाद हिंद आप सुनेंगे। भारत रत्न राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर आज का कार्यक्रम ये केंद्रित होगा। प्रसारण समय होगा 10:30 से। दिन में 11:00 सुरसागर कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे डॉक्टर ऋषि मिश्रा का गायन। दिन में 11:30 का समय होगा कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद का। 8:00 ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कुछ खास कार्यक्रम आपके लिए। और अब आइए सुनते हैं जीवन सौरभ।
1: जीवन सौरभ। जीवन में अक्सर हम सोचते हैं कि खुशियां कहीं आगे हैं, भविष्य में हैं। अभी हम जीवन में कुछ कर लें फिर खुश होंगे। लेकिन खुश रहना कोई मुश्किल काम नहीं है। कुछ सूत्र हैं खुश रहने के, कुछ मंत्र हैं। महादेवी वर्मा की कविता में एक ऐसा ही सूत्र है प्रसन्न रहने का। आइए इन पंक्तियों से होकर हम गुजरते हैं। महादेवी वर्मा कहती हैं, आ गए तुम, द्वार खुला है, अंदर आओ, पर तनिक ठहरो। ड्योढ़ी पर पड़े पायदान पर अपना अहम झाड़ाना, मधुमालती लिपटी है मुंडेर से, अपनी नाराजगी वहीं उड़ेलाना। तुलसी के क्यारे में मन की चटकन चढ़ा आना, अपनी व्यस्तताएं बाहर खूंटी पर ही टांग आना, जूतों संग हर नकारात्मकता उतार आना, बाहर खेलते बच्चों से थोड़ी शरारत मांग लाना। वो गुलाब के गमले में मुस्कान लगी है, तोड़कर पहन आना। लाओ अपनी उलझने मुझे थमा दो, तुम्हारी थकान पर मनुहारों का पंखा झुला दूं। देखो शाम बिछाई है मैंने, सूरज क्षितिज पर बांधा है, लाली छिड़की है नभ पर, प्रेम और विश्वास की मध्यम आंच पर चाय चढ़ाई है, घूंट घूंट पीना। सुनो इतना मुश्किल भी नहीं है खुश रहकर जीना। वास्तव में इस कविता की एक एक पंक्ति खुशियों के मंत्र की तरह है, जिनसे खुशियों के द्वार खुल सकते हैं।
2: जीवन सौरभ।
0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम। आइए सुनते हैं कार्यक्रम अक्षय निधि।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि। अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 178 से वाचन। ऋषि हैं अगस्त्य मैत्रा वरुणी, देवता हैं इंद्र और छंद है त्रिष्टुप।
4: यद्धस्या त इंद्र सृष्टिरस्ति यया बभूथ जरित्रिभ्य ऊति मा नः कामं महयन्तमा धग्विश्वा ते अश्याम परियाप आयोः। हे इंद्रदेव, जिन धनों से आप स्तोताओं का संरक्षण करते हैं वह हमें प्रदान करें, हमारी श्रेष्ठ अभिलाषाओं को न रोककर आप हमारे लिए उपयोगी ऐश्वर्य प्रदान करें। न घा राजेंद्र आदभन्नो या नु स्वसारा कृणवंत योनौ आपश्चिदस्मै सुतुका अवेशन गमन्न इंद्रह सख्या वयश्च। हमारी अंगुलियों ने जिन यज्ञीय कार्यों को यज्ञ स्थल में सोमाभिषवण के रूप में किया है उन्हें तेजस्वी इंद्रदेव नष्ट न करें। इस कार्य के संपादन के लिए शुद्ध जल की भी प्राप्ति हो। इंद्रदेव हमारे लिए मैत्री भाव और श्रेष्ठ पोषक अन्न प्रदान करें। जेता नृभिरिन्द्रः पृत्सु शूरः श्रोता हवम नाधमानस्य कारोः प्रभर्ता रथम दाशुष उपाक उद्यन्ता गिरो यदि च त्मना भूत। शूरवीर इंद्रदेव युद्धों में सैन्य शक्ति के सहयोग से ऐश्वर्य विजेता विपदाग्रस्त स्तोता की करुण पुकार को सुनने वाले दानी यजमान के निकट रथ को रोकने वाले तथा जो साधक श्रद्धा भावना से प्रार्थना करने वाले हैं उनकी वाणी रूपी साधना को ऊर्ध्वगामी बनाने वाले हैं। एवा नृभिरिन्द्रः सुश्रवस्या प्रखादः वृक्षो अभि मित्रिणोभूत् समरिय इषः स्तवते विवाची सत्राकरो यजमानस्य शंसः। श्रेष्ठ यशस्वी इंद्रदेव मनुष्यों के साथ मित्रता पूर्ण व्यवहार करने वाले यजमान की हवियों को ही ग्रहण करते हैं। स्तोताओं की प्रार्थना को पूर्ण करने वाले और यजमान के शुभचिंतक इंद्रदेव जहां परस्पर मिलकर अनेक स्तोत्रों से आवाहित किए जाते हैं ऐसे युद्ध में अपने मित्रों का संरक्षण करते हैं। त्वया वयम् मघवन्निन्द्र शत्रुनभि श्याम महतो मन्यमानान् त्वं त्राता त्वमु नो वृधे भूर्विद्यामेशं व्रजनं जीरदानुम्। हे ऐश्वर्यवान इंद्रदेव, हम आपके सहयोग से बड़े बड़े अहंकारी शत्रुओं को भी पराजित करें। आप ही हमारे संरक्षक और प्रगति के कारण बने, जिससे हम अन्न बल और दीर्घ जीवन प्राप्त कर सकें।
3: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 178 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
0: देश का चैनल देश के लिए रेडियो आजाद हिंद इस समय आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:11 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम भक्ति संगीत।

जैसे भगवान सूर्योदय होने मात्र से ही समस्त अंधकार को नष्ट कर देते हैं, वैसे ही श्रीहरि का नाम एक बार उच्चारण करने मात्र से ही जीव मात्र के संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है।

ईश्वर का कीर्तन करने से कीर्तन तो समाप्त हो जाता है, भजन बंद हो जाता है, किंतु भक्त और भगवान के बीच जो तार जुड़ता है ना, वो जन्मों जन्मों तक नहीं टूटता।

भगवान और भक्त का रिश्ता लेन देन का नहीं होता, ये वो रिश्ता है जिसमें भक्त रोता है तो भगवान की आंखें भर आती हैं और भगवान मुस्कुराते हैं तो भक्त भी मुस्कुराता है, भक्त का जीवन संवर जाता है।

संसार के सारे रिश्ते स्वार्थ से जुड़ते हैं, किंतु भक्त और भगवान का रिश्ता निस्वार्थ प्रेम से जुड़ता है। यहाँ मांगने की आवश्यकता नहीं, प्रभु का स्मरण करने मात्र से ही सब कुछ भक्त पा जाता है।

भगवान मंदिर में नहीं, भक्त के अश्रुओं में बरसते हैं। जहां सच्ची श्रद्धा की पुकार होती है, वहां पत्थर भी पिघलकर भगवान बन जाता है।

प्रभु की भक्ति के लिए किसी भी तरह के साधन प्रसाधन की आवश्यकता नहीं होती, केवल एक सच्चे भाव की आवश्यकता होती है। क्योंकि जहाँ भाव है, जहाँ श्रद्धा है, वहीं भगवान का निवास हो जाता है।

पूजन पाठ का अर्थ अपना मन भगवान को सौंप देना। जब तन झुकता है और मन जुड़ता है तभी असली अर्चना होती है।

भक्ति संगीत कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे थे रेडियो आजाद हिंद से 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, ये थी भक्ति संगीत कार्यक्रम की अंतिम भक्ति रचना। इसके साथ ही भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। सुबह के 8 बजने को है हमारा अगला कार्यक्रम, आप सुनेंगे वतन का राग। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वतन का राग कार्यक्रम में आज हम स्मरण कर रहे हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और पत्रकार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के अविस्मरणीय योगदान ने देश के स्वाधीनता संग्राम को एक निर्णायक दिशा दी थी। गरम दल के नेता रहे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने हुंकार भरते हुए कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और उनके इस उद्घोष ने भारतीय जनमानस को जगा कर रख दिया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई सन 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी के पास ग्राम चिखली में हुआ था। उनका पूरा नाम बलवंत गंगाधर तिलक था। उनके पिता गंगाधर रामचंद्र तिलक एक शिक्षक और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। मात्र 16 वर्ष की उम्र में ही तिलक के पिता का निधन हो गया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बिना किसी व्यवधान के अपनी शिक्षा जारी रखी। पिता की मृत्यु के 4 महीने के अंदर ही उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली और डेक्कन कॉलेज पूना में दाखिला लिया। उन्होंने सन 1876 में बीए ऑनर्स की परीक्षा पास की और सन 1879 में मुंबई विश्वविद्यालय से एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। तिलक जी आरंभ से ही अन्याय के घोर विरोधी थे। कानून की पढ़ाई करते समय ही उनकी मित्रता गोपाल गणेश अगरकर से हुई। दोनों देश की स्थिति पर लंबे विचार विमर्श किया करते थे। मन में ये चिंता थी कि देशवासियों की सेवा की कौन सी सर्वोत्तम योजना बनाई जा सकती है, और अंततः दोनों ने ये संकल्प लिया कि वो कभी भी सरकारी नौकरी नहीं करेंगे तथा नई पीढ़ी को सस्ती और अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्राइवेट हाई स्कूल और कॉलेज खोलेंगे। उनके सहपाठी दोनों की आदर्शवादी बातों का मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन तिलक जी अंग्रेजी शिक्षा के घोर आलोचक थे। उनका मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली छात्रों के मन में भारतीय सभ्यता के प्रति हीन भावना पैदा करती है, उसका अनादर सिखाती है। इसी कारण उन्होंने आगे चलकर डेक्कन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की ताकि भारत में शिक्षा का स्तर सुधर सके। अपने पिता की ही तरह लोकमान्य गंगाधर तिलक ने भी पहले अध्यापन का कार्य आरंभ किया। कुछ समय उन्होंने स्कूल और कॉलेज में गणित पढ़ाया, लेकिन देश के हालात उन्हें बेचैन कर रहे थे। वो कराहती हुई जनता की पुकार सुन पा रहे थे। 19वीं सदी के आखिरी सालों में स्वदेशी का नारा लेकर बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के गांव-गांव घूमे। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि स्वराज का वक्त आ चुका है और हमें अपना सब कुछ इस हेतु झोंक देना चाहिए। महाराष्ट्र में गणपति बप्पा मौर्या की गूंज सन 1893 के पहले भी थी ही। गणेश जन्मोत्सव परंपरागत तरीके से घरों में मनाया जाता था, लेकिन इसे सामाजिक राजनीतिक एकता और जन जागरण का हथियार बनाया लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। गणेश उत्सव और शिवाजी जयंती अब सार्वजनिक समारोह बन गए और राष्ट्रीय एकता का राग इस बहाने बह चला। यही एकता आगे चलकर गुलाम भारत की आजादी के संघर्ष में एक बेजोड़ हथियार साबित हुई।

0: ये वो वक्त था जब तिलक जी को लगता था कि भारतीयों पर हो रहे अत्याचार और उनके संघर्ष की कहानी दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। तब लोकमान्य तिलक एक प्रखर पत्रकार के रूप में सामने आए। उन्होंने राष्ट्रीय चेतना की जागृति के लिए मराठी में केसरी और इंग्लिश में द मराठा नाम से दो दैनिक समाचार पत्र शुरू किए, जो जनता में बहुत लोकप्रिय हुए। इन समाचार पत्रों के जरिए ब्रिटिश शासन की कटु आलोचना के लिए वो विख्यात हो गए। केसरी में छपने वाले उनके लेखों की वजह से उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा, लेकिन तिलक जी की आवाज बुलंद रही। सन 1896 में बंबई प्रेसिडेंसी को भयंकर अकाल का सामना करना पड़ा। तिलक जी पूरी तरह राहत कार्यों में जुट गए। उन्होंने बंबई सरकार से अकाल संहिता लागू करने का आग्रह किया। अकाल का प्रभाव कम करने के लिए उन्होंने सरकार को अनेक सुझाव भी दिए। पूना में उन्होंने बहुत सस्ती अनाज की दुकानें खोलकर अकाल के कारण होने वाले दंगों को रोका। तिलक जी ने प्लेग की बीमारी के दौरान देशवासियों की जो सेवा की, उसे भी भुलाया नहीं जा सकता। जैसे ही पूना में प्लेग के लक्षण प्रकट हुए, उन्होंने हिंदू प्लेग अस्पताल शुरू किया और कई दिनों तक इसके लिए धन जुटाने का कार्य किया। पूना के अधिकांश नेता उस दौरान शहर छोड़कर बाहर चले गए थे, लेकिन तिलक जी वहीं रहे। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया। वे खोजी दलों के साथ स्वयं सेवक के रूप में गए, अस्पताल का प्रबंध किया, शिविर में निःशुल्क रसोई की व्यवस्था की और जनता के सामने आ रही कठिनाइयों के बारे में सरकार को बताते रहे। सन 1890 में लोकमान्य तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गए थे, लेकिन इसके नरम दल के लिए तिलक जी के विचार ज्यादा ही उग्र थे। फलतः जल्दी ही कांग्रेस से उनका वैचारिक मतभेद सामने आया। गरम दल में लोकमान्य तिलक के साथ लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल शामिल हुए, जिन्हें हम आज भी लाल बाल और पाल की तिकड़ी के रूप में जानते हैं। बाल गंगाधर तिलक के विरोध की गूंज अंग्रेजी हुक्मरानों को बेचैन कर रही थी। भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने जब सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की, तो तिलक जी ने इस विभाजन को रद्द करने की मांग का जोरदार समर्थन किया और ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की वकालत की, जो जल्दी ही एक देशव्यापी आंदोलन बन गया। उनके द्वारा शुरू की गई राजनीतिक गतिविधियों, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और सत्याग्रह को ही आगे चलकर गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक असहयोग आंदोलन के रूप में अपनाया। अपने पत्र केसरी में तिलक जी ने अंग्रेजों की नीतियों की पोल खोलते हुए एक लेख लिखा था, जिसका शीर्षक था देश का दुर्भाग्य। इसे पढ़कर अंग्रेजी हुकूमत जैसे तिलमिला उठी। उनको भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के अंतर्गत राजद्रोह के अभियोग में 27 जुलाई सन 1897 को गिरफ्तार कर लिया गया। तिलक जी एक अनुभवी वकील थे। उन्होंने अपने बचाव में जो ऐतिहासिक जिरह की, वो कई दिनों तक लगातार चली, लेकिन अंततः उन्हें 6 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई और बर्मा के मांडले जेल में बंद कर दिया गया।
1: जब

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एक निर्भीक पत्रकार तो थे ही, साथ ही वो एक गंभीर चिंतक और लेखक भी थे। तिलक जी ने वेदों के काल निर्धारण से संबंधित अपने अनुसंधान के परिणाम स्वरूप वेदों की प्राचीनता पर एक निबंध लिखा, जो ज्योतिषीय गणित अवलोकन के प्रमाणों पर आधारित था। इस पूरे निबंध को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक की प्रशंसा यूरोप और अमेरिका के कई विद्वानों ने की और तिलक जी के निष्कर्षों को पूरी तरह से स्वीकार किया गया। उन्होंने कई किताबें लिखी। उनके द्वारा लिखित पुस्तकें हैं द ओरियन, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष आदि। लेकिन श्रीमद भगवद गीता की व्याख्या को लेकर बर्मा के मांडले जेल में लिखी गई गीता रहस्य उनकी सर्वोत्कृष्ट कृति है, जिसका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इसमें उन्होंने श्रीमद भगवद गीता के कर्म योग की वृहद व्याख्या की। उन्होंने इस ग्रंथ के माध्यम से बताया कि गीता चिंतन उन लोगों के लिए नहीं है जो स्वार्थपूर्ण सांसारिक जीवन बिताने के बाद खाली समय में बैठकर इसे पढ़ने लगते हैं। गीता रहस्य में ये दार्शनिकता निहित है कि हमें मुक्ति की ओर ध्यान रखते हुए भी सांसारिक कर्तव्य कैसे करने चाहिए। मांडले जेल से रिहा होने के बाद तिलक जी एक बार फिर से जुट गए स्वराज के अभियान में। अप्रैल सन 1916 में उन्होंने एनी बेसेंट की मदद से होम रूल लीग की स्थापना की। स्वराज के संघर्ष में ये एक अहम पड़ाव था। होम रूल आंदोलन के समय बाल गंगाधर तिलक को बहुत प्रसिद्धि मिली। इसी दौरान उनकी सार्वजनिक सेवाओं को देखते हुए लोग उन्हें लोकमान्य कहकर पुकारने लगे। तिलक जी लगातार जनता को एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार कर रहे थे। वो केंद्रीय असेंबली से लेकर क्षेत्रीय सरकारों तक भारतीयों की भागीदारी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहते थे। फूट डालो और राज करो, अंग्रेजों की इस साजिश के खिलाफ तिलक जी ने भारतीय जनमानस में राष्ट्रीय एकता का मंत्र फूंका। लखनऊ समझौता, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक एकता के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया वो अविस्मरणीय है। भारतीय क्रांति के जनक कहे जाने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1 अगस्त सन 1920 को मुंबई में अंतिम सांस ली। तिलक जी को याद करते हुए महात्मा गांधी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। लेकिन सच तो ये है कि बाल गंगाधर तिलक प्रतीक हैं उस मानव गरिमा के, जहां स्वराज सबसे ऊपर है। उनके जीते जी तो देश आजाद नहीं हो सका, लेकिन अनगिनत भारतवासियों के मन में वो स्वराज की जिद बो गए थे और अंततः देश आजाद हुआ। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आपके साथ हूं मैं सुनीता सिंह। प्रस्तुत है कार्यक्रम मध्य भारत के जनजातीय राजवंश और स्थापत्य कला में उनका योगदान। समय की एक सुदीर्घ यात्रा तय करते हुए एक देश, एक समाज की अपनी पहचान बनती है। पीढ़ियों की आवाजाही में कुछ निशान बनते हैं, कुछ निशान छूटते हैं, जो किसी सभ्यता, किसी समाज के होने की गवाही देते हैं। धरती के सीने पर मौन खड़े ये महल, किले, दुर्ग, मंदिर या बावड़ियां कितनी कहानी समेटे हैं। इतिहास इन निशानियों को गौर से देखता है, इन साक्ष्यों को टटोलता है, इनके एकांत में बैठ इन कहानियों को सुनता है और फिर वर्तमान पीढ़ी को सुनाता है। इस तरह किसी देश की सभ्यता और संस्कृति से, उसकी रंगत, उसकी महक से हम परिचित होते हैं। और हमारे देश का तो एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जितना प्राचीन उतना ही व्यापक। अपने इस कार्यक्रम में हम मध्य भारत के जनजातीय राजवंशों के इतिहास और स्थापत्य कला में उनके योगदान पर चर्चा करेंगे। हम आपको बता दें कि मध्य भारत में मुख्य रूप से चार राज्यवंश हुए हैं। गढ़ा मंडला का गोंड राज्य, देवगढ़ का गोंड राज्य, चंद्रपुर का गोंड राज्य और खेरला का गोंड राज्य। इसके अलावा भी अनेक गोंड रियासतें यहाँ रही हैं। अपनी इस कार्यक्रम श्रृंखला की शुरुआत हम गढ़ा मंडला के गोंड राजवंश से करने जा रहे हैं। गढ़ा मंडला के गोंड राजवंश में प्रतापी राजा हुए संग्राम शाह और इसी राजवंश में हुई सुप्रसिद्ध वीरांगना रानी दुर्गावती। तो आइए जानते हैं गढ़ा मंडला के गोंड राजवंश का इतिहास और स्थापत्य कला में उनके योगदान के विषय में। हमारे बीच है पुरातत्वविद सुश्री पूजा सक्सेना। आपको पुरातत्व के क्षेत्र में अध्ययन और संरक्षण का 23 वर्षों का लंबा अनुभव है। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि धर्मपाल शोधपीठ द्वारा पूजा जी की एक पुस्तक का प्रकाशन भी किया गया है, गोंड राजवंशों की स्थापत्य कला, जिसका संपादन किया है प्रोफेसर संतोष कुमार वर्मा ने। नमस्कार पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हम आज गढ़ा मंडला के गोंड राजवंश की बात करने जा रहे हैं और स्थापत्य कला में उनके योगदान की चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि आप ये बताएं कि जो गोंड राजवंश था गढ़ा मंडला का, उसका उद्भव कैसे हुआ?
1: भारत का इतिहास बहुत विस्तृत है और 12वीं सदी में हम देखते हैं कि एक मोड़ आता है
0: जी,
1: और जब मोहम्मद गौरी के आक्रमण दिल्ली पर होते हैं और विदेशी सत्ता काबिज हो जाती है और धीरे धीरे जो है वहाँ बहुत उथल पुथल चलती है। उसी समय मध्य भारत में, जहाँ पर 11वीं-12वीं सदी में बहुत से राजपूतों का शासन था, जैसे परमार, प्रतिहार, कलचुरी या चंदेल, उन स्थानों पर जब 13वीं सदी में इनका शासन समाप्त होता है, उसके बाद अचानक से हमें पूरे मध्य भारत से अर्थ है मध्य प्रदेश और उसके आसपास लगे हुए प्रदेश
0: जी,
1: तो इन क्षेत्रों में हमें गोंड राजवंशों का शासन दिखाई देता है, जिसमें से सबसे प्रमुख रहा गढ़ा मंडला का गोंड राज्य। गढ़ा से अर्थ है जबलपुर, मध्य प्रदेश का जबलपुर
0: जी,
1: नर्मदा के किनारे बसा हुआ। तो उनका सबसे प्रतापी राजा संग्राम शाह है। संग्राम शाह से पहले भी जो उनकी वंशावलियां मिलती हैं, उसमें 48 राजाओं का जिक्र आता है।
0: अच्छा,
1: तो उसमें 49वें नंबर पर संग्राम शाह है।
0: हाँ, अच्छा। हाँ।
1: और गढ़ा मंडला में जो मदन महल है, जबलपुर के पास में जो मदन महल है, वो उनका प्रमुख केंद्र रहा।
0: तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि गढ़ा मंडला में, जैसे कि आपने बताया कि पहले राजपूतों का शासन था, उनका राज्य था, धीरे धीरे वो सारा राज्य समाप्त हुआ और गोंड जो राजवंश है उसकी स्थापना हुई। तो ये स्थापना कैसे हुई, और विशेष रुचि ये जानने में है कि संग्राम शाह जो हैं, जिनको आपने बताया कि वो 49वें अपनी पीढ़ी के राजा थे, तो वो किस तरह से राजा बने?
1: गढ़ा के गोंड राजवंश की स्थापना के संबंध में बहुत सारी जनश्रुतियां हैं, उसमें से एक जनश्रुति मैं आपको सुनाती हूँ।
0: जी जी।
1: कहानी है कि गढ़ा के राजा ने यह घोषणा की कि वह अपनी पुत्री रत्नावली का विवाह करना चाहते हैं।
0: अच्छा।
1: और सभी लोग नदी के किनारे पर इकट्ठे हों। तो सब लोग इकट्ठे हुए, तो वहां पर एक सर्वे पाठक नाम का एक ब्राह्मण भी खड़ा था। तो उसने देखा दूर एक गोंड लड़का खड़ा है, जदुराव। हाँ। उसका बाद में नाम यादव राव भी मिलता है
0: जी।
1: तो जदुराव भी खड़ा था, तो सर्वे पाठक ने कहा कि आ जाओ, तुम भी खड़े हो जाओ। तो जदुराव आकर वहां नदी के किनारे खड़ा हो गया। और जैसा कि शर्त थी कि जिसके सर पर नीलकंठ पक्षी बैठेगा उसी से रत्नावली का विवाह होगा।
0: अच्छा।
1: तो जब नीलकंठ उड़ा तो वो जाकर जदुराव के सर पर बैठ गया।
0: अच्छा।
1: तो जदुराव और रत्नावली की शादी हो गई और बाद में फिर जदुराव गढ़ा का राजा बना।
0: तो ये बहुत ही रोचक सी आपने कहानी बताई। जनजातीय समाज में इस तरह की प्रथाएं होती हैं या इस तरह की शर्तें वो रख लेते हैं कि एक नीलकंठ अगर आपके सर पर आकर बैठेगा तो शादी होगी।
1: इसका मतलब ये है कि जिस पर महादेव की कृपा होगी
0: हाँ,
1: तो वो अगला राजा होगा।
0: अगला राजा होगा, ये भाव रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से मतलब गोंड राजवंश की स्थापना होती है। और संग्राम शाह के विषय में आप बताएं कि वो किस तरह से राजा बने।
1: गोंड राजवंश की, गढ़ा के गोंड राजवंश की बहुत सारी हमको वंशावलियाँ मिली हैं, लिखी हुई वंशावलियाँ भी हैं और कहावतों में, कहानियों में भी आती हैं। तो उनसे पता चलता है कि 48 राजा हो चुके थे, उसके बाद 49वें राजा संग्राम शाह थे।
0: हाँ।
1: संग्राम शाह के पिता जो थे अर्जुन दास, वो भी राजा रह चुके थे और उनका लगभग 10 वर्षों का शासन है। तो जब संग्राम शाह शासक बने 1510 में।
0: अच्छा।
1: और उनका शासनकाल है 1543 तक।
0: अच्छा।
1: तो शुरू में उनका नाम मिलता है आमणदास, जबलपुर में एक जगह भी है जो उनके नाम पर है।
0: अच्छा।
1: और फिर बाद में 1516 के आसपास आते आते उनका नाम मिलता है संग्राम शाह या संग्राम शाही।
0: अच्छा।
1: तो संभवतः उन्होंने कोई संग्राम जीता होगा इसलिए उनका नाम संग्राम शाही पड़ा।
0: तो ये भी बड़ी रोचक सी बात है कि पहले आमणदास उनका नाम था और संभवतः कोई युद्ध जीता तो संग्राम शाही या संग्राम शाह के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। अच्छा, ये भी पढ़ने में आता है कि उन्होंने सोने का सिक्का चलाया था, तो इस पर आप प्रकाश डालें। बड़ी रोचक बात है कि सोने का सिक्का यानी काफ़ी समृद्धि।
1: जी हाँ, सोने का सिक्का चलाने का अर्थ ही यही है कि वह राज्य बहुत शक्तिशाली और आर्थिक रूप से समृद्ध है, तभी आप सोने का सिक्का चला पाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो संग्राम शाह के कुछ सोने के सिक्के मिले हैं और इन सिक्कों से कई सारी जानकारियां मिलती हैं।
0: अच्छा।
1: जैसे सिक्के पर संग्राम शाह अपने आप को पुलस्त्य वंशी लिखते हैं।
0: अच्छा।
1: तो पुलस्त्य ऋषि के गोत्र से जो लोग अपना उद्भव मानते हैं वो लोग अपने आप को पुलस्त्य वंशी कहते हैं, तो संभवतः वो पुलस्त्य वंशी रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: दूसरी बात यह है कि सिक्कों पर एक शेर बना हुआ मिलता है और एक पुत्री।
0: अच्छा।
1: पुत्री मतलब एक ह्यूमन फिगर है, लाइन ड्राइंग रहती है, जो बहुत शुभ माना जाता है, इस क्षेत्र में आज भी बनाई जाती है। और साथ ही उनका नाम मिलता है स्वस्ति श्री संग्राम शाही।
0: अच्छा।
1: ये संस्कृत में है।
0: अच्छा।
1: और खास बात यह है कि यही नाम उसी सिक्के पर तेलुगु में भी मिलता है।
0: तेलुगु में?
1: जी हाँ।
0: अच्छा।
1: दो भाषाओं का उपयोग किया है। तो शुरू के विद्वान ये मानते थे कि गोंडों का उद्भव भारत के दक्षिणी भाग से हुआ है, इसलिए यहाँ पर दो भाषाओं का
0: तेलुगु भाषा का भी प्रयोग सिक्कों पर है।
1: जी हाँ। जी। लेकिन बाद के जो विद्वान हैं जैसे डॉक्टर आर के शर्मा हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। दो राज्यों के बीच जब बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध होते हैं तो लेन देन को आसान बनाने के लिए दो भाषाओं का उपयोग किया जाता है।
0: बिल्कुल।
1: तो ये हाँ। भी दिखाता है कि ये आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध होगा।
0: बिल्कुल।
1: और मैं आपको बताऊं कि स्वतंत्रता के कुछ समय बाद ही मदन महल के पास से एक घड़ा निकला था, एक खेत से।
0: अच्छा।
1: तो उसमें बहुत सारे सिक्के निकले थे प्राचीन। तो ये प्राचीन सिक्के विभिन्न राजवंशों के थे, भारत के दूर दूर तक के राजवंशों।
0: अच्छा।
1: के। और ये दिखाता है कि जबलपुर उस समय बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा और यहाँ से प्राचीन राजमार्ग निकलता होगा। तो यहाँ पर व्यापारिक संबंध रहे होंगे, तभी यहाँ पर एक साथ बहुत सारे सिक्के
0: अलग अलग जगह
1: अलग अलग जगहों के मिल रहे हैं,
0: वहाँ से मिल रहे हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से मालूम पड़ता है कि समृद्धि थी उस वक्त, ये मालूम पड़ रहा है क्योंकि सोने के सिक्के थे। और जैसा कि आपने बताया कि संस्कृत में उनका नाम लिखा है संग्राम शाह का, तो शिक्षा भी अच्छी मालूम पड़ती है कि शिक्षा की स्थिति भी अच्छी थी। और फिर आपने बताया कि तेलुगु भाषा में भी लिखा है, यानी व्यापारिक संबंध जो थे वो दूर दूर के राज्यों तक भी थे। तो समृद्धि निश्चित तौर पर बहुत अधिक थी, ये तो साबित होता है। अच्छा पूजा जी, हमने जैसा कि बताया ही अपने श्रोताओं को कि इस कार्यक्रम में हम जनजातीय राजवंशों की चर्चा तो करेंगे ही, इसके साथ ही स्थापत्य कला में उनके योगदान की भी हम चर्चा करेंगे। और गढ़ा मंडला की जब इस राजवंश की बात चलती है तो मदन महल वो उनका प्रमुख गढ़ था, तो इसके विषय में आप बताइए।
1: मदन महल, अगर अभी भी आप जबलपुर जाएं कभी, तो जब आप जबलपुर से भेड़ाघाट की तरफ जाते हैं तो एक ऐतिहासिक स्मारक आपको रास्ते में दिखाई देता है और ये सभी को आकर्षित करता है। उसका कारण ये है कि ये जो भवन है ये आधा एक गोल चट्टान के ऊपर है और आधा जमीन के ऊपर है।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो ये सभी को बहुत आकर्षित करता है। ये असल में पुरानी चौकी है
0: जी।
1: जब कलचुरियों का शासन रहा होगा तो क्या है कि जहाँ भी इन राजपूतों का शासन था तो ये लोग वन क्षेत्र में हमेशा जनजातियों के प्रमुखों को नियुक्त करते थे।
0: अच्छा।
1: क्योंकि जनजातियों को जंगल का, जीव जंतुओं का बहुत ज्ञान होता है, साथ ही ये लोग सुरक्षा भी करते थे, जो व्यापारी काफिले जाते थे उनकी, तो जनजातियां ही वन क्षेत्र को संभालती थी। तो ये जो मदन महल है ये भी एक चौकी की तरह रहा होगा और संभवतः इसका नाम जो पड़ा मदन महल वो मदन शाही के नाम पर पड़ा होगा, क्योंकि जो गोंड राजवंशों की हम वंशावली देखते हैं उसमें एक नाम आता है मदन शाही, जो कि 1116 के आसपास होंगे
0: जी।
1: तो संभवतः वो यहाँ के प्रमुख रहे होंगे इस चौकी के, तो उनके नाम पर मदन महल पड़ा।
0: आपका कहना ये है कि जो वनांचल थे, जो वन क्षेत्र था
1: जी
0: कलचुरियों के राज में, उसकी रक्षा के लिए ये जनजातीय समाज वहाँ था और मदन शाही के नाम पर मदन महल ये नाम पड़ा है। और वास्तव में जबलपुर के आसपास से आप जब निकलते हैं तो मदन महल की चर्चा होती ही है, लेकिन इस तरह से उसको जोड़कर नहीं देख पाते हम। अच्छा, संग्राम शाह के 52 गढ़ की भी बहुत चर्चा है, तो इस पर भी आप विस्तार से प्रकाश डालें हम चाहते हैं हमारे श्रोताओं के लिए।
1: एक कहावत है, आमन बुद्ध 52 गढ़ा, यानी कि आमनदास, जैसा कि मैंने कहा संग्राम शाह का नाम था, तो संग्राम शाह के 52 गढ़। 52 गढ़, गढ़ यहाँ से मतलब है किला, फोर्ट।
0: अच्छा।
1: तो 52 फोर्ट्स जिसके हों वो बहुत शक्तिशाली राजा होगा। तो ये किले दिखाते हैं कि आपकी कितनी अच्छी प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं। तो 52 गढ़ उनके पास था। जो संग्राम शाह के अधिकार क्षेत्र था वो बहुत विस्तृत था, उसमें मध्य प्रदेश का कुछ भाग, कुछ महाराष्ट्र का और कुछ छत्तीसगढ़ का आता था।
0: अच्छा।
1: तो आज अगर हम इसको जिलों में देखें, मध्य प्रदेश में जबलपुर, मंडला, दमोह, बालाघाट, कवर्धा, डिंडोरी, नर्मदापुरम, सिवनी, नरसिंहपुर, पन्ना, सागर, बिलासपुर अब छत्तीसगढ़ में, और नागपुर, ये सब संग्राम शाह के यहाँ पर गढ़ मिलते हैं,
0: किले मिलते हैं।
1: तो बहुत ही ये दिखाता है कि उनके बहुत स्ट्रॉन्ग अधिकार रहा है।
0: बिल्कुल।
1: तो इन 52 गढ़ों के नाम भी मिलते हैं, हालांकि उसकी सूची बहुत लंबी है।
0: हाँ।
1: पर उसमें से जैसे सिंगौरगढ़ है, चौरागढ़ है, गौर झामर, खिमलासा, रहली, राहतगढ़, मड़िया दो, गढ़ा कोटा, ये इस तरीके के कुछ बहुत प्रमुख किले उनके रहे।
0: जी जी। तो आपने सिंगौरगढ़ का नाम लिया तो मेरी रुचि उस ओर हुई कि हमें मतलब विस्तार से बताइए इस किले के बारे में।
1: सिंगौरगढ़ को सबसे ज्यादा प्रमुखता संग्राम शाह के समय में ही मिली। सिंगौरगढ़ आजकल दमोह जिले में है, मध्य प्रदेश के
0: जी।
1: आज भी यहाँ तक पहुँचना बड़ा दुर्लभ है। शहर से आप 10-15 किलोमीटर अंदर चले जाते हैं, एकदम सुनसान जंगली जंगल में, तब आप जाके सिंगौरगढ़ पहुंचते हैं। तो ये बड़ा दुर्गम किला रहा होगा। किला एक ऊंची पहाड़ी पर है, फिर चारों तरफ से किले की सुरक्षा दीवारें हैं, लेकिन खास बात क्या है जो गोंडों की सुरक्षा व्यवस्था में होती है कि इस पहाड़ी के चारों ओर भी बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ, यानी कि इस पहाड़ी को चारों ओर से ऊंची ऊंची पहाड़ियों ने घेरा हुआ है। और फिर इन पहाड़ियों के बाद एक घना जंगल है। आज उसका नाम वीरांगना रानी दुर्गावती के ऊपर वह है, वीरांगना रानी दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी
0: जी।
1: यानी कि दुर्ग तक कोई सेना पहुंचना चाहती है तो उसको पहले तो एक घना जंगल पार करना होगा जिसमें जंगली जानवर भी होंगे, और उसके बाद कई नदी नाले, और उसके बाद ये ऊंची पहाड़ियां जो चारों ओर से घेरी हुई हैं, और इन पहाड़ियों के ऊपर भी फोर्टिफिकेशन वॉल बनाई हुई है, सुरक्षा दीवार बनाई हुई है।
0: अच्छा।
1: तो अगर कोई सेना इसको पार भी कर जाती है तो आगे जाके आपको सामना करना पड़ेगा जो मुख्य पहाड़ी है उसके नीचे एक पश्चिमी ओर बहुत बड़ा तालाब बना हुआ है जिसे सिंगौरगढ़ तालाब कहते हैं।
0: अच्छा।
1: तो ये तालाब मुख्य द्वार के तक आया करता था, जैसे खाई होती है तो खाई भी पार करनी पड़ेगी, और फिर कहीं जाके आप ऊंची पहाड़ी पर जब चढ़ना शुरू करोगे तो पहला दरवाजा आएगा जिसको हाथी दरवाजा कहते हैं, फिर एकदम खड़ी चढ़ाई आएगी, उसपे कई सीढ़ियां चढ़ के आप दूसरा दरवाजा अगर पार कर लेते हो, ये सुरक्षा चौकी है, उसको भी अगर आपने पार कर लिया, क्योंकि चारों ओर से दीवार से भी घिरा हुआ है, और तब आप जाके किले के अंदर पहुंचते हो।
0: क्या बात है।
1: तो जब आप किले के अंदर पहुंच जाते हो तो एक विशाल तालाब दिखाई देता है जो आर्टिफिशियल है, कृत्रिम टैंक है। ये लगभग 100 मीटर से ज्यादा लंबा और 60 मीटर से ज्यादा चौड़ा और काफी गहरा है।
0: अच्छा।
1: तो खास बात क्या है कि इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती थी।
0: अच्छा।
1: यानी कि किले के लिए जरूरत होती है कुछ चीजों की, पानी, खाना और सेना और हिम्मत। तो पानी खत्म ना हो जाए इसके लिए साल भर, जब बारिश होती थी तो साल भर का पानी टैंक में इकट्ठा कर लिया जाता था। उसके लिए वहां पर कई सारी नालियां बनी, पक्की नालियां बनी हुई हैं। फिर हम आगे जाते हैं तो हमको रानी महल मिलता है। रानी महल में एक मुख्य हॉल है बीच में, और उसके चारों तरफ गलियारे हैं, कक्ष हैं, ये 2 मंजिला है। तो बहुत सुंदर है। उसके आसपास कुछ मूर्तियां रखी हुई हैं, कलचुरी काल की कुछ मूर्तियां दिखाई देती हैं और कुछ गोंड काल की हैं।
0: तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया कि क्या चौकस सुरक्षा व्यवस्था, और अगर किले तक पहुंचना है तो कितनी कठिनाइयों के बाद आप पहुंचेंगे, और फिर उतना ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी वहां देख पा रहे हैं, जिसकी बात आज की जा रही है। आज हम चर्चा करते हैं और इसका प्रचार प्रसार करते हैं कि आप कीजिए पानी बोइए, तो ये उस वक्त कर रहे थे संग्राम शाह के समय में। अच्छा पूजा जी, जबलपुर में ही बाजना मठ भी है, तो हम चाहते हैं कि इसके विषय में भी आप विस्तार से बताएं।
1: जबलपुर में एक टेकरी है, यानी कम ऊंची पहाड़ी, उस पर बाजना मठ है। बाजना मठ में बटुक भैरव की एक छोटी सी मूर्ति है।
0: अच्छा।
1: ऐसा माना जाता है कि बाजना मठ का निर्माण संग्राम शाह ने ही किया, और यहाँ तांत्रिक साधना होती थी। ये मठ था। इस बाजना मठ में एक कमरा है, कमरे में एक ही प्रवेश द्वार है, खिड़कियां नहीं है, और ऊपर गुंबजाकार छत है, साथ में गलियारा भी रहा होगा जो अब नहीं है। तो मठ जो होते हैं, यहाँ आचार्य रहते हैं।
0: अच्छा।
1: और वो आचार्य अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, ग्रंथों की रचना करते हैं। इस तरीके के कार्य मठों में हुआ करते थे, तो यहाँ पर भी हुआ करते होंगे। तो हम देखते हैं कि संग्राम शाह खुद भी संस्कृत के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने खुद रस रत्न माला नामक एक ग्रंथ लिखा है।
0: अच्छा।
1: और उसके आखिरी पन्ने पर उनका नाम भी उन्होंने लिखा है।
0: जी। अच्छा, अच्छा।
1: तो संग्राम शाह ने बहुत से अन्य विद्वानों को भी प्रश्रय दिया, खासकर इस समय मैथिल ब्राह्मण जो हुआ करते थे, उनका बड़ा बोलवाला था। तो उन्होंने कई मैथिल ब्राह्मणों को जबलपुर में बुलवाया, और उनसे काफी ग्रंथों की रचनाएं भी करवाई। तो उसमें एक हुए हैं दामोदर ठाकुर, उन्होंने काफी ग्रंथ लिखे हैं, और एक ग्रंथ लिखा है संग्राम शाही विवेक दीपिका, जो कि संग्राम शाह के ऊपर ही है। और इसके साथ में दूसरे जो बहुत प्रसिद्ध विद्वान हुए, उनका नाम है महेश ठाकुर।
0: अच्छा।
1: और उनके भी कई ग्रंथ हैं, और संग्राम शाह की जो पत्नी थी, उन्होंने महेश ठाकुर को विष्णुपुर नाम का एक ग्राम दान दिया था।
0: अच्छा।
1: जो उनके योगदान के लिए रहा होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बाजना मठ के विषय में भी बताया, और संग्राम शाह जी की सांस्कृतिक साहित्यिक अभिरुचि के विषय में भी बताया कि वो खुद संस्कृत के ज्ञाता थे, और बहुत से साहित्यकारों को प्रश्रय भी था उनके राजवंश में। मध्य भारत के जनजातीय राजवंश और स्थापत्य कला में उनके योगदान, इस श्रृंखला के अंतर्गत गढ़ा मंडला के गोंड राजवंश पर हमने चर्चा की, संग्राम शाह की चर्चा की, और उनके स्थापत्य में उनके योगदान की भी हमने कुछ बात की है। और ये हमारी श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी, और अपने श्रोताओं को हम बता दें कि इस कार्यक्रम के अगले भाग में हम चर्चा करेंगे वीरांगना रानी दुर्गावती की। पूजा जी, आज आप हमारे बीच उपस्थित हुई, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
0: तो श्रोताओं, मध्य भारत के जनजातीय राजवंश और स्थापत्य कला में उनका योगदान, इस श्रृंखला के अंतर्गत गढ़ा मंडला के गोंड राजवंश पर हमने चर्चा की, संग्राम शाह की चर्चा हुई। बहुत जल्द इस कार्यक्रम के अगले अंक के साथ आपसे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें, नमस्कार। आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों को आप प्रतिदिन सुन सकते हैं प्रातः 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में इन दिनों हम योग वासिष्ठ ग्रंथ के पन्ने पलट रहे हैं। वो महान ग्रंथ जिसने भगवान श्री राम के मन में उपजे वैराग्य की जमीन पर आकार लिया और पीढ़ियों को जीवन का असल मर्म समझाया, योग का पाठ पढ़ाया। पिछले अंकों में योग वासिष्ठ के वैराग्य प्रकरण पर हमने विस्तार से चर्चा की और वैराग्य प्रकरण के उत्तरार्ध पर आज हम खड़े हैं। आज हम चर्चा करेंगे मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण पर। मुमुक्षु अर्थात मोक्ष की तीव्र इच्छा रखने वाला साधक या जन्म मरण के बंधन से छूटने की चाह रखने वाला व्यक्ति। इसी प्रसंग में सुखदेव जी का वृत्तांत भी आता है। उन्हें भी वैसा ही वैराग्य हुआ है जैसा भगवान श्री राम को हुआ है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी उनका मन शांत नहीं होता। क्यों? और फिर उसका समाधान कैसे प्राप्त होता है? तो इस वृत्तांत के माध्यम से एक रोचक बिंदु प्रकाश में आता है कि वैराग्य, फिर ज्ञान और फिर किस विधि मन शांत हो, ये समाधान। तो आइए इस ज्ञान यात्रा पर चलें, जो विवेक, वैराग्य, सत्संग और आत्मचिंतन से स्वयं को प्रकाशित करती है। हमारे बीच इस बातचीत के लिए हमेशा की तरह उपस्थित हैं योग, अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और सुखदेव जी का मैंने जिक्र भी किया, लेकिन उस प्रसंग तक पहुँचें उसके पहले हम उस बिंदु पर पहुँचें जहाँ राम जी की जो वैराग्य दशा है उस पर महर्षि वाल्मीकि भरद्वाज जी से बात कर रहे हैं।
1: इसमें सुंदर कहा आपने, महर्षि वाल्मीकि भरद्वाज जी से कहते हैं कि भरद्वाज, जैसे मोर मेघों की घटाओं के सम्मुख केकारो करके थक जाने के कारण चुप हो जाता है, उसी प्रकार निर्मल चंद्रमा के समान मनोहर एवं महान तत्व विचार से विकसित चित्त वाले रामचंद्र जी वशिष्ठ आदि गुरुजनों के समक्ष वैराग्य की ये बातें करके शांत हो गए हैं, चुप हो गए हैं
0: जी।
1: और उनकी जो दशा है कि जैसे मोर चुप हो जाता है, वैसे ही राम जी अपने वैराग्य के चित्त में उठने वाली जो बातें हैं उन बातों को कहने के बाद बिल्कुल शांत चित्त चुप हो जाते हैं। और फिर इस पर वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम, तुम्हारा जो ये वैराग्य है, ये वैराग्य विवेक से उत्पन्न वैराग्य है और विवेक से उत्पन्न वैराग्य निश्चित ही बहुत ऐसे लोगों को प्राप्त होता है जो बहुत इने गुने लोग हैं, क्योंकि सामान्य तौर पर संसार में विफलताओं या संसार की दशा को देख करके संसार से आदमी ऊब जाता है और वैरागी हो जाता है और कहता है संसार व्यर्थ है, लेकिन विवेक से उत्पन्न वैराग्य संसार की व्यर्थता को नहीं कहता, वो संसार में सार्थक जीवन का उपयोग कैसे किया जाए, ये जिज्ञासा उसके अंदर उत्पन्न होती है। तो इसमें हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि योग वासिष्ठ जो ग्रंथ है वो राम जी के जीवन की सार्थकता को समझने की जिज्ञासा से ओतप्रोत है और जो उनका वैराग्य है वो इसी बात को लेकर के है कि आखिर जीवन की सार्थकता कर्म से कैसे सिद्ध की जाए, जबकि कर्म करने वाले सारे लोग इस संसार में दुखी हैं, चाहे जो जैसा भी कर्म कर रहा हो, लेकिन मैंने कर्म करते हुए व्यक्ति को शांत नहीं देखा है। तो इसीलिए वो चुप हो गए हैं ये कह के। तो फिर विषय बड़ा प्यारा है, वो सारे लोग प्रसन्न हो रहे हैं राम जी का जो वैराग्य की बातें हैं इसको सुन करके, सब आश्चर्यचकित हैं। आकाश से फूलों की वर्षा, सिद्ध पुरुषों के उद्गार, राज्यसभा में सिद्धों और महर्षियों का आगमन होता है, क्योंकि ये दृश्य ही बड़ा अद्भुत है कि जो स्वयं ब्रह्म है वो आज ब्रह्म ज्ञान के लिए गुरु के समक्ष प्रार्थना कर रहा है या अपने चित्त की बात प्रकट कर रहा है। सोचिए ये भारतीय ज्ञान परंपरा में कितना दुर्लभ विषय है कि इन विषयों को हमारे ऋषियों ने हमारे समक्ष रखा है, उसके बाद भी हम मानसिक रोग, बेचैनी और तमाम चीजों के शिकार जो होते हैं
0: जी,
1: वो इस नाते कि हम अपनी जड़ों से कट रहे हैं। अगर जड़ों से जुड़े तो निश्चित ही संसार का कोई भी विषय हमारे चित्त को विचलित नहीं कर सकता, वो हमारे जीवन की सार्थकता पर कभी प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता, क्योंकि जीवन की सार्थकता प्रकट होती है वैराग्य से। वैराग्य के प्रकाश में जीवन की सार्थकता प्रकट होती है, न कि जीवन की व्यर्थता।
0: जी जी अच्छा, यही चर्चा जब आगे बढ़ती है तो इसमें वासनाओं की भी चर्चा है, तो संसार की जो वासनाएं हैं वो नष्ट कैसे होती हैं?
1: संसार की वासनाओं को नष्ट करने के लिए वैराग्य की वासनाएं नष्ट कर सकती हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को इस बात में थोड़ी समझने में परेशानी हो सकती है कि संसार अगर एक वासना है तो क्या वैराग्य भी वासना है? अब यहाँ वैराग्य को इस अर्थ में लीजिए कि जैसे कोई कांटा चुभ जाए
0: जी।
1: तो चुभे हुए कांटे की चुभन के कष्ट से बचने के लिए आपको फिर से एक कांटा चुभा करके उस कांटे को निकालना पड़ता है। तो संसार की जो वासना है ये कभी समाप्त नहीं होती, और इसीलिए संसार की वासना को समाप्त करने के लिए वैराग्य की वासना भी निरंतर बनी होनी चाहिए। वासना का मतलब यह हुआ कि वैराग्य की दृष्टि निरंतर हो, यानी वो अवेयरनेस की दृष्टि, जिसको आप माइंडफुलनेस भी कह सकते हैं, जागरूक दृष्टि कह सकते हैं, ध्यान से युक्त दृष्टि कह सकते हैं, कि संसार को ध्यान पूर्वक देखना। क्योंकि राम जी ने संसार को ध्यान पूर्वक ही देखा है तभी उनके अंदर वैराग्य प्रकट हुआ है, क्योंकि हम लोग ध्यान पूर्वक संसार नहीं देखते, इसलिए हम राग द्वेषात्मक दृष्टि रखते हैं संसार में। राम जी की दृष्टि राग द्वेषात्मक नहीं है, इसलिए हमेशा हमें से याद रखना चाहिए कि वैराग्य राग से उत्पन्न होने वाली कोई क्रिया नहीं है। वैराग्य सत्य को जान लेने के बाद उत्पन्न होने वाली एक ऐसी जिज्ञासा है जो जीवन की सार्थकता को खोज रही है।
0: जी जी बिल्कुल जी। बिल्कुल अच्छा, इसी प्रकरण में भगवान श्री राम को वीतरागी कहा गया
1: जी।
0: तो मैं चाहती हूँ कि जो हमारे सुनने वाले हैं उन्हें आप बताएं कि वीतरागी का क्या अर्थ है, और वैराग्य और वीतरागी में कोई अंतर है क्या?
1: वीतराग का मतलब होता है कि जिसका राग बीत गया हो, समाप्त हो चुका हो, और उसके बाद वो संसार के सत्य को उद्घाटित करने के लिए जिज्ञासु हुआ है, ये वीतराग की स्थिति है। और एक व्यक्ति जिसके राग का संसार में विरोध हुआ हो, या संसार जिसके राग को तृप्त करने में असमर्थ रहा हो, तो उसके अंदर संसार से वैराग्य हो गया, तो ये वैराग्य नहीं है। ये वैराग्य जो है राग से ड्रिवन है, ये राग की प्रतिक्रिया है।
0: जी जी।
1: लेकिन राम जी का वैराग्य राग की प्रतिक्रिया नहीं है, इसलिए राम जी वीतरागी हैं। इसलिए कहा गया है कि वासनाएं जो है संसार की वो वैराग्य की वासना से नष्ट हो गई है राम जी की। सब लोग दो घड़ी के लिए मानो अमृतमय समुद्र की तरंगों में डूबने उतराने लगे राम जी के वीतरागी स्थिति को देखने के बाद। वहां जितने भी ऋषि मनीषी थे वो सब जो है ऐसे डूबने उतराने लगे राम जी की बातें में। जिन लोगों ने सुनी वे निश्चलता के कारण चित्रलिखित से प्रतीत होते थे, ऐसा लगता था जैसे कोई चित्र बन गया हो। क्योंकि राम जी के इस वैराग्य की दशा को सुनने के बाद सारे लोगों के चित्त में एक अलग तरह की स्थिरता, जिसमें चित्र लिखित जो कह रहे हैं कि जैसे चित्र के द्वारा कोई चीज लिख दी जाए, अन्यथा वो बिल्कुल निश्चल भाव में सबके सब स्तब्ध रह गए, तो ऐसी स्थिति थी। इसलिए राम जी को वीतरागी कहा गया, क्योंकि वीतरागी वो होता है जिसके अंदर राग नहीं है।
0: जी,
1: और संसार में राम जी ने राग से कर्म करते हुए लोगों को देखा, तो दुखी पाया, तो ऐसे में राम जी ने राग का त्याग पहले कर दिया। यानी कर्म करके जो फल में राग होता है वो राग राम जी को नहीं है। इसीलिए आप देखें तो गीता में जो कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन भगवान कृष्ण कहते हैं, उस स्थिति में राम जी खड़े हैं, वहां कोई फल की कामना नहीं है, बस एक जिज्ञासा है कि ऐसे कर्म का क्या अर्थ, जो कर्म अंततः दुख ही देता है। तो ऐसे में राग से युक्त कर्म व्यक्ति को कभी सुखी नहीं कर सकता।
0: नहीं कर सकता। प्रज्ञा की बहुत बात होती है, तो मैं चाहती हूँ कि आप ये बताएं कि हृदय को प्रकाशित करने वाली जो प्रज्ञा है वो कैसी होती है?
1: हृदय को प्रकाशित करने वाली जो प्रज्ञा है वो प्रज्ञा ऐसी प्रज्ञा नहीं होती जो सामान्य तौर पर देह भाव से युक्त होकर के व्यक्ति जिज्ञासा रखता है और उसको जो जान लेता है वो समझता है मेरी प्रज्ञा है। यहाँ पर कहते हैं वशिष्ठ जी कि राजकुमार, आपके सिवा दूसरा कौन है जिसकी वाण के समान सूक्ष्म अर्थ का भेदन करने वाली कुशाग्र बुद्धि रूपिणी लता विवेक रूपी फल से सुशोभित हो विचार वैराग्य रूपी उत्तम विकास को प्राप्त हो रही है? श्री राम की भांति जिसके हृदय में अनुपम प्रकाश फैलाने वाली प्रज्ञा रूपिणी दीप शिखा प्रज्वलित हो रही हो वही श्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है। अब राम जी यहाँ उस श्रेष्ठ पुरुष से उनकी तुलना की जा रही है जिनकी जो प्रज्ञा है हृदय को प्रकाशित करती है। हृदय देखिए, हृदय भाव का स्थान है
0: जी।
1: और सामान्य तौर पर हम हृदय को छोड़ करके अगर बुद्धि पूर्वक किसी विषय को जानना चाहते हैं तो वो हमारी बुद्धि का विकास तो हो सकता है, लेकिन कभी भी भाव प्रधान हम नहीं हो सकते। और भाव प्रधान हुए बिना आप जो विश्व में एकात्मता का बोध है उसको आप ऐसे ज्ञान पूर्वक नहीं जान सकते। इसीलिए जो आपने शुरू में कहा है ना कि सुखदेव जी का वृतांत,
0: जी जी,
1: राम जी को ये वैराग्य हो गया है, लेकिन इस वैराग्य के बाद भी राम जी को शांति नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि वो अभी प्रज्ञा जो है वो संसार को देख करके उत्पन्न हुई है, अभी हृदय को प्रकाशित नहीं कर पा रही
0: जी,
1: है, यानी अभी वो भाव उत्पन्न नहीं हो पा रहा है जिस भाव के द्वारा चित्त शांत होता है। इसके लिए फिर गुरु की सन्निधि आवश्यक है।
0: हाँ।
1: और यहाँ पर गुरु की सन्निधि को हम कहना चाहेंगे कि गुरु की सन्निधि हाड़ मांस के शरीर के रूप में नहीं, क्योंकि कहा जाता है, इसी में ग्रंथ में कहा गया है कि जिन मनुष्यों में ऐसी प्रज्ञा है वे मनुष्य देह में रक्त मांस हड्डियों के यंत्र रूपी देह में ही आत्मबुद्धि रखते हैं। तो ऐसी आत्मबुद्धि रख करके अगर आपने किसी गुरु के समक्ष अपना समर्पण किया है या देह में ही देहात्म भाव रखने वाले व्यक्ति को गुरु मान लिया है, तो उससे प्राप्त प्रज्ञा कभी भी हृदय को प्रकाशित नहीं करेगी। हृदय को प्रकाशित करने वाली जो प्रज्ञा है वो सुखदेव जी जैसी होगी, राम जी जैसी होगी। इसीलिए राम जी को कहा गया कि राम जी बीतरागी हैं, क्योंकि राम जी की तुलना बृहस्पति से भी नहीं की गई है। कहते हैं कि बृहस्पति भी यद्यपि देवताओं के गुरु हैं, लेकिन उनकी जो प्रज्ञा है वो भी राम जैसी प्रज्ञा नहीं है, क्योंकि राम जी की प्रज्ञा बीतरागी की प्रज्ञा है, और बीतरागी की प्रज्ञा हृदय को प्रकाशित कर सकती है।
0: अच्छा, इसमें राम जी को तत्वदर्शी कहा है
1: जी।
0: तो मेरे मन में ये जिज्ञासा थी कि आप हमारे सुनने वालों को ये बताएं कि जो तत्वदर्शन करने वाला पुरुष होता है वो कैसा होता है, क्या लक्षण होते हैं उसके?
1: तत्वदर्शी लोग होते हैं वो तत्व चिंतन में तत्पर रहते हैं और विवेक के द्वारा आत्मज्ञान या परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप सार पदार्थ के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। वे ही सुयस के भंडार, सत्पुरुषों में अग्रगण्य, धन्य एवं समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। मतलब ये जो कहा गया कि सुयस उन्हीं के पास है, सत्पुरुषों में अग्रगण्य हैं, धन्य हैं वे लोग जिन लोगों में तत्व चिंतन की प्रवृत्ति विकसित हुई है। इसलिए राम जी को धन्य कहते हुए कह रहे हैं महर्षि कि राम जी से तत्व दर्शन रूपी चमत्कार का आविर्भाव देखा गया है, तो इसलिए राम जी तत्वदर्शी हैं। और तीनों लोकों में रामचंद्र जी के समान विवेकशील तथा उदार चरित पुरुष न तो अब तक कोई देखा गया है और न ही भविष्य में कोई होगा, ऐसी हमारी मान्यता है, ऐसा कह रहे हैं वाल्मीकि जी भरद्वाज से।
0: जी, अच्छा, हमने सुखदेव जी के वृत्तांत की चर्चा की
1: जी,
0: तो विश्वामित्र जी ने राम जी से क्या कहा? इस कथा के विषय में हमारे जो सुनने वाले हैं जरूर उत्सुक होंगे, तो मैं चाहती हूँ कि वो वृत्तांत भी आप बताएं।
1: विश्वामित्र जी ने अपने सामने बैठे हुए श्री राम जी से प्रेम पूर्वक कहा। देखिए, मैंने कहा कि हृदय की प्रज्ञा प्रेम की प्रज्ञा
0: है। जी, जी, जी।
1: कहते हैं ना, कबीर साहब ने इसके लिए कहा भी गया कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो जो ढाई आखर ये प्रेम का है ये हृदय की प्रज्ञा से प्रस्फुटित होता है, न कि पोथी पढ़ने से। तो प्रेम का कोई ग्रंथ नहीं होता है, ग्रंथ से तो ग्रंथ ही बनती है और प्रेम से ग्रंथ भेदन होता है। तो इसलिए जो हृदय की प्रज्ञा है वो ग्रंथ भेदन की प्रज्ञा है। और हमारे यहाँ कहा भी जाता है, हम लोग कहते भी हैं कि प्रेम अनकंडीशनल हो, तो अनकंडीशनल कब माइंड होगा आपका? वो तो हृदय ही अनकंडीशनल हो सकता है जी। तो इसलिए हृदय की प्रज्ञा जो है वो अनकंडीशनल लव की बात करती है। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ रघुनंदन, तुम्हारे लिए कुछ और जानना शेष नहीं है। तुम अपनी ही सूक्ष्म बुद्धि से सब कुछ जान चुके हो। तुम्हारी बुद्धि भगवान व्यास के पुत्र सुखदेव की सी है। अब
0: अच्छा,
1: देखिए यहाँ पर यहाँ पर आता है सुखदेव का वृतांत। वो कहते हैं कि राम तुम्हारी जो बुद्धि है ये व्यास नंदन सुखदेव जैसी है, और ऐसे ही जैसे तुमको बीतराग से जो हृदय को प्रकाशित करने वाली जो प्रज्ञा है ये उत्पन्न हुई है, ऐसे ही सुखदेव भी बीतरागी अवतारी पुरुष हैं, देव भगवान का अवतारी हैं। तो कहते हैं कि श्री राम मैं तुमसे व्यास पुत्र सुखदेव का यह वृतांत कह रहा हूं जो तुम्हें सुनना चाहिए, और उसको सुनने के बाद मनुष्यों के जन्म मरण संसार से मोक्ष प्राप्त हो जाता है, जन्म मरण के संसार का कारण समाप्त हो जाता
0: जी,
1: है
0: जी।
1: तो वो सुनाते हैं, वो कहते हैं कि सुखदेव जी को तुम्हारे ही जैसा एक बार वैराग्य हुआ,
0: तो ये वृतांत उन्होंने शुरू किया।
1: हाँ, शुरू किया
0: जी।
1: तो उन्होंने ये कहना शुरू किया कि उस समय उनके हृदय में तुम्हारी ही तरह विवेक का उदय हुआ। उस महामना सुखदेव ने अपने विवेक से स्वयं ही चिरकाल तक विचार करके जो परम मनोहर परमार्थ सत्य वस्तु है उसे प्राप्त कर लिया। उसे प्राप्त करके भी उनके हृदय में यही यथार्थ वस्तु है ऐसा पूर्ण विश्वास नहीं हुआ। इसलिए उस परम वस्तु के स्वतः प्राप्त हो जाने पर भी उनके मन को शांति नहीं मिली। अब देखिए कितनी सुंदर बात है कि उन्होंने अपने विवेक से उस परम तत्व को जाना, तत्व चिंतन करके, लेकिन वो तत्व चिंतन उन्हें शांति नहीं दे रहा है। तो शांति नहीं दे रहा है तो मन जब शांत नहीं होगा तो मन चंचल भी होगा। उनके चित्त की चंचलता तो दूर हुई लेकिन एक मन में जो अशांति थी वो बनी रही।
0: तो ये जो विवेक से उत्पन्न ज्ञान है ये मन को शांत क्यों नहीं होने देता है?
1: आपने सुंदर कहा, ये इसलिए नहीं होने देता क्योंकि देखिए मन का स्वभाव जो है वो है विचलन का, चंचलता। अब ऐसा यहाँ पर ये भी सोच सकते हैं कि चंचल मन कैसे उस तत्व को चिंतन करने में समर्थ हो गया। समर्थ हो भी गया, जान भी गया, तो उस पर वो टिकेगा नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं टिकेगा कि उस पर उसको भरोसा नहीं है। तो फिर इसीलिए बहुत सारा आप देखते होंगे ज्ञान सबके पास है, तत्व चिंतन, तत्व ज्ञान सबके पास है। जैसे हर जन्म लेने वाला आदमी जानता है कि मृत्यु सुनिश्चित है, लेकिन बावजूद इसके वो मृत्यु से डरता है, पूरे जीवन सारे उपागम करता है कि मृत्यु ना होने पाए, जबकि मृत्यु के करीब वो जा रहा है, मृत्यु उसके करीब आ रही है। ये सच है, ये तत्व सभी जानते हैं, लेकिन इस तत्व को जानने के बाद भी पूरे जन्म जिस चीज के लिए पुरुषार्थ होता है, क्या वो मृत्यु के साक्षात्कार के लिए होता है, मृत्यु से बचने के लिए होता है? तो ऐसे में यहाँ पर एक प्रतीक के रूप में, यद्यपि ये लोग वीतरागी हैं, इनको हम आम लोगों की तरह नहीं ले सकते, लेकिन हमारे श्रोता कहीं सुनते हुए भटक न जाए इसलिए मैं इस पर प्रकाश डालना चाहूंगा कि ये एक वृतांत के तौर पर कहा गया कि उन्होंने अपने विवेक से बीतरागी भाव को उत्पन्न करने के बाद भी उस परम तत्व को जानने के बाद वो शांत नहीं रह पाए। तो जब शांत नहीं रह पाए तो फिर वो अपने पिता के पास गए और पिता से अपनी सारी बात कही उन्होंने कि ऐसी ऐसी मेरी स्थिति है, और जाकर के अपने पिता मुनिवर कृष्ण द्वैपायन व्यास से भक्ति भाव से उन्होंने पूछा कि मुने यह संसार रूपी आडंबर कैसे उत्पन्न हुआ है। अच्छा। यही राम जी के भी सवाल है, देख रहे होंगे कि यहाँ पर लोग कर्म कर रहे हैं। फिर कहते हैं कैसे उत्पन्न हुआ है, कैसे इसकी शांति या नाश होता है, यह कितना बड़ा है, किसका है और कब तक रहेगा। पुत्र के इस प्रकार के प्रश्न करने पर मुनिवर

0: बाद भी ये शांति को उपलब्ध नहीं हुआ,
1: तो
0: ये
1: पिता की ऐसा क्यों है?
0: हाँ, ऐसा बता रहा हूँ, इस कथा की कथा कहने पड़ेगी तब क्लियर होगा ये। तो ये जाते हैं जनक जी के पास। जनक जी के पास जब ये जाते हैं तो जनक जी के द्वारपाल आके कहते हैं कि कृष्ण द्वैपायन के पुत्र सुखदेव जी आए हुए हैं मिलने के लिए। तो उन्होंने बिना किसी भाव के, बिना अपने चेहरे पर कोई भाव आए, उन्होंने उसके प्रति अटेंशन ही नहीं दिया और वो एकदम शांत निस्तब्ध रहे और 7 दिन तक उनसे बात नहीं की। और सुखदेव जी जैसे वीतरागी संत जो अपने विवेक से तत्व ज्ञान को जान चुके हैं, उनके आने की खबर मिलने के बाद जनक के चित्त में किसी भी प्रकार का आंदोलन नहीं हो रहा है, ये देखिए दृष्टि है ना। जबकि जनक जैसा वीतरागी, क्योंकि जनक और सुखदेव का मिलना कोई सामान्य घटना नहीं है, आदमी तड़प जाए ऐसे ऐसे जिज्ञासु को पाकर, लेकिन ऐसे जिज्ञासु को पाकर वो अपने चित्त की स्थिरता को बनाए हुए हैं। अब जब 7 दिन सुखदेव जी के प्रति कोई संज्ञान नहीं लिया गया तो सुखदेव जी के भी चित्त में कोई विचलन नहीं हुआ।
1: अच्छा।
0: ये देखिए संवाद ये है, ये बातों का संवाद नहीं है, ये बिल्कुल तरंगों का संवाद है। इनके भी चित्त में, जबकि सोचना चाहिए कि यार मैं परम ज्ञानी हूँ, निर्माण है
1: जी।
0: व्यास का मैं पुत्र हूँ, वो व्यास जो मतलब ज्ञान का साक्षात कहते हैं मूर्तिमान प्रतिरूप है। फिर उसके बाद 7 दिन बाद उन्हें वो अपने बुलाते हैं आंगन में।
1: अच्छा, तो सुखदेव जी को
0: जनक जी बुलाते हैं
1: जी।
0: और 7 दिन बाद आंगन में बुलाने के बाद भी उन्होंने कोई संवाद नहीं किया।
1: अच्छा तो क्या किया?
0: एकदम बिल्कुल दोनों मिलते थे लेकिन कोई संवाद नहीं होता था
1: नहीं।
0: वो एक तरह से ये प्रयास था कि चित्त के विचलन को देखा जाए,
1: क्या
0: सुखदेव की ये पात्रता है इस ज्ञान को पचा लेने की। ज्ञान को पा लेना द्रुह नहीं है, क्योंकि हर मनुष्य में ये पात्रता है कि वो तत्वज्ञ हो सके, तत्व चिंतक हो सके। इसीलिए देवताओं ने, गोस्वामी जी ने कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, यानी देवताओं को भी दुर्लभ है मनुष्य का तन। तो ये मनुष्य का तन मिला है तत्व चिंतन के लिए और तत्व चिंतन का सामर्थ्य हर मनुष्य में है, लेकिन उस सामर्थ्य से उसे शांति नहीं मिलती। और जब आंगन में बुलाने के बाद भी उन्होंने उनसे बात नहीं की तो फिर 7 दिन बाद उनको अंतःपुर में बुलाया, अपने अंतःपुर में। अब देखिए, अंतःपुर में बुलाया और अंतःपुर में बुलाने के बाद उन्होंने उनकी खूब परीक्षा ली इस तरीके से
1: जनक जी ने
0: कि देखें कि मतलब इनको क्या, इनके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है। और उनके इस उपेक्षा जनित व्यवहार से व्यास पुत्र के मन में कोई विचलन पैदा नहीं हुआ। वो पूर्ण चंद्रमा के समान निर्विकार, भोग और अनादर में भी समान स्वस्थ और मौन तथा प्रसन्न चित्त बने रहे
1: जी।
0: अब देखिए, जिस ज्ञान को पा लेने के बाद उनके चित्त को शांति नहीं हुई, यहाँ कोई ज्ञान नहीं दिया जा रहा है, चित्त की शांति का जो संवाद है उस संवाद ने उनके चित्त को विचलित नहीं किया, चित्त शांत बना रहा। ये है गुरु का सानिध्य, जो आमतौर पर लोग सोचते हैं गुरु कोई ज्ञान देगा, गुरु की उपस्थिति पर्याप्त है। गुरु की उपस्थिति से, जैसे कहते हैं ना, चुंबक है उसमें ऐसी क्षमता है, वो भी लोहा है लेकिन लोहा बरबस खींचा चला जाता है। तो गुरु का प्रेजेंस अगर आपको खींचने न लगे तो समझिए कि ये गुरुत्व नहीं है। गुरुत्व एक आकर्षण है जो खींचता है। धरती में ये सामर्थ्य है कि वो धरती पर रहने वाली हर चीज को अपने पास, अपने करीब खींचती है, यही तो गुरुत्वाकर्षण है।
1: जी,
0: तो ये गुरु का, ये गुरुत्व, इसीलिए गुरुत्वाकर्षण शब्द नाम दिया गया।
1: जी,
0: ये आकर्षण है गुरु का। फिर सुखदेव जी ने कहा, महाराज मैं जानना चाहता हूँ कि संसार रूपी आडंबर कैसे उत्पन्न हुआ है और इसकी शांति या विनाश कैसे हो। आप शीघ्र ही मुझे इस विषय में यथावत रूप से प्रतिपादित करें। विश्वामित्र जी कहते हैं कि महाराज, इस प्रकार पूछे जाने पर जनक ने सुखदेव को उस समय वही बात बताई जो पहले उनके महात्मा पिता व्यास के द्वारा बताई गई थी, लेकिन व्यास के द्वारा बताए जाने पर उनको शांति नहीं,
1: नहीं मिली थी।
0: और व्यास ने भी वही बताई जो सुखदेव जी द्वारा अपने विवेक से जाना गया, तो उससे भी उनको शांति नहीं मिली। अब देखिए कितना सुंदर चित्रण है कि आप अपने चैतन्य से, अपने विवेक से भी उस ज्ञान को जान ले तो भी आपको अगर शांति नहीं मिल रही है, इसका अर्थ है कि वो ज्ञान अभी परिपक्व नहीं हुआ है। तो वो परिपक्व नहीं हुआ तो किसी परिपक्व के पास जाकर के ही उस ज्ञान से आप उसकी परिपक्वता को अनुभव कर सकेंगे।
1: जी, जी,
0: और यहाँ पर सुखदेव जी के चित्त में कोई विचलन नहीं आया जनक जी के व्यवहार से, जबकि जनक जी का व्यवहार पूरा विचलित कर देने के लिए पर्याप्त है।
1: जी,
0: देखें
1: जी,
0: तो 7 दिन तक दरवाजे पर वो खड़े हैं और उनसे वो कोई बात नहीं कर रहे हैं, अपने आंगन में बुलाते हैं कोई बात नहीं कर रहे हैं। तब सुखदेव जी ने कहा, वक्ताओं में श्रेष्ठ महाराज, मैंने पहले विवेक से स्वयं ही यह बात जान ली थी जो आपने कही है
1: जी।

0: फिर पिताजी ने इसके विषय में पूछा तो उन्होंने भी यही बात कही। इन महावाक्यों को जान लेने के बाद भी मेरे चित्त में शांति नहीं हुई। यह विनाशशील संसार अपने संकल्प से उत्पन्न हुआ है और संकल्प का अत्यंतिक विनाश होने से नष्ट हो जाता है, यही शास्त्रों का भी निश्चय है और यही बात आप भी कह रहे हैं
1: जी।
0: तो क्या यही अविचल सत्य है? यदि हाँ तो इसका इस तरह उपदेश कीजिए जिससे यह मेरे हृदय में अचल असंदिग्ध रूप से बैठ जाए। संसार के विषयों में भटकते हुए चित्त के द्वारा इधर उधर भटकाया जाता हुआ मैं आज आपसे शांति लाभ प्राप्त करना चाहता हूँ। अब ये जो बात अभी हम लोग कर रहे थे यही बात सुखदेव जी कह रहे हैं कि मैं उसके बाद भी ये जान लेने के बाद, पिता से जान लेने के बाद, शास्त्रों को पढ़ लेने के बाद भी अभी चित्त जो है संसार में विचलित होता है। तो राजा जनक ने जो कहा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं चाहता हूँ कि हमारे श्रोताओं के लिए वो मंत्र के जैसा है। वो कहते हैं कि हे मुने, इस ब्रह्मांड में एक अखंड चिन्मय परम पुरुष परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आपने स्वयं अपने विवेक के द्वारा इस तत्व को जाना और फिर गुरु स्वरूप पिता के मुख से इसको सुना, इससे बढ़कर दूसरा कोई निश्चय नहीं है। मुनि कुमार, आप बालक होते हुए भी विषय भोगों के त्याग में सूरवीर के समान महावीर हैं। विषय भोगों को त्यागना वीर है, विषय भोगों का भोग वीरता नहीं है। यह है भारतीय ज्ञान परंपरा का दर्शन।
1: जी, जी, जी।
0: हम लोग क्या समझते हैं, जैसे ही हमारे पास शक्ति आती है हम विषय के भोगों के प्रति टूट पड़ते हैं। कितनी बड़ी बात है, कि कितनी बड़ी मूर्खता है कि हम एक प्रकार से उन भोगों के विष का पान करके अमरत्व को प्राप्त करने की आकांक्षा ले बैठे हैं।
1: जी जी जी।
0: कोई व्यक्ति कह सकते हैं कि मतलब मरण धर्मा चीजों का चिंतन करे और स्वर्ग की आकांक्षा करे या अमरता के ख्याल पाल रखे, है ना। जो मृत्यु और मां मृतम गमय की बात करते हैं, तो आप जरा विचार करके देखिए कि मनुष्य पूरे जीवन मरण धर्मा चीजों का ही तो चिंतन करता है। और हम कहते हैं विषयों को आप मरण धर्मा न भी माने, आप तो मरण धर्म है, आपके शरीर का तो मृत्यु होना ही है,
1: होना
0: आप जानते
1: है,
0: हैं। तो शरीर से शरीर के विषयों का चिंतन करना और फिर अमृत का आकांक्षा करना कितनी बड़ी मूर्ता है ये, जिसको लेके हम जो अपने उपनिषद के ऋषि कहते हैं मृत्यु और मां अमृतम गमय, कि मृत्यु से अमृत की यात्रा होनी चाहिए। तो ऐसा उन्होंने कहा, ब्राह्मण जो प्राप्त करने योग्य वस्तु है उसे पूर्ण रूप से आपने पा लिया है, आपका चित्त पूर्ण काम हो गया है, आप दृश्य वस्तु की ओर दृष्टपात नहीं करते हैं, अतः मुक्त हैं। अब देखिए मुक्ति की परिभाषा क्या है, दृष्ट वस्तु की तरफ दृष्टपात न करना। और हम लोगों का क्या है, दृष्ट वस्तु की तरफ ही दृष्टपात करने में पूरा जीवन लगाते हैं।
1: जी, जी,
0: है ना। यहां तक कि अदृश्य को भी दृष्ट करने की कोशिश करते हैं, उसका भी एक रूप बना लिया हम लोगों ने।
1: जी।
0: अभी और कुछ पाना और जानना शेष रह गया है, इस भ्रम को त्याग दो। अब देखिए ये बड़ी बात उन्होंने कह दी, कहा कि ये आपने जान लिया कि परम पुरुष परमात्मा के अतिरिक्त तो दूसरा कुछ भी नहीं है और जो भी इसके सिवाय और कुछ जानने योग्य नहीं है, और कुछ जानने योग्य है तो इस भ्रम को त्याग दो। ये भ्रम है और कुछ नहीं है, ये संसार का भ्रम है। इस पर विश्वामित्र जी कहते हैं कि श्री राम महात्मा जनक के द्वारा इस प्रकार उपदेश पाकर सुखदेव जी अत्यंत शुद्ध परम वस्तु परमात्मा में चुपचाप स्थित हो गए। यही है मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण। ये व्यवहार बताया, मुमुक्षु का व्यवहार कैसा होगा, है ना। वे सर्वथा निरीह और संशय रहित हो गए। तदनंतर वे मेरुगिर के प्रशस्त शिखर पर समाधि लगाने के लिए चले गए, वहां 10,000 वर्षों तक निर्विकल्प समाधि में स्थित रहे।
1: सुखदेव जी।
0: तो कहते हैं कि ये जो मुमुक्षु व्यवहार है, अब देखिए कितना सुंदर प्रकरण है ये। पहले तो वैराग्य प्रकरण, ऐसा वैराग्य नहीं जो संसार के रागादि दोषों से उत्पन्न हुआ है, है ना, वो बीतराग से उत्पन्न वैराग्य एक बात, और दूसरी बात उस वैराग्य के बाद जो राम जी जब चुप होते हैं तो उसके बाद मुमुक्षु व्यवहार सुनाया जाता है उनको, कि मुमुक्षुओं का व्यवहार क्या है। ऐसे ही एक मुमुक्षु सुखदेव का वृतांत जो है सुनाया गया विश्वामित्र जी के द्वारा राम जी को।
1: बहुत ही सुंदर
0: जी।
1: तो शशिकांत जी, बहुत ही सुंदर आज की चर्चा रही, आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए, आपका हम हृदय से आभार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज हमने चर्चा की मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण पर। उम्मीद है आज का ये विषय आप तक बहुत सहज होकर पहुंचा होगा और पसंद आया होगा। चलते चलते आपको हम बता दें कि हमारे बीच विशेषज्ञ के तौर पर उपस्थित थे योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपसे बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें, नमस्कार। आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

0: रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत विभूति।
2: नमस्कार श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद के कार्यक्रम भारत विभूति में आपका स्वागत है। भारत की महान परंपरा केवल राजाओं, योद्धाओं और संतों की परंपरा नहीं है, ये उन शिक्षकों, विचारकों और ज्ञान पुरुषों की भी परंपरा है जिन्होंने राष्ट्र की आत्मा को गढ़ा है। आज हम ऐसे ही एक महापुरुष की जीवन यात्रा पर चलेंगे जिन्होंने आधुनिक भारत की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा दी, गणित के क्षेत्र में विश्व स्तर पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया और भारतीय युवाओं में आत्मविश्वास जगाने का भी काम किया। आज की हमारी विभूति है सर आशुतोष मुखर्जी।
3: जब भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था तब बहुत से भारतीयों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया जाता था कि ज्ञान, विज्ञान और शोध केवल पश्चिम की देन है। लेकिन उसी समय भारत की धरती पर एक ऐसा व्यक्तित्व खड़ा हुआ जिसने अपनी प्रतिभा और परिश्रम से यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय बुद्धिमत्ता किसी से कम नहीं है। वह व्यक्ति था आशुतोष मुखर्जी, एक गणितज्ञ, एक न्यायविद, एक शिक्षाविद और सबसे बढ़कर एक राष्ट्र निर्माता।
2: 29 जून 1864, कलकत्ता का भवानीपुर क्षेत्र, एक प्रतिष्ठित परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। पिता थे डॉक्टर गंगा प्रसाद मुखर्जी, वो अपने समय के जाने माने चिकित्सकों में गिने जाते थे। माता जगत तारिणी देवी संस्कार, धर्म और भारतीय जीवन मूल्यों की प्रतीक थीं। घर में विद्या, संस्कृति और अनुशासन का वातावरण था और यहीं से प्रारंभ हुई उस बालक की यात्रा जो आगे चलकर भारतीय शिक्षा जगत का एक युग पुरुष बनने वाला था।
3: बचपन से ही आशुतोष असाधारण प्रतिभा के धनी थे। कहा जाता है कि वे किसी भी विषय को केवल पढ़ते नहीं थे, उसे समझते थे। और केवल समझते ही नहीं थे, उसके भीतर छिपे तर्क को खोजने का प्रयास करते थे। शायद यही कारण था कि गणित उन्हें विशेष रूप से आकर्षित करता था। संख्याएं उनके लिए केवल गणना का साधन नहीं थी, वे उनके लिए चिंतन का माध्यम थी।
2: उनकी प्रारंभिक शिक्षा चक्रबेड़िया स्थित साउथ सबर्बन स्कूल में हुई। विद्यालय के दिनों में ही उनकी प्रतिभा सबका ध्यान आकर्षित करने लगी थी। शिक्षक समझ चुके थे कि यह बालक साधारण नहीं है, उनके भीतर कुछ तो विशेष है, कुछ ऐसा जो उसे आने वाले समय में अति विशिष्ट बनाएगा।
3: सन 1879, आयु मात्र 15 वर्ष, कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा और परिणाम आया। आशुतोष मुखर्जी ने पूरे विश्वविद्यालय में दूसरा स्थान प्राप्त किया। उस समय यह उपलब्धि असाधारण मानी जाती थी। यह सफलता केवल एक विद्यार्थी की नहीं थी, यह भारतीय प्रतिभा की बड़ी पहली घोषणा थी।
2: और इसके बाद उन्होंने कलकत्ता के प्रतिष्ठित प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। यह वही संस्थान था जहां उस समय भारत के कई प्रतिभाशाली युवा शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। यहीं उनकी मुलाकात दो महान व्यक्तित्वों से हुई, एक थे वैज्ञानिक प्रफुल्ल चंद्र राय और दूसरे थे नरेंद्र नाथ दत्त। वही नरेंद्र नाथ दत्त जिन्हें दुनिया बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से जानने लगी।
3: जरा कल्पना कीजिए उस वातावरण की, एक ओर विज्ञान का उजाला, दूसरी ओर आध्यात्मिक चिंतन, एक ओर आधुनिकता और दूसरी ओर भारतीय संस्कृति की गहराई। इन सब के बीच अध्ययन कर रहे थे आशुतोष मुखर्जी। यह वातावरण उनके व्यक्तित्व को और व्यापक बनाता चला गया।
2: सन 1883 में उन्होंने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उन्हें प्रतिष्ठित प्रेमचंद रायचंद छात्रवृत्ति प्रदान की गई। यह उस समय की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित शैक्षणिक उपलब्धियों में से एक मानी जाती थी, लेकिन आशुतोष मुखर्जी के लिए ये केवल एक पड़ाव मात्र था। उनकी यात्रा अभी बहुत आगे तक जाने वाली थी।
3: गणित में उनकी रुचि लगातार बढ़ती जा रही थी। उन्होंने गणित में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की और इसके बाद भौतिक विज्ञान में भी स्नातकोत्तर किया। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के इतिहास में पहले ऐसे विद्यार्थी बने जिन्होंने दो अलग अलग विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त की। आज भी यह उपलब्धि अत्यंत प्रेरणादायक मानी जाती है।
2: लेकिन एक और खास बात थी, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ वो लगातार शोध कार्यों में भी लगे हुए थे। जब अधिकांश विद्यार्थी केवल परीक्षाओं की तैयारी करते, तब आशुतोष मुखर्जी नए गणितीय प्रश्नों के समाधान खोज रहे थे। वो विश्व के प्रसिद्ध गणितज्ञों द्वारा प्रकाशित शोध पत्रों को पढ़ा करते, उनके प्रश्नों पर विचार करते और अपने समाधान भी तैयार करते।
3: सन 1880 के दशक का भारत, जहां शोध के अवसर सीमित थे, वैज्ञानिक संसाधन कम थे, फिर भी एक युवा भारतीय गणितज्ञ विश्व के प्रतिष्ठित गणितीय मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा था, और यह किसी चमत्कार से कम नहीं था।
2: 1881 में उन्होंने यूक्लिड के प्रसिद्ध ज्यामितीय संरचना से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रमेय का नया प्रमाण प्रस्तुत किया। ये शोध इंग्लैंड की प्रसिद्ध गणितीय पत्रिका मैसेंजर ऑफ मैथमेटिक्स में प्रकाशित हुआ। उस समय किसी भी भारतीय विद्वान के लिए यह अत्यंत गौरव की बात थी।
3: इसके बाद उन्होंने सलमोन के प्रमेय पर महत्वपूर्ण कार्य किया, एलिप्टिक फंक्शंस पर शोध किया, डिफरेंशियल समीकरणों पर लेख लिखे, ज्यामिति और कलन के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण योगदान दिए। उनके शोध पत्र इंग्लैंड और भारत की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगे और धीरे धीरे उनका नाम अंतर्राष्ट्रीय गणितीय समुदाय में पहचाना जाने लगा।
2: श्रोताओं, कहा जाता है कि गणित उनके लिए केवल एक विषय नहीं था, वो उनके सोचने का एक तरीका था। वो हर समस्या को तर्क और विश्लेषण की दृष्टि से देखते थे, और शायद यही वजह थी कि बाद में जब वो शिक्षा और प्रशासन के क्षेत्र में आए, तब भी उनकी निर्णय क्षमता अत्यंत साफ और व्यवस्थित रही।
3: 1888 तक आते आते वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के फेलो चुने गए। उस समय उनकी आयु केवल 24 वर्ष थी। यह सम्मान किसी साधारण व्यक्ति को नहीं मिलता था। यह उस प्रतिभा की सार्वजनिक स्वीकृति थी जिसे पूरा शैक्षणिक जगत पहचान चुका था।
2: लेकिन यहाँ एक और प्रश्न उठता है कि अगर आशुतोष मुखर्जी इतने बड़े गणितज्ञ थे, तो उन्होंने अपना पूरा जीवन केवल गणित को क्यों नहीं समर्पित किया? वो विश्व के महानतम गणितज्ञों में स्थान प्राप्त कर सकते थे। उनके पास वो प्रतिभा थी, उनके पास वो क्षमता भी थी, फिर उन्होंने दूसरा मार्ग क्यों चुना?
3: क्योंकि उनके भीतर केवल एक गणितज्ञ नहीं था, उनके भीतर एक राष्ट्रभक्त भी था, और वे समझ चुके थे कि भारत को केवल एक महान वैज्ञानिक की आवश्यकता नहीं है, भारत को ऐसी शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है जो हजारों वैज्ञानिक तैयार कर सके। भारत को ऐसे विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है जो विश्व स्तर का ज्ञान उत्पन्न कर सकें, और शायद यही विचार उनके जीवन की दिशा बदलने में सहायक सिद्ध हुआ। देश में नई चेतना जन्म ले रही थी। लोग शिक्षा को केवल नौकरी का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय जागरण का साधन मानने लगे थे। ऐसे समय में आशुतोष मुखर्जी ने अपनी प्रतिभा को केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने तय किया कि अब उनका ज्ञान समाज के काम आएगा।
2: हालांकि गणित के क्षेत्र में उनकी यात्रा लगातार आगे बढ़ रही थी। वो शोध कर रहे थे, नए प्रमेयों पर काम भी कर रहे थे, ज्यामिति और कलन के जटिल प्रश्नों का वो समाधान खोज रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ वो भारतीय शिक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को भी समझ रहे थे।
3: उस समय अधिकांश भारतीय विश्वविद्यालय केवल परीक्षाएं आयोजित करने वाली संस्थाएं थीं। ज्ञान की रचना कम होती थी, शोध की परंपरा लगभग न के बराबर थी, प्रयोगशालाएं सीमित थीं, और भारतीय विद्यार्थियों के सामने अवसर भी बहुत कम थे। आशुतोष मुखर्जी इस स्थिति से कतई संतुष्ट नहीं थे।
2: श्रोताओं, आप जानते हैं कि वो मानते थे कि यदि किसी राष्ट्र को वास्तव में शक्तिशाली बनाना है, तो उसे ज्ञान के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनना होगा। उसे ऐसे विश्वविद्यालय चाहिए होंगे जो केवल पढ़ाए नहीं बल्कि नया ज्ञान भी उत्पन्न करें, जो केवल डिग्रियां ना दें बल्कि एक नया विचार भी दें।
3: यही सोच उन्हें विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर ले गई। सन 1888 में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के फेलो बने उस समय उनकी आयु केवल 24 वर्ष थी। इतनी कम उम्र में यह जिम्मेदारी मिलना उनकी प्रतिभा और प्रतिष्ठा का प्रमाण था।
2: फेलो बनने के बाद उन्होंने विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली को बहुत करीब से जाना। उन्होंने महसूस किया कि भारत में प्रतिभा की कमी नहीं है, कमी है तो केवल उचित मार्गदर्शन और अवसरों की, और ये कमी दूर की जा सकती है।
3: और इसी बीच उनका गणितीय कार्य भी जारी रहा। उन्होंने एलिप्टिक फंक्शंस, डिफरेंशियल समीकरणों और ज्यामिति पर अनेक शोध पत्र लिखे। उनके शोध पत्र केवल भारत में ही नहीं बल्कि इंग्लैंड की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हो रहे थे।
2: शोध पत्रों की सूची देखें तो पता चलता है कि उन्होंने यूक्लिड के प्रमेयों से लेकर मोंज के समीकरणों तक अनेक विषयों पर कार्य किया। उन्होंने गणित को केवल सिद्धांत तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने ये भी दिखाया कि गणित का उपयोग वास्तविक जीवन की जटिल समस्याओं को समझने में कैसे किया जा सकता है।
3: उनकी एक और विशेषता थी, वे केवल नए शोध नहीं करते थे, वे गणित को सरल बनाने का प्रयास भी करते थे। कहा जाता है कि वे जटिल ज्यामितीय सिद्धांतों को बीज गणितीय रूप में समझाने का प्रयास करते थे ताकि विद्यार्थी उन्हें बेहतर ढंग से समझ सकें।
2: सन 1887 से सन 1890 के बीच उन्होंने भारतीय विज्ञान संवर्धन संस्था में गणित के अनेक व्याख्यान दिए। इन व्याख्यानों में विद्यार्थी, शिक्षक और शोधार्थी बड़ी संख्या में हिस्सा लेते थे। उनकी भाषा विद्वत्तापूर्ण होते हुए भी सरल होती, वो कठिन से कठिन विषय को रोचक बना दिया करते।
3: श्रोताओं, ये वही समय था जब उनके भीतर शिक्षक का स्वरूप और अधिक स्पष्ट होने लगा था, क्योंकि वे समझ चुके थे कि ज्ञान का वास्तविक मूल्य तभी है जब वह दूसरों तक पहुंचे, जब वह समाज को लाभ पहुंचाए।
2: आशुतोष मुखर्जी का यह विश्वास था कि भारत को पश्चिम से सीखना चाहिए, लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं। उन्होंने हमेशा भारतीय और पाश्चात्य ज्ञान परंपराओं के संतुलन की बात की। उनका मत था कि विज्ञान सार्वभौमिक है, लेकिन शिक्षा की आत्मा अपने समाज और संस्कृति से जुड़ी होनी चाहिए।
3: और उनके विचारों का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। शिक्षा जगत में उनका सम्मान बढ़ रहा था। गणितज्ञ उन्हें अपने बीच का विद्वान मानते थे, शिक्षक उन्हें प्रेरणा मानते थे और विद्यार्थी उन्हें मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे थे।
2: लेकिन आशुतोष मुखर्जी केवल एक विषय तक सीमित रहने वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने कानून की पढ़ाई भी पूरी की और जल्द ही न्यायिक क्षेत्र में भी अपनी पहचान बना ली।
3: यह उनके व्यक्तित्व की एक अद्भुत विशेषता थी, एक ओर गणितज्ञ, दूसरी ओर वैज्ञानिक चिंतक, तीसरी ओर शिक्षाविद और अब एक विधिवेत्ता। ऐसा बहुआयामी व्यक्तित्व इतिहास में विरला ही देखने को मिलता है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। उनका अध्ययन इतना व्यापक था कि लोग उन्हें चलता फिरता विश्वविद्यालय कहा करते थे। किसी भी विषय पर उनसे बातचीत कर लीजिए, इतिहास, विज्ञान, दर्शन, साहित्य, कानून या गणित, हर विषय पर उनकी पकड़ अद्भुत थी।
3: इसी बीच उन्होंने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने महसूस किया कि भारत में गणित के लिए सशक्त मंच होना चाहिए, और ऐसा मंच जहां गणितज्ञ अपने विचार साझा कर सकें, जहां शोध को प्रोत्साहन मिले, जहां भारतीय प्रतिभाएं विकसित हो सकें।
2: और इसी विचार के साथ आगे चलकर कलकत्ता मैथमेटिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। ये संस्था भारत में गणितीय अनुसंधान की महत्वपूर्ण आधारशिला बनी। आशुतोष मुखर्जी इसके संस्थापकों में अग्रणी थे और लंबे समय तक इसके नेतृत्व से जुड़े रहे।
3: आज जब हम भारत में गणितीय अनुसंधान की समृद्ध परंपरा देखते हैं तो उसके प्रारंभिक स्तंभों में आशुतोष मुखर्जी का नाम अवश्य दिखाई देता है। उन्होंने न केवल स्वयं शोध किया बल्कि शोध की संस्कृति भी विकसित की।
2: धीरे धीरे उनकी दृष्टि और व्यापक होती चली गई। अब वो केवल गणित या किसी एक विषय के विकास की बात नहीं कर रहे थे, वो पूरे शिक्षा तंत्र के परिवर्तन की बात कर रहे थे।
3: और यहीं से आरंभ होता है उनके जीवन का वह अध्याय जिसने उन्हें भारतीय शिक्षा जगत का महानायक बना दिया। एक ऐसा अध्याय जिसमें वे विश्वविद्यालयों का स्वरूप बदलते हैं, नई संस्थानों की स्थापना करते हैं, देश भर की प्रतिभाओं को आगे लाते हैं और भारतीय उच्च शिक्षा को नई दिशा देते हैं। और अब उस समय की बात करते हैं जब भारत राजनीतिक रूप से गुलाम था लेकिन मानसिक रूप से जाग रहा था। देश में नई चेतना का उदय हो रहा था। युवा वर्ग शिक्षा को स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का मार्ग मानने लगा था और ऐसे समय में शिक्षा संस्थानों की भूमिका पहले से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई थी।
2: साल था 1906। कलकत्ता विश्वविद्यालय में उपकुलपति के रूप में एक ऐसा नाम सामने आया जो आने वाले वर्षों में भारतीय शिक्षा का पर्याय बन गया, आशुतोष मुखर्जी।
3: उपकुलपति का पद संभालते ही उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी, विश्वविद्यालय केवल परीक्षा लेने वाले संस्थान नहीं रहेगा, यह ज्ञान निर्माण का केंद्र बनेगा। यहाँ केवल पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाए जाएंगे, यहाँ शोध होगा, नवाचार होगा, नए विचार जन्म लेंगे।
2: उस समय अधिकांश भारतीय विश्वविद्यालय अंग्रेजी प्रशासन की जरूरतों के अनुसार काम कर रहे थे। उनका उद्देश्य ऐसे कर्मचारी तैयार करना था जो शासन व्यवस्था को चलाने में सहायता कर सकें। लेकिन आशुतोष मुखर्जी का सपना इससे कहीं अधिक बड़ा था। वो ऐसे विश्वविद्यालय चाहते थे जो राष्ट्र की बौद्धिक शक्ति बने।
3: उन्होंने सबसे पहले उच्च शिक्षा में शोध की संस्कृति को प्रोत्साहित किया। उनका मानना था कि केवल किताबें पढ़ लेने से कोई समाज महान नहीं बन सकता। महान समाज वह होता है जो नया ज्ञान उत्पन्न करता है, जो नए प्रश्न पूछता है और उनके उत्तर खोजता है।
2: और यही कारण था कि उन्होंने विश्वविद्यालय में शोध कार्यक्रमों और उच्च अध्ययन को विशेष महत्व दिया। उन्होंने योग्य विद्यार्थियों को प्रोत्साहन दिया, शोध वृत्तियां शुरू की और नए विभागों की स्थापना का भी मार्ग प्रशस्त किया।
3: उनकी दूरदृष्टि का एक महत्वपूर्ण उदाहरण था विज्ञान शिक्षा को दिया गया महत्व। उस समय विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम थी, संसाधन भी सीमित थे, लेकिन आशुतोष मुखर्जी समझ चुके थे कि आने वाला युग विज्ञान का युग होगा
2: और इसीलिए उन्होंने वैज्ञानिक शिक्षा के विस्तार के लिए भी अथक प्रयास किए। उनका सपना था कि भारत के विद्यार्थी विदेश जाए बिना भी उच्च स्तर का वैज्ञानिक अध्ययन कर सकें और साथ ही ये भी कि भारत की धरती पर ही विश्व स्तरीय प्रयोगशालाएं भी स्थापित हों।
3: उनके प्रयासों का परिणाम था कलकत्ता विश्वविद्यालय का विज्ञान महाविद्यालय। यह केवल एक भवन नहीं था, यह भारतीय विज्ञान के भविष्य की नींव था।
2: कहा जाता है कि संसाधनों की कमी के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। वो लगातार लोगों से सहयोग मांगते रहे, दानदाताओं को प्रेरित करते रहे और अंततः उनका सपना साकार हुआ।
3: यहीं से आगे चलकर अनेक वैज्ञानिक तैयार हुए जिन्होंने भारत का नाम विश्व में रोशन किया। वास्तव में यदि हम आधुनिक भारतीय विज्ञान के इतिहास को देखें तो उसकी जड़ों में कहीं ना कहीं आशुतोष मुखर्जी की दूरदृष्टि दिखाई देती है।
2: लेकिन विज्ञान ही उनकी प्राथमिकता नहीं था, उनकी दृष्टि अत्यंत व्यापक थी। वो भारतीय भाषाओं और भारतीय ज्ञान परंपराओं को भी उतना ही महत्व देते थे।
3: उस समय अंग्रेजी शिक्षा को ही श्रेष्ठ माना जाता था, भारतीय भाषाओं को उच्च शिक्षा के योग्य नहीं समझा जाता था, लेकिन आशुतोष मुखर्जी इस सोच से सहमत नहीं थे।
2: बिल्कुल, क्योंकि वो मानते थे कि कोई भी राष्ट्र अपनी भाषा और संस्कृति से कटकर महान नहीं बन सकता। इसीलिए उन्होंने विश्वविद्यालय में भारतीय भाषाओं और भारतीय अध्ययन को प्रोत्साहन दिया।
3: संस्कृत, पाली, बांग्ला, भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति, इन सभी विषयों को उन्होंने सम्मानजनक स्थान दिलाने का प्रयास किया।
2: उनका विश्वास था कि आधुनिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति साथ साथ चल सकते हैं। एक और प्रयोगशालाएं हो सकती हैं, तो दूसरी ओर साहित्य और दर्शन भी। एक ओर आधुनिक शोध हो सकता है तो दूसरी ओर परंपरा का संरक्षण भी।
3: यही संतुलित दृष्टि उन्हें अपने समय के अन्य शिक्षाविदों से अलग बनाती है। वे अतीत में अटके हुए व्यक्ति नहीं थे, लेकिन वे अपनी जड़ों को छोड़कर आगे बढ़ने में भी विश्वास नहीं करते थे।
2: आशुतोष मुखर्जी की एक और विशेषता थी, प्रतिभा को पहचानने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। वो व्यक्ति नहीं देखते थे, वो क्षमता देखते थे।
3: कई युवा विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को उन्होंने अवसर दिए, उनकी सहायता की, उन्हें आगे बढ़ने का मंच दिया, क्योंकि वे जानते थे कि एक प्रतिभा को अवसर देना राष्ट्र के भविष्य में निवेश करना है।
2: और उनके व्यक्तित्व का प्रभाव इतना व्यापक था कि विद्यार्थी उन्हें केवल प्रशासक नहीं बल्कि मार्गदर्शक मानते थे। वो उनके पास केवल शैक्षणिक समस्याएं लेकर ही नहीं आते थे, बल्कि उनसे वो अपने जीवन से जुड़े प्रश्न भी पूछते थे।
3: आशुतोष मुखर्जी का उत्तर केवल एक ही दिशा में होता था, परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास। वे कहते थे कि यदि व्यक्ति में ये तीन गुण हैं, तो सफलता देर से मिलेगी लेकिन अवश्य मिलेगी।
2: धीरे धीरे उनका नाम पूरे भारत में सम्मान के साथ लिया जाने लगा। उनकी प्रशासनिक क्षमता, उनकी विद्वता और उनकी निर्भीकता और उनकी राष्ट्र निष्ठा, इन सब ने मिलकर उन्हें एक असाधारण व्यक्तित्व बना दिया।
3: इसी दौरान लोगों ने उन्हें एक नया नाम देना शुरू किया, बंगाल का बाघ। यह केवल एक प्रशंसा नहीं थी, यह उनके साहस और स्वाभिमान का सम्मान था।
2: कारण था कि वो किसी भी तरह के दबाव के सामने झुकते नहीं थे। यदि उन्हें लगता कि कोई निर्णय शिक्षा या विद्यार्थियों के हित में नहीं है, तो वो खुलकर उसका विरोध करते, चाहे सामने कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना खड़ी हो।
3: उनके लिए केवल पद महत्वपूर्ण नहीं था, सिद्धांत महत्वपूर्ण थे। प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण नहीं थी, सत्य महत्वपूर्ण था। और यही कारण था कि वे लाखों विद्यार्थियों की प्रेरणा बन गए।
2: श्रोताओं, जब आज हम भारत के शिक्षा व्यवस्था की चर्चा करते हैं, तब हमें याद रखना चाहिए कि जिन संस्थाओं और परंपराओं पर हमें गर्व है, उनकी नींव रखने वालों में आशुतोष मुखर्जी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है।
3: लेकिन उनके जीवन की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अभी हमें जानना है एक न्यायाधीश के रूप में उनका योगदान, एक पिता के रूप में उनकी भूमिका, और वह विरासत जो उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ी। वे केवल एक शिक्षाविद तक सीमित नहीं थे, वे न्याय के क्षेत्र में भी उतने ही सम्मानित थे जितने शिक्षा के क्षेत्र में।
2: कानून की शिक्षा पूर्ण करने के बाद उन्होंने न्यायिक क्षेत्र में प्रवेश किया। उनके तार्किक क्षमता, गहन अध्ययन और निष्पक्ष दृष्टि ने शीघ्र ही उन्हें विशिष्ट पहचान दिलाई।
3: गणित ने उन्हें तर्क दिया था, विज्ञान ने उन्हें विश्लेषण की क्षमता दी थी, और कानून ने उन्हें न्याय का दृष्टिकोण दिया। इन तीनों का अद्भुत समन्वय उनके निर्णयों में भी दिखाई देता था।
2: कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में उन्होंने कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की। उनकी पहचान एक ऐसे न्यायाधीश की थी जो तथ्यों को गहराई से समझता था और किसी भी तरह के दबाव से प्रभावित नहीं होता था।
3: उनके लिए न्याय केवल कानून की भाषा नहीं था, यह नैतिक उत्तरदायित्व भी था। वे मानते थे कि न्यायालय केवल विवादों का समाधान करने का स्थान नहीं, बल्कि समाज के विश्वास का केंद्र है।
2: यही कारण था कि न्यायपालिका में भी उनका सम्मान अत्यंत ऊंचा था, लेकिन जितना बड़ा उनका पद था, उतनी ही बड़ी उनकी विनम्रता भी थी।
3: उनके जीवन का एक और महत्वपूर्ण पक्ष था उनका पारिवारिक जीवन। वे एक अनुशासित पिता थे, लेकिन उससे भी अधिक एक प्रेरक मार्गदर्शक।
2: उनके पुत्र श्यामा प्रसाद मुखर्जी आगे चलकर स्वतंत्र भारत के प्रमुख राष्ट्रनायकों में गिने गए, लेकिन किसी भी महान व्यक्तित्व के पीछे कुछ संस्कार भी होते हैं, कुछ मूल्य होते हैं, कुछ आदर्श होते हैं, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व में इन आदर्शों की छाप साफ दिखाई देती है।
3: आशुतोष मुखर्जी ने अपने बच्चों को केवल शिक्षा नहीं दी, उन्होंने आत्मसम्मान दिया, उन्होंने सत्य के प्रति निष्ठा दी, उन्होंने राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना दी।
2: वो मानते थे कि किसी व्यक्ति की वास्तविक पहचान उसके चरित्र से होती है। डिग्रियां और पद महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन चरित्र से बड़ा कोई सम्मान नहीं होता।
3: उनका जीवन इस विचार का जीवंत उदाहरण था। उन्होंने कभी सुविधा का मार्ग नहीं चुना, उन्होंने हमेशा सही मार्ग चुनने का प्रयास किया, चाहे वह कठिन ही क्यों न हो।
2: और आज जब हम उनके जीवन को देखते हैं, तो पाते हैं कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि कोई एक संस्था नहीं थी, कोई एक पद नहीं था, कोई एक सम्मान नहीं था। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी एक ऐसी बौद्धिक परंपरा का निर्माण जिसने आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित किया।
3: उन्होंने भारतीय युवाओं को यह विश्वास दिलाया कि वे भी विश्व स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने भारतीय शिक्षा को यह आत्मविश्वास दिया कि वह केवल अनुकरण करने वाली व्यवस्था नहीं, बल्कि ज्ञान निर्माण करने वाली व्यवस्था भी बन सकती है।
2: श्रोताओं, उनका विश्वास था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का निर्माण है, शिक्षा का उद्देश्य समाज को बेहतर बनाना है, और शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्र को मजबूत करना है।
3: आज भारत के विश्वविद्यालयों में जो शोध हो रहे हैं, आज भारतीय वैज्ञानिक जो उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं, आज भारतीय विद्यार्थी विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जो पहचान बना रहे हैं, उन सब की पृष्ठभूमि में कहीं न कहीं आशुतोष मुखर्जी जैसे दूरदर्शी शिक्षाविदों का योगदान मौजूद है।
2: उनकी दृष्टि समय से बहुत आगे थी। वह ऐसे भारत की कल्पना कर रहे थे जो ज्ञान में आत्मनिर्भर हो, जो अपनी संस्कृति पर गर्व करे, जो विज्ञान में अग्रणी हो और जो दुनिया का केवल अनुसरण ना करे बल्कि उसे दिशा भी दे।
3: पच्चीस मई 1924, ये वह दिन था जब यह महान व्यक्तित्व भौतिक रूप से हमारे बीच से विदा हो गया। लेकिन कुछ लोग अपने जीवन काल से बड़े हो जाते हैं, वे शरीर से नहीं अपने विचारों से जीवित रहते हैं। आशुतोष मुखर्जी ऐसे ही व्यक्तित्व का नाम है।
2: उनकी स्मृति आज भी भारतीय शिक्षा जगत में जीवित है, उनके विचार आज भी प्रासंगिक है, उनका जीवन आज भी प्रेरणा देता है।
3: जब भी कोई विद्यार्थी कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ता है, जब भी कोई शिक्षक शिक्षा को केवल नौकरी नहीं मिशन मानता है, जब भी कोई विश्वविद्यालय नए ज्ञान के निर्माण का संकल्प लेता है, तब कहीं ना कहीं आशुतोष मुखर्जी की विरासत हमारे सामने उपस्थित होती है।
2: श्रोताओं, भारत विभूति के आज के इस विशेष अंक में हमने जाना एक ऐसे महापुरुष को जिसने गणित को साधना बनाया, शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का माध्यम बनाया और अपने जीवन को ज्ञान के प्रकाश के लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया।
3: सर आशुतोष मुखर्जी को विनम्र श्रद्धांजलि, उनके विचारों को नमन, उनके योगदान को प्रणाम।
2: तो श्रोताओं, इसी के साथ अब हम इस यात्रा को यहीं विराम देते हैं। अगले सप्ताह भारत विभूति में हम फिर मिलेंगे भारत के एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व के साथ।
3: तो श्रोताओं, यह था कार्यक्रम भारत विभूति। आज के इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की सर आशुतोष मुखर्जी के बारे में। मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदाली, समन्वय सहयोग सतीश पाथम, आलेख मनीषा चतुर्वेदी का था और मैं था आपके साथ विजयकांत नायक
2: और मैं थी आपकी रेडियो मित्र स्वाति।
3: ये है रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ और सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

90.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम। श्रोताओं, दिन के ठीक 10 बजे हैं, आप समय मिला सकते हैं और आइए सुनते हैं कार्यक्रम परिक्रमा। भोपाल शहर की साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी हम आपको देते हैं परिक्रमा कार्यक्रम में। श्रोताओं, भारतीय शास्त्रीय संगीत की मधुर गूंज और ध्यान की शांति से सराबोर एक यादगार शाम शुक्रवार को होशंगाबाद रोड स्थित ब्रीथ एंड बैलेंस स्टूडियो में सजी योग मूवमेंट और लाइव परफॉर्मेंस स्टूडियो ब्रीथ एंड बैलेंस में भारतीय शास्त्रीय संगीत की नई प्रस्तुति श्रृंखला गमक का शुभारंभ सरोद वादन के साथ हुआ। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आयोजित ये शाम पार्श्व गायक मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि को समर्पित की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य केवल शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति देना नहीं था, बल्कि संगीत, योग और ध्यान के समन्वय के माध्यम से श्रोताओं को आत्मिक शांति, मानसिक एकाग्रता और भावनात्मक संतुलन का अनुभव कराना भी था। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सरोद वादक आमिर खान ने सबसे पहले राग देश की प्रस्तुति दी। सरोद के मधुर और गंभीर स्वरों के बीच उन्होंने अनुरोध किया कि कुछ क्षणों के लिए दर्शक अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, केवल संगीत की ध्वनियों पर ध्यान केंद्रित करें। और फिर जैसे जैसे आलाप आगे बढ़ा, पूरा सभागार शांत होता गया, वातावरण ध्यानमग्न हो गया। इसके बाद उन्होंने राग मल्हार प्रस्तुत किया। सरोद के हर स्वर के साथ श्रोता संगीत की लय में डूबते चले गए। आमिर खान ने बीच बीच में रागों की विशेषताओं और उनके भावों के बारे में भी सरल भाषा में जानकारी दी। कार्यक्रम के अगले चरण में राग कामोद की प्रस्तुति हुई। इसके बाद उन्होंने भगवान शिव को समर्पित प्रसिद्ध धुन शिव कैलाशों के वासी सरोद पर प्रस्तुत किया। इस प्रस्तुति के दौरान पूरा सभागार भक्ति के भाव से भर गया। कई श्रोता आंखें बंद कर ध्यानमग्न होकर संगीत का आनंद लेते दिखाई दिए। कार्यक्रम का समापन महान गायक मोहम्मद रफी को संगीतमय श्रद्धांजलि के साथ संपन्न हुआ।

महान गायक पार्श्व गायक किशोर कुमार की जयंती के उपलक्ष्य में KKFC म्यूजिक इंडिया और किशोर कुमार फैंस क्लब द्वारा रविवार को छूकर मेरे मन को संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से ये कार्यक्रम शाम 6 बजे रविन्द्र भवन के अंजनी सभागार में होगा। कार्यक्रम में वरिष्ठ गायक डॉक्टर कुमार राजेश किशोर कुमार के लोकप्रिय गीतों की प्रस्तुति देंगे। वे पिछले 30 वर्षों से गायन के क्षेत्र में सक्रिय हैं और उनके कई संगीत एल्बम रिलीज हो चुके हैं। इस संगीतमय शाम में जी सारेगामा फेम अमीशा और राधिका, मुंबई की गायिका मिहिका, संदीप पारे सहित क्लब के सदस्य भी प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम के दौरान संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रवीण कश्यप को किशोर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। क्लब के सह संस्थापक डॉक्टर संजय पोफली और डॉक्टर टीएन दुबे ने बताया कि कार्यक्रम में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। प्रसिद्ध कथाकार शिक्षाविद एवं विचारक जगन्नाथ प्रसाद चौबे वनमाली की 114वीं जयंती पर आयोजित वनमाली सृजन केंद्रों के 6वें राष्ट्रीय सम्मेलन के तहत वर्ष 2026 के राष्ट्रीय वनमाली विशिष्ट कथा सम्मान की घोषणा की गई है। इस वर्ष डॉ. कृष्णा अग्निहोत्री, डॉ. रमेश दवे और सूर्यकांत नागर को हिंदी साहित्य में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। सम्मान समारोह 7 अगस्त को मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति इंदौर में होगा। आयोजन राष्ट्रीय वनमाली सृजन पीठ, रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी और डॉ. सीवी रमन विश्वविद्यालय खंडवा के संयुक्त तत्वाधान में होगा। सम्मानित साहित्यकारों को प्रशस्ति पत्र और 51,000 की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। समारोह में वनमाली कथा और वनमाली वार्ता के नए अंकों का लोकार्पण भी किया जाएगा। इस अवसर पर देशभर के साहित्यकार, शिक्षाविद और रचनाकार भी शामिल होंगे। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की गरिमा और सांस्कृतिक परंपरा को समर्पित भरतनाट्यम नृत्य संध्या नृत्य लता का आयोजन 3 अगस्त को शाम 6:30 पर रविंद्र भवन के अंजनी सभागार में किया जाएगा। यमन अकादमी ऑफ फाइन आर्ट्स के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में शहर के कलाकार भरतनाट्यम की मनमोहक प्रस्तुतियां देंगे। कार्यक्रम का मंचन भरतनाट्यम की पारंपरिक मार्गम शैली में होगा। इसकी शुरुआत पुष्पांजलि से होगी, जिस नृत्य के माध्यम से देववंदना और गुरु को नमन किया जाएगा। इसके बाद विभिन्न शास्त्रीय प्रस्तुतियों में भाव, लय, ताल और अभिव्यक्ति का सुंदर समन्वय देखने को मिलेगा। कार्यक्रम का समापन तिल्लाना से होगा, जिसे भरतनाट्यम की तकनीकी दक्षता और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है।

संगीत के महानायक मोहम्मद रफ़ी को याद करते हुए उनके समकालीन गायक मन्ना डे ने कभी कहा था, हज़ारों मुझ जैसे आएंगे पर एक और रफ़ी नहीं होगा। भजन, गज़ल, कव्वाली, सुख दुख या रोमांटिक नगमे, रफ़ी साहब ने समाज के हर वर्ग और भावना को अपनी आवाज़ दी है। शुक्रवार को उनकी याद में रविंद्र भवन के हंसध्वनि सभागार में कुछ ऐसा ही सुरमई माहौल देखने को मिला। यहाँ नवांकुर ग्रुप द्वारा रफ़ी साहब की 46वीं पुण्यतिथि पर यानी 30 जुलाई पर अपने पारंपरिक कार्यक्रम एक शाम रफ़ी के नाम का आयोजन किया गया। संगीत प्रेमियों से खचाखच भरे 1500 सीटर ऑडिटोरियम के अंदर सुरों की बारिश हो रही थी। बाहर सावन बरस रहा था। कार्यक्रम में देश भर से आए चर्चित कलाकारों ने अपनी गायकी का जलवा बिखेरा।

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए शुरू की गई मासिक व्याख्यान माला के पहले सत्र में वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा ने रामायण कुशल नायक की कथा विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि एक सफल लीडर वही होता है जो अपनी टीम के प्रत्येक सदस्य की क्षमता और गुणों को पहचानकर उसके अनुरूप उसे जिम्मेदारी सौंपे। भगवान श्री राम और हनुमान का संबंध इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। उन्होंने कहा कि श्री राम ने हनुमान की प्रतिभा को पहचानकर उन्हें महत्वपूर्ण दायित्व दिए। अभिनव कला परिषद एवं मधुवन के संयुक्त तत्वाधान में 56वें गुरु वंदना महोत्सव का आयोजन शनिवार शाम 6:30 पर मानस भवन में किया जाएगा। श्रोताओं, आज इस समारोह में भारतीय कला, साहित्य, संस्कृति एवं अध्यात्म के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 8 विशिष्ट विभूतियों को श्रेष्ठ कला आचार्य अलंकरण से सम्मानित किया जाएगा। अभिनव कला परिषद और मधुवन के संयुक्त तत्वाधान में 56वां गुरु वंदना महोत्सव का आयोजन आज किया जा रहा है मानस भवन श्यामला हिल्स भोपाल में। कार्यक्रम में संगीत संध्या भी होगी। आयोजन गुरु शिष्य परंपरा और भारतीय संस्कृति को समर्पित रहेगा। तो श्रोताओं, ये था आज का परिक्रमा कार्यक्रम। आप सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है देशभक्ति गीत।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष, जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों रणबांकुरों जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका इतिहास, इस देश का इतिहास जो आ पहुंचा है आपके पास आपको सुनाने फिर से एक वीर की गाथा। लेकिन तारीख कहाँ है? अरे तारीख, तुम वहां क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें देखा ही नहीं।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी तारीख, आपकी अपनी तारीख जो यहाँ आ पहुंची है देने इतिहास का साथ। और आज तो इतिहास से पहले ही आ गई हूँ मैं।
1: क्या बात है, आज तो बड़े उत्साह में दिखाई पड़ती हो। भाई बात क्या है, हम भी तो जाने।
2: बिल्कुल सही कहा, मैं तो हूँ ही उत्साहित। अब भाई आखिर मैं तारीख हूँ, उत्साहित नहीं रहूंगी क्या? लेकिन आज मेरे उत्साह का एक और कारण है।
1: अच्छा, तो हम सबको भी तो बताओ वो कारण।
2: इतिहास, आपने ही तो कहा था कि आज आप ऐसे नायक के बारे में बताएंगे जिसे राजनीति में ऋषि का प्रादर्श कह सकते हैं।
1: बिल्कुल तारीख, देखो राजनीति का ऋषि पहले एक प्रादर्श क्रांतिकारी होता है, इसलिए ये कहना चाहिए कि क्रांति नायक राजर्षि।
2: ओ हाँ, अब याद आया, आप आज राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के बारे में हम सबको बताने वाले हैं, है ना? जिन्हें राजर्षि की उपाधि स्वयं जनता ने दी है।
1: वाह, तुम्हें याद है, बहुत खूब तारीख। भाई मान गए तुम्हें, देर से ही सही लेकिन तुम्हें याद तो आया।
2: अरे आप मेरी तारीफ छोड़िए और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी के बारे में बताइए।
1: ये तो मेरा सौभाग्य होगा तारीख, तुम्हें पता है उनके लिए एक कविता हमेशा कही जाती है।
2: वाह कविता, अरे मैं क्या, हम सब सुनना चाहेंगे इतिहास, जरूर सुनाइए।
1: तो सुनो, दे राजर्षि की उपाधि देश ने जिनका था सम्मान किया, निरासक्त उन महतापी ने क्या था अपना नहीं दिया, व्रति भीष्म सदृश थे वे शिव सामान अवढर थे, पुत्र भारती का हो कोई उनके सबके हितकर थे।
2: सुना है वो हिंदी की उन्नति के लिए भीष्म थे और हरीशचंद्र की तरह दृढ़ प्रतिज्ञ थे। आज हिंदी अगर राष्ट्रभाषा के पद पर है तो वो उन्हीं की साधना का फल है।
1: हाँ तारीख, बिल्कुल सही सुना है तुमने। चलो अब हम और हमारे साथी सुनते हैं एक देशभक्ति से ओतप्रोत गीत।

0: राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी का जन्म 1882 की 1 अगस्त को प्रयाग के खुशहाल पर्वत नामक मोहल्ले में हुआ था। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी के पिताजी का नाम सालिग्राम और माताजी का नाम बिट्टन देवी था, जो कि बाद में राधास्वामी धर्म में दीक्षित होने के चलते शरण देवी हो गया। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ने प्रारंभिक शिक्षा घर पे लेने के बाद 1897 में गवर्नमेंट हाई स्कूल से मैट्रिक और 1899 में कायस्थ पाठशाला कॉलेज से इंटर और उसके पश्चात 1904 में म्योर सेंट्रल कॉलेज से बीए और फिर 1906 में वकालत की परीक्षा पास की। इसके साथ ही साथ वकालत की पढ़ाई करते हुए उन्होंने इतिहास में एमए भी किया।
1: हाँ, और 1899 में ही उनका विवाह चंद्रमुखी देवी से करवा दिया गया था और चंद्रमुखी देवी ने भी कस्तूरबा जी की ही तरह हमेशा अपने पति के सिद्धांतों का अनुसरण किया। इस प्रकार चंद्रमुखी देवी भी ऋषि पत्नी होने का एक प्रादर्श हैं।
0: वकालत करते करते राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी का संपर्क महामना मालवीय जी से हुआ। 1914 में मालवीय जी ने राजर्षि को पंजाब के नाभा राज्य के दीवान के पद पर नियुक्ति दिलवाई, लेकिन उसे अपनी प्रवृत्ति और प्रकृति के प्रतिकूल पाकर राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने जल्द ही उस पद से मुक्ति ले ली।
1: राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी जन्मजात देशभक्त तो थे ही, साथ ही साथ जन्मजात रूप से अनाचार और अत्याचार के विरुद्ध निडर होकर खड़े होने वाले योद्धा भी थे। जब वे एक विद्यार्थी के रूप में अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर रहे थे, तभी उन्हें अपनी देशभक्ति के चलते कांग्रेस का साथ मिला और वो कांग्रेस के साथ हो लिए।
0: हाँ, तारीख कांग्रेस पार्टी में वे सबसे पहले 1905 में वाराणसी में हुए कांग्रेस अधिवेशन में स्वयंसेवक के रूप में शामिल हुए और उस अधिवेशन की अध्यक्षता श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इसके बाद 1908 में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन में प्रतिनिधि बनकर शामिल हुए राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन उर्फ राजर्षि।

0: वो समय आ चुका था जबकि भारत का इतिहास करवट बदल रहा था। शांतिपूर्वक भारत का शासन भारतीयों को देने के वादे से अंग्रेज सरकार मुकर गई थी। और तो और इससे भी बढ़कर एक जो बहुत ही बुरी बात हुई थी वो ये कि रोलेट एक्ट कानून भी पास कर दिया गया था। क्रांतिकारी कांग्रेस सरकार ने उसे काला कानून नाम दिया और इस कानून के विरुद्ध एक जन आंदोलन छिड़ गया।
1: इसी समय की बात है, देश में जलियांवाला कांड भी हो चुका था। कांग्रेस ने इस क्रूर कांड की जांच समिति बनाई जिसके एक सदस्य पुरुषोत्तम दास टंडन उर्फ राजर्षि भी नियुक्त किए गए। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी। पुरुषोत्तम दास टंडन भी राजसी आय वाली वकालत छोड़कर इस आंदोलन में शामिल हो गए। सारे ठाट बाट छोड़कर उन्होंने अपने परिवार को भी सारी सुविधाओं से वंचित कर दिया। वे गांव गांव घूमकर विदेशी कपड़ों की होली जलाते, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते, चरखे का प्रचार, अदालतों का बहिष्कार, अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार करते और इस तरह आजादी की अलख जगाने में जुट गए। इसका परिणाम ये हुआ कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 1.5 बरस का कारावास हुआ।
0: कितने महान होते थे वो वीर सपूत जो अपनी सारी सुविधाएं भूलकर भारत माता की आजादी के लिए जेल जाने में अपना सुख खोज लेते थे। कितने खुशनसीब थे वो जेल जिनमें ऐसे सपूतों के चरण पड़ते थे।

0: समय धीरे धीरे करवट ले रहा था। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था और सभी राजनीतिक बंदी मुक्त कर दिए गए थे।
1: इस दौर में पुरुषोत्तम दास टंडन उर्फ राजर्षि की पत्नी चंद्रमुखी जी ने अपने पति को दिए वचन का पालन करने के लिए न किसी की मदद ली और न ही याचना की।
0: जेल से निकलने के बाद लाला लाजपत राय ने उनकी प्रचारक क्षमता को ध्यान में रखते हुए पुरुषोत्तम दास टंडन को अछूतोद्धार के कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए आमंत्रित किया और इसके लिए उन्हें 500 रुपए मासिक वेतन देने का वायदा भी किया। लाला जी चाहते थे कि पुरुषोत्तम दास टंडन की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार आ जाए, बस राजर्षि इस बात को भांप गए और मदद न लेने की अपनी नीति के चलते उन्होंने लाला जी के आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। पुरुषोत्तम दास टंडन उर्फ राजर्षि का मानना था कि देश सेवा का प्रतिदान आजादी का फल पाने के लिए होता है, न कि आर्थिक उन्नति करने के लिए।
1: वाह, क्या विचार थे! देश सेवा का प्रतिदान आजादी का फल पाने के लिए होता है, न कि आर्थिक उन्नति करने के लिए। हाँ, परंतु लाला जी ने भी हार नहीं मानी होगी, है ना?
0: हाँ, लाला जी भी कहाँ हार मानने वाले थे। आखिरकार लाला लाजपत राय ने पुरुषोत्तम दास टंडन जी को लाहौर बुलाकर उनकी नियुक्ति पंजाब नेशनल बैंक के सचिव के पद पर करवा ही दी। यहाँ राजर्षि लाला जी का लिहाज करके काम भी करते रहे, लेकिन 1928 में जब लाला जी इस दुनिया को त्याग कर चले गए, तब पुरुषोत्तम दास टंडन ने भी अपने पद का त्याग कर दिया और ये नौकरी छोड़ दी। और फिर राजर्षि लोक सेवा मंडल के अध्यक्ष के रूप में फिर से इलाहाबाद आ गए। इलाहाबाद में उन्होंने गांधी जी के नमक सत्याग्रह आंदोलन के सहयोग में नमक कानून तोड़ा, जिसके फलस्वरूप वे अंग्रेज शासन द्वारा पुनः जेल भेज दिए गए। 1935 में गांधी जी ने गांधी इरविन समझौते के तहत आंदोलन वापस ले लिया और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जेल से छूट गए।
1: इस दफे पुरुषोत्तम दास टंडन ने किसानों को संगठित करना शुरू किया और उनकी कोशिशों से इलाहाबाद में एक बहुत बड़ा किसान सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता श्री वल्लभ भाई पटेल ने की।
0: उत्तर प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने उन्हें बतौर स्पीकर चुना, लेकिन 1940 में उन्होंने इस पद को भी त्याग दिया। कांग्रेस ने देशव्यापी भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया और इसमें राजर्षि की सक्रियता को देखकर अंग्रेज सरकार ने उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया और 1945 तक वे जेल में ही रहे।
1: कांग्रेस के जो कार्यकर्ता जेलों में बंद थे, उन्हें कांग्रेस ने आर्थिक सहायता भी पहुंचाई, लेकिन राजर्षि की पत्नी ने ये सहायता लेने से साफ इनकार कर दिया।
0: फिर कांग्रेस की सरकार बनी और 1945 में पुरुषोत्तम दास टंडन जेल से छूट कर आए और पुनः चुनाव जीत कर उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष बने। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन राजर्षि विभाजन के विरुद्ध थे। जब सभी लोग आजादी का जश्न मना रहे थे, तब राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन एकांत में बैठकर आंसू बहा रहे थे, क्योंकि वो ये विभाजन कभी नहीं चाहते थे।
2: इस

0: 1950 में भारत के संविधान निर्माण के लिए गठित समिति में एक सदस्य राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन भी थे। उन्हीं के कारण हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। इसके बाद 1952 में वो लोकसभा के अध्यक्ष भी चुने गए और 1955 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। 1961 में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया।
1: अंततः एक निरासक्त कर्मयोगी ने 1 जुलाई 1932 में बीमारी के चलते अपनी अंतिम सांस ली। वे एक सिद्ध के आशीर्वाद स्वरूप इस धरती पर जन्मे थे और एक सिद्ध के रूप में ही दूसरों के लिए सोचते करते चिर निद्रा में लीन हुए। एक सिद्ध योगी के रूप में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन इतिहास में भी अपना नाम सिद्ध पुरुष के रूप में दर्ज करा गए।
0: उन्होंने अपने जीवन में जितने काम किए दूसरों के लिए ही किए। दूसरों की खुशियों, दूसरों के सुख से ही स्वयं सुख की अनुभूति पाने वाले उस कर्मवीर को इतिहास कभी नहीं भुला पाएगा। सच्चे शब्दों में सदा उन्हें राजर्षि के रूप में याद किया जाएगा। क्रांति नायक राजर्षि।

आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं गायन वादन लोकगीत गजलें और बहुत कुछ। आज आप सुनेंगे डॉक्टर ऋषि मिश्र का गायन।
1: मुखड़ा देखिएगा,

उसके बोल हैं, गगन सघन घेरी आए, पड़त गूंज छहरी छहरी, नव पल्लव नव कुसुम, सब नए पत्ते नए फूल के हरी तज नित मन लुभाए, प्रभु के मन को वो लुभा रहा है।

दादुर मोर पपीहा बोले, जब बारिश होता है तो मोर पपीहा सब बोलते हैं, कोयल बन कू के कूके। इतना सुंदर वातावरण है, लेकिन उस खूबसूरत वातावरण को देखकर बिरहन का मन हूक हूक हो रहा है। बड़े पीड़ा में है वो, क्योंकि उसका पति या उसका प्रेमी उसके साथ नहीं है।

और ये देखकर जो इसके रचयिता हैं मेरे गुरु जी पंडित गणेश प्रसाद मिश्र जी, उनका तन जल रहा है ये देखकर, ऐसा देश कहाँ भगवान खुश थे और वो इतना पीड़ा में है ये देखकर।

स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: अभी तक आपने बालक नरेंद्रनाथ का बालपन, उनका नटखट स्वभाव, चंचल परंतु भावुक हृदय और प्रखर बुद्धिमत्ता के बारे में जाना। उनकी स्वाभाविक नेतृत्व कला, उपस्थित बुद्धि, निर्भीकता तथा तर्कसंगत विचार के सभी कायल थे। उनका मन सैकड़ों सुंदर कल्पनाओं से पूर्ण था। हृदय स्नेह सिक्त, बुद्धि कुशाग्र, साहस अमित, अचिंतनीय उद्भावनी शक्ति, कार्यक्षमता असीम और उत्साह अदम्य था। और सबसे बढ़कर थी उनकी ईश्वर के प्रति उन्मुखता। जन्म से ही थे वे ध्यान सिद्ध। पूजा प्रार्थना आत्मानुसंधान में बचपन से ही उनकी रुचि और अधिकार थे। इस अनन्य असाधारण महापुरुष के जीवन का अनुध्यान करने से हम लोग देखेंगे कि ये सारी बातें अतिरंजित नहीं बल्कि सत्य की तुलना में बहुत कम हैं।
1: उम्र के छठे वर्ष में प्रवेश करते ही बालक नरेंद्र का विद्याभ्यास प्रारंभ हुआ। पाठशाला जाने के पहले दत्तवंश के कुल पुरोहित ने आकर नियमानुसार पूजा अर्चना कर नरेंद्र को पहला पाठ पढ़ाया। सरकंडे की कलम को दूध में डुबोकर स्लेट पर बंगला भाषा का पहला अक्षर अ लिखवाया और कहा,
2: कहो बेटा आ। आ। और ये है आ।
3: आ।
1: हो गया विद्यारंभ। दूसरे दिन से नरेंद्र धोती पहनकर सरकंडे की कलम और रस्सी बंधी दवात लेकर पाठशाला जाने लगे, पर ज्यादा दिन जाना नहीं हुआ।
0: माता पिता ने गौर किया कि नरेंद्र पाठशाला के साथियों से गलत भाषा सीख रहा है। उसके तौर तरीके भी बदलने लगे। स्कूल में हर सामाजिक स्तर के बच्चे पढ़ने आते हैं, उनकी बातचीत बोलचाल भी सब नए ढंग के होते हैं। सो माता पिता ने उन्हें और इस प्रकार के विद्यालय में रखना उचित नहीं समझा। घर पर ही एक कमरे में छोटी मोटी पाठशाला खोलकर वहां गुरुजी के हाथों अपने पुत्र को समर्पित कर दिया। इस नई पाठशाला में कई रिश्तेदारों के बच्चे भी पढ़ने आने लगे, इसलिए नरेंद्र को दोस्तों की कमी नहीं हुई। पर पाठशाला में पढ़ने के बावजूद माँ के निकट नरेंद्र जो ज्ञान प्राप्त कर रहे थे वो बंद नहीं हुआ।
4: बेटा, तुम गुरुजी से बंगला तो सीख ही रहे हो, पर आज से मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना भी सिखाऊंगी।
3: क्यों माँ?
4: भाषा सीखना तो अच्छी बात है, अंग्रेजी राजभाषा है, उसे सीखना भी जरूरी है। फिर दूसरे प्रांत के लोगों से बातचीत करने में ये भाषा काम आएंगी।
3: ये कौन सी किताब है माँ?
4: ये प्यारी चरण सरकार का लिखा अंग्रेजी का फर्स्ट बुक है।
1: नरेंद्रनाथ के पढ़ने का एक अपना ही ढंग था। अध्यापक महोदय बगल में बैठकर पाठ पढ़ जाते और नरेंद्र आंखें मूंद कर लेटे लेटे उसे सुनते और इसी तरह सुन सुनकर उन्हें पाठ याद हो जाता।
0: उन दिनों उनके एक बुजुर्ग रिश्तेदार नृसिंह दत्त अपने पुत्र रामचंद्र दत्त के साथ नरेंद्रनाथ के घर में रहते थे। रात में नरेंद्र नृसिंह दत्त के साथ ही सोया करते थे। वृद्ध दत्त महोदय को संस्कृत का अच्छा ज्ञान था और उनकी धारणा थी कि कठिन विषयों को बचपन में सिखाने से बच्चे उन्हें आसानी से याद कर लेते हैं। सो वे रोज रात को नरेंद्र से बातें किया करते थे और उन्हें उनकी वंशावली, संस्कृत के श्लोक तथा स्रोत और संस्कृत व्याकरण के सूत्रों को याद करवाते थे। इस तरह नरेंद्र को बचपन में ही संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा का ज्ञान हो गया था। वे टूटी फूटी अंग्रेजी और संस्कृत भी बोलने लगे थे और बांग्ला तो उनकी मातृभाषा थी ही।
1: सन 1871 में जब वे 8 वर्ष के थे, उन्हें ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा स्थापित मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में भर्ती करा दिया गया। विद्यालय के शिक्षक गण एवं एक एक करके सभी उनकी बुद्धिमत्ता से उनकी ओर आकृष्ट हुए। पर एक दिन कठिन समस्या उठ खड़ी हुई। नरेंद्र ने अचानक अंग्रेजी भाषा सीखने से मना कर दिया। सभी लोगों ने बहुत समझाया कि आजकल अंग्रेजी सीखना आवश्यक है, नहीं सीखने से काम नहीं चलता। यहां तक कि वृद्ध नरसिंह दत्त महाशय ने भी समझाया, पर नरेंद्र की प्रतिज्ञा नहीं टली। इस तरह कुछ दिन चलता रहा। अंततः उन्होंने दत्त महाशय की बात मान ली और नए उत्साह से अंग्रेजी भाषा सीखने लगे। इतिहास और संस्कृत भी उनका प्रिय विषय रहा, पर गणित के प्रति वे विरक्त थे।
4: उनके पिता ने इसे सहज रूप से लिया और कहने लगे,
2: ठीक है, अगर बिले को गणित में रुचि नहीं तो ना सही, ये तो बनियों के दुकानों में काम आने वाला विषय है। बिले क्या पंसारी की दुकान खोलकर दाल चावल बेचेगा?
0: खेलकूद के प्रति नरेंद्र को बचपन से ही स्वाभाविक प्रेम था। उन्हें बहुत जल्दी पाठ याद हो जाता था और वे साथियों के साथ खेलने में मतवाले हो जाते। जलपान का पैसा जमा करके कंचा, बैट बॉल आदि खरीदते। क्रिकेट के खेल में वे दक्ष थे। परीक्षा निकट आने पर वे थोड़े ही दिनों की पढ़ाई में पास हो जाते। सभी खेलों में वे अगुआ थे। कभी कभी विद्यालय का कक्ष ही खेल का मैदान बन जाता। बच्चों में झगड़ा हो जाने पर वे ही मध्यस्थता करते। दो दलों में मारपीट हो जाती तो बीच में पड़कर वे ही दोनों दलों को अलग कर देते। ऐसा करते वक्त उन्हें भी एक दो घूंसे पड़ जाते, पर वे खुद भी मुक्केबाजी में प्रशिक्षित थे, इसलिए अपना बचाव कर लेते थे। स्वयं वे मारपीट बिल्कुल पसंद नहीं करते थे।
4: बहुत जल्दी पाठ याद करके वे क्लास में ही दोस्तों से गप्पे लड़ाने लगते थे। शिक्षक के क्लास में आकर पढ़ाना शुरू कर देने के बाद भी वे कहानी सुनाने में ही मशगूल रहते। रामायण महाभारत के कोई मजेदार प्रसंग छेड़ देते और बाकी दोस्त पाठ भूलकर उन्हें ही सुनते रहते। एक बार फुसफुसाहट से चिढ़कर एक शिक्षक छात्रों से पाठ पूछने लगे। कोई जवाब नहीं दे पाया, सभी चुप रहे, परंतु नरेंद्र का मन दो तरफा था। कहानी सुनाते सुनाते भी वे शिक्षक की बात सुन लेते थे, इसीलिए शिक्षक ने जब नरेंद्र से पाठ पूछा तो उन्होंने उसका जवाब दे दिया। शिक्षक ने पूछा, कौन बता रहा था? सबने नरेंद्र की ओर उंगली उठाई, पर शिक्षक ने विश्वास नहीं किया और नरेंद्र को छोड़ सबको बेंच पर खड़ा कर दिया। नरेंद्र भी खड़ा हो गया।
5: बेटा, तुम्हें खड़ा होना नहीं पड़ेगा, बैठ जाओ।
3: नहीं, मुझे भी खड़ा होना होगा, क्योंकि मैं ही तो बात कर रहा था।
0: एक रास्ता उन्हें भाती नहीं थी। बालक नरेंद्र पढ़ाई के साथ साथ नित नए खेल या मनोरंजन का साधन ढूंढते रहते। उन्होंने एक नाटक दल का गठन किया और वे पूजा घर के सामने के बरामदे में घर में नाटक खेला करते। पर एक चाचा ने आपत्ति की तो उन्होंने आंगन के एक किनारे व्यायाम का अखाड़ा बना लिया। मित्रों के साथ वहां वे नियमित व्यायाम करते। एक दिन एक चचेरे भाई का व्यायाम करते समय गिरकर हाथ टूट गया। चाचा ने नाराज होकर व्यायाम का सारा सामान तोड़ दिया। दुखी होकर नरेंद्र ने पड़ोस के नवगोपाल बाबू के जिम्नास्टिक के अखाड़े में नाम लिखाया। वहां उन्होंने लाठी भांजने, तलवार चलाने, नाव खेने, तैरने, कुश्ती तथा अन्य व्यायामों में दक्षता प्राप्त की। एक बार मुक्केबाजी में प्रथम पुरस्कार स्वरूप उन्हें एक चांदी की तितली मिली थी। लाठी भांजने में बालक नरेंद्र को बड़ा मजा आता था। अखाड़े में और अखाड़े के बाहर कुछ मुस्लिम उस्तादों से उन्होंने इस विद्या में महारत हासिल की थी।
4: जब उनकी उम्र महज 10 साल की थी, स्कूल में खेल प्रतियोगिता चल रही थी। नरेंद्र ने लाठी भांजने वालों को ललकार कर कहा,
3: मेरे साथ कोई खेलने को तैयार है? कोई भी चलेगा।
4: सबसे बलवान और अधिक उम्र का एक खिलाड़ी आगे आकर बोला,
6: तू ललकार रहा है, तेरी उम्र ही क्या है?
3: अरे, उम्र से क्या होता है, साहस हो तो आगे आओ।
6: अरे सुनो, इस बच्चे की बात तो सुनो। ला रे, एक लाठी तो दे, मैं भी इसकी छुट्टी कर देता हूँ।
7: नरेंद्र क्या पागल हो गया है, इस पहलवान से तू क्या लड़ेगा, हार जाएगा रे।
3: पहले से ही हार मान लूं, देखूं तो आजमा कर।
6: शाबाश नरेंद्र, क्या पैतरा कसा है। अरे देखो तो, ये छोटा सा लाडला, अरे बराबरी से लड़ा जा रहा है, पर हार तो निश्चित है।
0: नरेंद्र ने पैतरा बदलते बदलते अचानक कुशलता पूर्वक हा की आवाज करते हुए प्रतिद्वंदी पर एक ऐसा प्रचंड आघात किया कि उसकी लाठी दो टुकड़े होकर जमीन पर गिर गई।
3: ये लो, संभालो।
6: अरे वाह नरेंद्र, वाह, क्या मारा है।
2: अच्छी शिक्षा पाई तूने नरेंद्र, तेरी शिक्षा सार्थक हुई।
1: वे अपने मोहल्ले के सबसे प्रिय पात्र थे। वे उन लोगों को मामा, छोटे चाचा, फूफा, मौसी, माँ, दादा, दादी, दीदी, भाई या बहन कहकर पुकारते थे। सबसे बुरे वक्त में वे ही सबसे पहले पहुंचकर उनकी मदद किया करते थे। उनके हास परिहास से बुजुर्ग भी बिना हंसे नहीं रह पाते थे। सभी के घरों में वे निसंकोच आते जाते थे। पिता ने उन्हें एक छोटा सा घोड़ा खरीद दिया था। घुड़सवारी में दक्ष हो जाने पर रोज शाम घोड़े पर चढ़कर घूमने जाना उनका शौक था।
0: सभी दोस्त नरेंद्र को बहुत चाहते थे, प्यार करते थे। वे भी सभी से इतना घुल मिलकर बातें करते थे कि सभी बच्चे समझते थे कि नरेंद्र उसे ही सबसे ज्यादा चाहता है।
1: एक बार एक पड़ोसी बुजुर्ग ने नरेंद्र से कहा,
8: अरे नरेंद्र, हमेशा मैं तुम्हें घूमते घामते या खेलते ही देखती हूँ। कभी पढ़ता लिखता भी है तू?
3: ताई जी, मैं दोनों ही काम करता हूँ।
0: बात सही निकली। परीक्षा में नरेंद्र ने सभी प्रश्नों का जवाब ठीक दिया। कविता, इतिहास, भूगोल, अंक गणित, भाषा सभी में अव्वल नंबर मिले। परीक्षक ने खुश होकर पूछा,
5: नरेंद्र, सुना है तुम्हारे पिताजी आजकल लाहौर गए हैं, तो तुम्हारी देखभाल कौन करता है?
3: जी हाँ, पिताजी लाहौर में हैं, पर माँ तो यही है, और वो ही मुझे क्या करना होगा वो समझा देती हैं, और पढ़ाई तो मैं स्वयं करता हूँ।
5: बहुत अच्छा बेटा, ऐसा ही करते रहना। भविष्य में तुम जरूर बहुत बड़े आदमी बनोगे।

0: सन्यास के प्रति नरेंद्र को बचपन से ही अनुराग था। वे हमेशा सोचते रहते कि मौका मिलते ही वे सन्यासी बन जाएंगे। अक्सर ये बातें वे स्कूल के दोस्तों से कहते थे।
1: तुम लोग देख लेना, बड़ा होकर मैं सन्यासी बनूंगा।
2: क्यों?
1: ये देखो ना, मेरे हाथ में सन्यासी बनने की रेखा मौजूद है।
2: तुझे कैसे पता ये कौन सी रेखा है?
1: मुझे एक साधु ने कहा है।
0: फिर कल्पना के सहारे वे कहते जाते सन्यासी गण कैसे हिमालय जाकर तपस्या करते हैं।
1: हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी और उसमें गुफा के अंदर सन्यासी धुनी जलाकर ध्यान करते हैं।
2: वो क्या खाते हैं नरेन?
1: वो लोग तो फल फूल खाकर ही गुजारा करते हैं। पहाड़ों के जंगल में अनेक फलों के पेड़ हैं, वही तोड़ के खाते हैं। अगर मैं हिमालय में भी ना जाऊं, तो जंगल में झोपड़ी बना के रहूंगा और वही तपस्या करूंगा।
2: तुझे डर नहीं लगेगा? जंगली जानवर आ जाए तो क्या करेगा?
1: अरे जंगली जानवर कभी सन्यासियों पर हमला नहीं करते, और वैसे भी अगर तुम जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाओ, तो वे भी तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप निकल जाएंगे।
2: अच्छा?
1: हाँ, तभी तो कौपीनधारी जटाजूट वाले सन्यासीगण फल फूल खाकर भगवान के ध्यान में मग्न रहते हैं।

0: बढ़ने के साथ साथ उनके स्वभाव में एक परिवर्तन आया। वे पुस्तकों के अध्ययन, समाचार पत्रों के अध्ययन, सभा समितियों में उपस्थित रहने में रुचि दिखाते रहे। उनकी याददाश्त बहुत ही प्रखर थी, इसीलिए सभाओं से लौटकर साथियों को भाषण का सार तत्व कह देते थे और उन विषयों पर आलोचना भी करते थे।
1: उनका सौंदर्य बोध भी अपूर्व और मौलिक था। एक दिन एक दोस्त को गाते सुनकर उन्होंने कहा था,
2: सुर और ताल ही संगीत का एकमात्र अंग नहीं है। अगर कोई नकियाते स्वर में गाए तो क्या अच्छा लगेगा, आनंद मिलेगा। गीत के भाव को भीतर से फूट पड़ना चाहिए, शब्दों का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए और सुरताल तो ठीक होना ही है। जो संगीत श्रोता के मन में अनुरूप भाव जगा नहीं पाता, वो संगीत संगीत ही नहीं है।
0: सन 1877 में जब नरेंद्र तीसरी कक्षा में पढ़ते थे, उनके पिता विश्वनाथ काम के सिलसिले में उत्तरी और मध्य भारत में जाया करते थे। एक बार जब वे मध्य प्रदेश के रायपुर में थे तो कई महीनों के बाद उन्होंने अपने परिवार को रायपुर ही रहने के लिए बुला लिया। उन दिनों इलाहाबाद और जबलपुर होकर ट्रेन नागपुर तक जाती थी। नागपुर से रायपुर तक बैलगाड़ी में सफर करना पड़ता था, उसमें 15 दिनों से भी ज्यादा का समय लग जाता था।
1: ये सफर नरेंद्र के जीवन का यादगार सफर रहा। उनके साथ माता भुवनेश्वरी, बहने और दो छोटे भाई थे। एक दो नौकर भी साथ चल रहे थे। नरेंद्र बैलगाड़ी में बैठकर दोनों ओर के जंगल और पहाड़ों की शोभा देखकर मोहित हो गए।

0: पहाड़ी इलाकों गुफा में झरझर करते झरने, वहीं एक पहाड़ी गुफा में उन्होंने मधुमक्खियों का एक विशाल छत्ता देखा था। देखते देखते बालक नरेंद्र ध्यानमग्न हो गए। मधुमक्खियों का विशाल साम्राज्य, उनका संगठन, कार्यक्षमता और अनुशासन की बातें सोच सोच कर उन्होंने कई सीख ले ली थी। रायपुर में अच्छे विद्यालय नहीं थे, अतः नरेंद्र अपने पिता के पास ही पढ़ते थे। पिता उन्हें सिर्फ किताबी शिक्षा ही नहीं देते थे, पुत्र के बौद्धिक विकास के लिए विभिन्न विषयों का विवेचन भी किया करते थे। दोनों में बहस छिड़ जाती और पिता पुत्र से हार मानने को भी तैयार रहते। वहां कई विद्वानों का आना जाना होता था, कई विषयों पर आलोचनाएं होती थी। बालक नरेंद्र हमेशा वहां बैठे ध्यान पूर्वक सबकी बातें सुना करते थे और मौका पाकर अपना विचार भी व्यक्त करते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और वैचारिक क्षमता का परिचय पाकर बुजुर्ग चकित हो जाते और उसे बालक समझकर उसकी अवहेलना नहीं करते। एक दिन नरेंद्र ने ऐसी ही एक सभा में बंगला के विख्यात लेखकों के गद्य एवं कविताओं का उदाहरण देकर पिता के विद्वान दोस्तों को चकित कर दिया था।
1: बालक नरेंद्र बहुत ही आत्मसम्मानी थे। छोटा समझकर कोई उनकी उपेक्षा करे, ये वे सहन नहीं कर पाते थे। एक बार उनके पिता के एक मित्र के उनकी अनावश्यक अवमानना करने पर नरेंद्र ने सोचा, जब मेरे पिता मुझे तुच्छ मानकर अवहेलना नहीं करते तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने उस सज्जन से विनम्रता पूर्वक कहा,
2: आपकी भांति ऐसे अनेक लोग हैं जो सोचते हैं कि किसी की कम उम्र होने पर उसमें ज्ञान विचार नहीं होता, किंतु ये धारणा बिल्कुल गलत है।
1: उस सज्जन ने देखा कि नरेंद्र आहत सर्प की भांति क्रुद्ध हो गए हैं और उनसे बात करने को भी तैयार नहीं, तो वे अपनी गलती मानने को विवश हो गए।
0: रायपुर में रहते समय उन्हें परिवार का भरपूर साथ मिला। वे अक्सर पिता के साथ खाना पकाते थे और इस तरह पाक कला में निपुण हो गए। एक और विद्या उन्होंने रायपुर में सीखी थी, शतरंज खेलना। ये खेल उन्हें बहुत पसंद आया, बहुत ही ध्यान लगाकर खेलते थे। इस छोटे से बालक के द्वारा शतरंज की गहरी चालों को चलाते देख सभी अचंभित हो जाते थे। नरेंद्र ने कई दिग्गजों को हराया था।
1: बालक नरेंद्रनाथ को कभी कभी इंद्रियातीत अनुभूतियां हुआ करती थी। किसी वस्तु या व्यक्ति को पहली बार देखकर उन्हें लगता था कि उन्होंने पहले भी उन्हें देखा है, पर कुछ याद नहीं कर पाते थे। लोगों से विचार विमर्श करते वक्त उन्हें लगता था कि पहले भी तो ये बातें सुन चुके हैं, पर याद नहीं कर पाते थे कि कहां सुन चुके हैं। बाद में जब वे पुनर्जन्मवाद से परिचित हुए तो उन्हें लगा कि ये सब बातें शायद उनके पिछले जन्मों में घटी थी, जिनकी आंशिक स्मृति इस जन्म में उन्हें रह रहकर याद आती। पर बाद में उन्होंने समझा कि ऐसा सोचना ठीक नहीं है। उनका बालक मन इन्हीं विषयों में उलझता रहता था। उनके पिता ने भी उन्हें समझा बुझाकर उन उलझनों से उनके मन को मुक्त किया था।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

90.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, दिन के 12 बजने को हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है।

0: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद के कार्यक्रमों को। दिन के ठीक 12 बजे हैं, आप समय मिला सकते हैं। अब हमारी दोपहरकालीन सभा आरंभ होती है। आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, तराने आजादी।
1: MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के

के बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: नवी 98 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र प्रमिला, लेकर आई हूं आज का भारत भारती कार्यक्रम। श्रोताओ, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित किशोर और मीरा नवसालकर का उपशास्त्रीय गायन।

आज के भारत भारती कार्यक्रम में आपने पंडित किशोर और मीरा नवसालकर का उपशास्त्रीय गायन सुना। अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है। इजाजत दीजिए प्रमिला को आज का भारत भारती कार्यक्रम समाप्त करने की। नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आज़ाद हिंद का प्रसारण है। देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थीं, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञानवर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आज़ाद हिंद का प्रसारण है। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो मित्र भारती। श्रोताओं, वादे, कस्में और भरोसा, ये सब एक ही भाव के उपनाम हैं। किसी ने कहा भी है कि विष दे दो, विश्वासघात ना दो। प्यार, विश्वास और समर्पण करने वालों को जब धोखा मिलता है तो उनका जीवन बदल जाता है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी ऐसी लगती है ना जैसे हमारी ही कहानी हो। ये प्यार, विश्वास और वादे की ही एक कहानी है, सुहाग का शव। आइए सुनते हैं साथ मिलकर सुहाग का शव।

0: मध्य प्रदेश के एक पहाड़ी गांव में एक छोटे से घर की छत पर एक युवक संध्या की राह देख रहा था। सामने चंद्रमा के मलिन प्रकाश में ऊंची पर्वतमालाएं अनंत के स्वप्न की भांति गंभीर, रहस्यमयी, संगीतमय और मनोहर दिख रही थीं। कलाई पर घड़ी नहीं थी, यहाँ तक कि कोट की जेब में फाउंटेन पेन भी नहीं था। बड़े ही विचारों में मग्न था युवक, विचारों में मौन उसी पर्वतमाला की ओर देख रहा था कि अचानक बादल गरजने लगे, भयंकर ध्वनि होने लगी, नदी का मधुर गान भीषण नाद में बदल गया। ऐसा मालूम हो रहा था कि भयंकर नाद ने पर्वतों को भी हिला दिया है, मानो पर्वतों में कोई घोर संग्राम छिड़ गया है। ये रेलगाड़ी थी जो नदी पर बने हुए पुल से चली आ रही थी। तभी एक युवती कमरे से निकलकर छत पर आई और युवक से बोली, आज अभी से गाड़ी आ गई, इसे तो आज ही बैर निभाना था। युवक ने युवती का हाथ पकड़ लिया और प्यार से कहा, प्रिये, मेरा जी चाहता है कहीं ना जाऊं। मैंने निश्चय कर लिया है, मैंने तुम्हारी खातिर तो हामी भर ली, पर अब जाने की इच्छा नहीं। कैसे काटूंगा 3 साल? तब युवती ने कातर स्वर में कहा, 3 साल? 3 साल के वियोग के बाद फिर तो जीवन पर्यंत कोई बाधा नहीं है। एक बार जो निश्चय कर लिया उसे पूरा कर डालो, अनंत सुख की आशा में मैं सारे कष्ट झेल लूंगी। ये कहते हुए युवती जलपान लाने के बहाने फिर भीतर चली गई। आंसुओं का आवाग उसके काबू से बाहर हो गया। इन दोनों प्राणियों के वैवाहिक जीवन की ये पहली ही वर्षगांठ थी। युवक बंबई विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि लेकर नागपुर के एक कॉलेज में अध्यापक का कार्य कर रहे थे। नवीन युग की नई नई वैवाहिक और सामाजिक क्रांतियों ने उन्हें लेश मात्र भी विचलित नहीं किया था। पुरानी प्रथाओं से ऐसी प्रगाढ़ ममता कदाचित वृद्धजनों को भी कम होगी। प्रोफेसर हो जाने के बाद उनके माता पिता ने इस बालिका से उनका विवाह कर दिया था। प्रथा के अनुसार उस आंख मिचोली के खेल में उनके प्रेम का रत्न मिल गया। केवल छुट्टियों में यहाँ पहली गाड़ी से आता और आखिरी गाड़ी से चले जाता। 2-4 दिन मीठे स्वप्न के समान कट जाते। दोनों बालकों की भांति रो रोकर विदा होते थे। पर अभी साल भी नहीं गुजरा था कि वियोग ने अपना षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। केशव को विदेश जाकर शिक्षा पूरी करने के लिए एक वृत्ति मिल गई। मित्रों ने बधाई दी, किसके ऐसे भाग्य जिसे बिना मांगे स्वभाग्य निर्माण का अवसर मिला हो। केशव प्रसन्न नहीं था, दुविधा में था। माता पिता अन्य संबंधियों ने इस यात्रा का घोर विरोध किया। नगर में जितनी बधाइयां मिली उससे कहीं अधिक बाधाएं थीं। किंतु सुभद्रा की उच्च आकांक्षाओं की सीमा ना थी। वो केशव को इंद्रासन पर बैठा देखना चाहती थी। उसके सामने तब भी वही पति सेवा का आदर्श होता था। वो तब भी उसके सिर में तेल डालती, धोती छांटेगी, उसके पांव दबाएगी और पंखा झलेगी। उपासक की महत्वाकांक्षा उपास्य के ही प्रति होती है। वो उसके लिए सोने का मंदिर बनवाएगा, उसके सिंहासन को रत्नों से सजाएगा, स्वर्ग से पुष्प लाकर उसे भेंट करेगा, पर वो स्वयं वही उपासक रहेगा। जटा के स्थान पर मुकुट या कोपिन की जगह पीताम्बर की लालसा उसे कभी नहीं थी। सुभद्रा ने उस वक्त तक दम नहीं लिया जब तक केशव ने विलायत जाने का वादा न कर लिया। माता पिता ने उसे कलंकनी और न जाने क्या क्या कहा, पर अंत में सब सहमत हो गए। तैयारियां हो गई, स्टेशन पास था, गाड़ी देर तक खड़ी रहती थी। स्टेशन के पास गांव के निवासियों के लिए गाड़ी का आना शत्रु का धावा नहीं, मित्र का पदार्पण होता है। गाड़ी आ गई। सुभद्रा जलपान बनाकर पति को हाथ धुलाने आई। इस समय केशव की प्रेम कातर आपत्ति ने उसे एक क्षण के लिए तो विचलित कर दिया। हाँ, कौन जानता है 3 साल में क्या हो जाए। मन में एक आवेश उठा, कह दूं, मत जाओ, थोड़ा ही खाएंगे, मोटा ही पहनेंगे, रो रो के दिन तो ना काटेंगे। कभी केशव के आने में एक आधा महीना लग जाता था तो वो विकल हो जाती थी। यही जी चाहता था, उड़कर पास चली जाए। पर ये निर्दयी 3 साल कैसे कटेंगे। लेकिन उसने बड़ी कठोरता से इन निराशाजनक भावों को ठुकरा दिया। जी तो मेरा भी यही चाहता है, जब 3 साल का अनुमान करती हूं तो एक कल्प लगता है। लेकिन जब विलायत में तुम्हारे सम्मान और आदर का ध्यान करती हूं ना, तो देखो 3 साल 3 दिन लगते हैं। तुम तो जहाज पर पहुंचते ही मुझे भूल जाओगे। हम्म, नए नए दृश्य तुम्हारे मनोरंजन के लिए होंगे। यूरोप पहुंचकर विद्वानों के सत्संग में तुम्हें घर की याद भी नहीं आएगी। मुझे तो रोने के सिवा और कोई काम नहीं, बस यही स्मृतियां मेरे जीवन का आधार होंगी। लेकिन क्या करूं, जीवन की भोग लालसा तो नहीं मानती ना। फिर जिस वियोग का अंत जीवन की सारी विभूतियां अपने साथ लाएगा, वो वास्तव में तपस्या है। तपस्या के बिना तो वरदान नहीं मिलता ना। केशव को भी अब लगने लगा कि क्षणिक मोह के कारण इतना अच्छा अवसर उसके हाथ से चला जाएगा। खड़े होकर उसने प्यार से और दृढ़ता से कहा, देखो तुम रोना धोना नहीं है, नहीं तो देखो मेरा जी नहीं लगेगा। सुभद्रा ने उसका हाथ पकड़ लिया, हृदय से लगा लिया, सजल नेत्रों से देखते हुए बोली, देखो पत्र बराबर भेजते रहना, चूकना नहीं। सुभद्रा ने फिर आंखों में आंसू भरकर मुस्कुरा कर कहा, देख लेना, विलायती मिसों के जाल में फंसना नहीं। केशव फिर चारपाई पर बैठ गया। अगर तुम्हें यह संदेह है तो लो, मैं नहीं जाता। सुभद्रा ने भी गले में बाहें डाल दी, विश्वासपूर्ण दृष्टि से देखा और बोली, हो गई, मैं तो दिल लगी कर रही थी। अगर इंद्रलोक की अप्सरा भी आ जाए तो आंख उठाकर ना देखूं, ब्रह्मा ने ऐसी दूसरी सृष्टि की ही नहीं है। बीच में कोई छुट्टी मिले तो एक बार चले आता। नहीं प्रिय, बीच में छुट्टी नहीं मिलेगी, मगर जो मैंने सुना कि तुम रो रो कर घुली जा रही हो, तो मैं अवश्य आ जाऊंगा। दोनों गले मिल लिए विदा होने के लिए। बाहर संबंधियों और मित्रों का एक समूह खड़ा था। केशव ने बड़ों के चरण छुए और आगे बढ़ गई। केशव गाड़ी में बैठा और सुभद्रा भूमि पर पड़ी पड़ी सिसकियां भरने लगी। दिन गुजरने लगे उसी तरह जैसे बीमारी के दिन कटते हैं, दिन पहाड़ रात काली बला। पहले 5-6 महीने तो केशव के पत्र 15 दिन में बराबर मिलते रहे। सुभद्रा संतुष्ट थी, पत्र आते तो हैं, वो प्रसन्न हैं, कुशल हैं, यही काफी है। प्रतिकूल वो भी पत्र लिखती, कभी कभी जी बेचैन हो जाता, पछताने लगती, लेकिन वो फिर मना लेती अपने मन को। लेकिन 6 महीने में पत्रों में भी विलंब हो गया। कई महीने तक तो पत्र नहीं आया, फिर वो भी बंद हो गया। सुभद्रा के 4-6 पत्र पहुंच जाते तो एक पत्र आ जाता, वो भी यूं ही बेदिली से। काम की अधिकता, समय के अभाव का रोना, एक वाक्य भी ऐसा नहीं जो हृदय को शांति दे। अब तो प्रिय शब्द भी नहीं लिखा जाता। सुभद्रा अधीर हो उठी। उसने यूरोप यात्रा का निश्चय कर लिया। वो सारे कष्ट सहलेगी, सिर पर जो पड़ेगी सहलेगी, केशव को आंखों से तो देखती रहेगी। लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसका केशव अब उसका नहीं रहा, वो अब दूसरी की कामनी के प्रेम का भिखारी है। सुभद्रा कई दिनों तक इस प्रस्ताव को मन में रखे सेती रही। सुभद्रा ने सास ससुर से जिद की, सास ससुर दोनों स्टेशन तक आ गए पहुंचाने। जब गाड़ी ने सीटी दी तो सुभद्रा ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे जाने का समाचार वहां न लिखिएगा, नहीं तो उन्हें चिंता होगी और पढ़ने में उनका मन नहीं लगेगा। ससुर जी ने आश्वासन दे दिया और गाड़ी चल दी। लंदन के उस हिस्से में जहां इस समृद्धि के समय में भी दरिद्रता का राज्य है, ऊपर के एक छोटे से कमरे में सुभद्रा एक कुर्सी पर बैठी है। उसे यहाँ आए 1 महीना हो गया है। यात्रा के पहले उसके मन में जितनी शंकाएं थी सब शांत हो गई। मुंबई बंदरगाह में जहाज पर जगह पाने का प्रश्न बड़ी आसानी से हल हो गया। वो अकेली औरत नहीं थी जो यूरोप जा रही थी, पर यहाँ पहुंचकर सबका संग छूट गया। कोई किसी विद्यालय में, कोई अपने पति के पास जा चुकी थी। सुभद्रा इस मोहल्ले में एक कमरे में अकेले रह रही थी। जीविका का प्रश्न था जो कठिन नहीं था। जिन महिलाओं के साथ वो आई थी उनमें एक उच्च अधिकारियों की पत्नी थी, कई अच्छे अच्छे अंग्रेज घरानों से उनका परिचय था। सुभद्रा को 2 महिलाओं को भारतीय संगीत और हिंदी भाषा सिखाने का काम मिल गया। केशव का निवास स्थान वहां से निकट था, इसलिए सुभद्रा ने इस मोहल्ले को पसंद किया था। कल केशव उसे दिखाई दिया था। ओह, उन्हें बस से उतरते देखकर उसका चित कितना आतुर था। बस यही मन में आ रहा था कि दौड़कर उसके गले लिपट जाए और पूछे, क्यों जी, तुम यहां आते ही बदल गए? याद है तुमने चलते समय क्या कहा था? वो उनके इतने समीप है, चाहे तो रोज उन्हें देख सकती है। उनकी बातें सुन सकती है, उन्हें स्पर्श कर सकती है। अब वो उससे भागकर कहाँ जाएंगे? उनके पत्रों की अब उसे क्या चिंता? कुछ दिनों के बाद संभव है वो उनके होटल के नौकरों से जो चाहे पूछ सकती है। संध्या हो गई। धुएं में बिजली की लालटेने रोती आंखों की तरह ज्योतिहीन सी चमक रही थी। गली में स्त्री पुरुष सैर कर रहे थे। सुभद्रा सोचने लगी, इन लोगों को अमोद से कितना प्रेम है, मानो किसी की चिंता ही नहीं, सब संपन्न हैं। तभी उसने केशव को देखा। हाँ, केशव ही था। कुर्सी से उठकर बरामदे में चली गई। बहुत इच्छा हुई कि जाकर लिपट जाए, उसने अगर अपराध किया है तो क्षमा मांग लेगी। लेकिन केशव के साथ ये युवती कौन है? अरे, केशव ने तो हाथ पकड़ा है, दोनों मुस्कुरा मुस्कुराकर बातें कर रहे हैं। है कौन ये औरत? सुभद्रा ने ध्यान से देखा। युवती का रंग सांवला था, वो भारतीय बालिका थी, पहनावा भारतीय था। इससे ज्यादा सुभद्रा ने कुछ नहीं देखा, ना उसे दिखाई दिया। उसने तुरंत जूते पहने, द्वार बंद किया और एक क्षण में गली में पहुंच गई। लेकिन केशव अब नहीं दिखा। क्या मालूम कहाँ गया? बस उसके मन में यही था कि वो युवती कौन है, लेकिन अचानक वो अदृश्य हो गए। शायद दोनों किसी बस पर जा बैठे थे। अब वो गली समाप्त करके एक चौड़ी सड़क पर आ गई थी। दोनों तरफ बड़ी बड़ी जगमगाती दुकानें, जिनमें संसार की विभूतियां गर्व से फूली बैठी थीं। कदम कदम पर होटल और रेस्टोरेंट थे। सुभद्रा दोनों ओर नेत्रों से ताकती, पग पग पर भ्रांति के कारण मचलती कितनी दूर निकल गई उसे खुद खबर नहीं हुई। सुभद्रा अपने कमरे में लौट आई और वो व्यथित होकर लेट गई। मालूम नहीं उसे कब नींद आ गई। दूसरे दिन सुबह सुभद्रा अपने काम पर जाने को तैयार हो ही रही थी कि एक युवती रेशमी साड़ी पहने सामने आ गई। मुस्कुराकर बोली, क्षमा कीजिएगा, मैंने बहुत सवेरे आपको कष्ट दिया। कहीं जा रही हैं आप? सुभद्रा ने कुर्सी बढ़ाते हुए कहा, हाँ, एक काम से बाहर जा रही हूँ। कहिए, क्या सेवा कर सकती हूँ आपकी? और ये कहते हुए सुभद्रा ने युवती को सिर से पांव तक आलोचनात्मक दृष्टि से देखा। युवती ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, अगर मैं भूलती हूँ तो क्षमा कीजिएगा। मैंने सुना है कि आप कुछ कपड़े भी सीती हैं, जिसका प्रमाण ये है कि यहाँ सिविंग मशीन मौजूद है। सुभद्रा ने कहा, मैं दो लड़कियों को भाषा पढ़ाने जाती हूँ, शेष समय में कुछ सिलाई कर लेती हूँ। आप कपड़े लाई हैं? नहीं, अभी कपड़े नहीं लाई। ये कहते हुए उसने लज्जा से सिर झुका लिया। बात यह है कि मेरी शादी होने वाली है, मैं वस्त्र आभूषण सब हिंदुस्तानी रखना चाहती हूँ, विवाह भी वैदिक रीति से होगा। ऐसे कपड़े यहाँ आप ही तैयार कर सकती हैं, मैं ऐसे अवसर पर आपके जोड़े तैयार करके अपने को धन्य समझूंगी। शुभ तिथि कब है आपकी? युवती ने सकुचाते हुए कहा, वो तो कहते हैं इसी सप्ताह में, पर मैं उन्हें टालती हूँ। मैंने तो चाहा था कि भारत लौटने पर विवाह होगा, पर वो इतने उतावले हैं कि मानते ही नहीं। अभी तो मैंने यही कहकर टाल दिया है कि मेरे कपड़े सिल रहे हैं, तो मैं आपके जोड़े जल्द सिल दूंगी, सुभद्रा ने कहा। युवती ने भी हंसकर कहा, मैं चाहती थी कि आप महीनों लगा देंगी। वाह, मैं इस कार्य में विघ्न क्यों डालूं? इसी सप्ताह में आपके कपड़े दे दूंगी और उनसे इसका पुरस्कार लूंगी। युवती खिलखिलाकर हंस पड़ी। इसके लिए तो पुरस्कार वो देंगे, बड़ी खुशी से देंगे, तुम्हारे कृतज्ञ रहेंगे। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि विवाह के बंधन में पड़ूंगी ही नहीं, पर उन्होंने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ दी। अब मुझे मालूम हो रहा है कि प्रेम की बेड़ियां कितनी आनंदमय होती हैं। तुम तो अभी हाल ही में आई हो, तुम्हारे पति भी तो साथ होंगे? सुभद्रा ने बहाना किया और बोला, नहीं, वो इस समय जर्मनी में है, संगीत से उन्हें बहुत प्रेम है, संगीत का अध्ययन करने वो वहां गए हैं। अच्छा, तुम संगीत जानती हो? बहुत थोड़ा, सुभद्रा ने कहा। युवती ने कहा, केशव को संगीत से बड़ा प्रेम है। केशव का नाम सुनकर सुभद्रा को ऐसा लगा जैसे बिच्छू ने काट लिया हो, वो चौंक पड़ी। युवती ने कहा, आप चौंक कैसे गई? क्या केशव को जानती हैं? सुभद्रा ने बात बनाकर कहा, नहीं, मैंने ये नाम कभी नहीं सुना, वो यहाँ क्या करते हैं? उसने प्रश्न किया, क्योंकि अब ये जवाब उसकी जिंदगी का फैसला था। यहाँ विद्यालय में पढ़ते हैं, भारत सरकार ने उन्हें भेजा है, अभी साल भर भी तो आए नहीं हुआ, तुम देखकर प्रसन्न होगी, तेज और बुद्धि की मूर्ति समझ लो। यहाँ के अच्छे अच्छे प्रोफेसर उनका आदर करते हैं। ऐसा सुंदर भाषण तो मैंने किसी के मुंह से नहीं सुना। जीवन आदर्श है। मुझसे उन्हें क्यों प्रेम हो गया, मुझे इसका आश्चर्य है। मुझ में न रूप है न लावण्य, ये मेरा सौभाग्य है। अच्छा चलो, तो मैं शाम को कपड़े लेकर आऊंगी, ठीक? सुभद्रा ने मन में उठते हुए वेग को संभाल कर कहा। अच्छी बात है। युवती चली गई। सुभद्रा फूट फूट कर रोने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे मानो देह में रक्त नहीं है, प्राण निकल गए। अब उसका जीवन व्यर्थ है। उसके लिए अब जीवन में रोने के सिवा और क्या है? उसकी सारी ज्ञानेंद्रियां शिथिल हो गईं, मानो वो किसी ऊंचे वृक्ष से गिर पड़ी हो। हाँ, उसके प्रेम और भक्ति का पुरस्कार है ये। उसने कितना आग्रह करके केशव को यहाँ भेजा था, इसलिए कि यहाँ आते ही उसका वो सर्वनाश कर दे। पुरानी यादें आंखों के सामने तैरने लगी। सुभद्रा को इस ईर्ष्या और दुख के आवेश में अपने काम पर जाने की भी सुध नहीं रही। क्या हृदय के टुकड़े टुकड़े हुए बिना वृक्ष उखड़ जाएगा? सहसा उसे याद आ गया, हिंसात्मक संतोष से उसका उत्तेजित मुखमंडल और भी कठोर हो गया। केशव ने अपने पहले विवाह की बात इस युवती से गुप्त रखी होगी। सुभद्रा उसका भंडाफोड़ कर देगी और उसकी मंसूबों को धूल में मिला देगी। उसे अपने ऊपर क्रोध आया कि युवती का पता क्यों न पूछ लिया। उसे एक पत्र लिखकर केशव की स्वार्थपरता और कायरता की कलई खोल देगी। वो उस समय उसे सारा कच्चा चिट्ठा बयान कर देगी। सुभद्रा दिन भर युवती का इंतजार करती रही। केशव का पता उसे मालूम था, उस मकान और गली का नंबर तक याद था जहां से वो उसे पत्र लिखा करता था। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, युवती के आने में विलंब होने लगा। संध्या हो गई पर युवती नहीं आई। बत्तियां भी जल गईं, उसका कोई पता नहीं था। लेकिन अचानक उसे अपने कमरे के द्वार पर किसी के आने की आहट मिली। वो कूदकर बाहर निकल आई। युवती कपड़ों का एक पुलंदा लिए सामने खड़ी थी। सुभद्रा को देखते ही बोली, क्षमा करना, मुझे आने में देर हो गई। बात यह है कि केशव को किसी बड़े जरूरी काम से जर्मनी जाना है। वहां उन्हें अपनी थीसिस लिखने में बड़ी सहायता मिलेगी। बर्लिन के पुस्तकालयों को छानना पड़ेगा। मैंने भी स्वीकार कर लिया है। केशव की इच्छा है कि जर्मनी जाने से पहले हमारा विवाह हो जाए। कल संध्या के समय संस्कार हो जाएगा। अब ये कपड़े मुझे आप जर्मनी से लौटने पर दीजिएगा। विवाह के अवसर पर हम मामूली कपड़े पहन लेंगे। और क्या करती, देखो ना, इसके सिवा मेरे पास कोई उपाय भी नहीं है। केशव का जर्मनी जाना बहुत जरूरी है। सुभद्रा ने कपड़ों को मेज पर रख दिया और कहा, आपको धोखा दिया गया है। युवती ने घबरा के पूछा, धोखा? कैसा धोखा? मैं बिल्कुल नहीं समझती, क्या मतलब है आपका? सुभद्रा ने संकोच के आवरण को हटाने की चेष्टा की। केशव तुम्हें धोखा देकर तुमसे विवाह करना चाहता है। नहीं, केशव ऐसा आदमी नहीं है, वो किसी को धोखा नहीं दे सकते। केशव ने तुमसे अपने विषय में सब कुछ कह दिया है? हाँ, सब कुछ। कोई भी बात नहीं छिपाई? मेरा तो यही विचार है, उन्होंने एक बात भी नहीं छुपाई। तुम्हें मालूम है कि उनका विवाह हो चुका है? युवती की मुख ज्योति कुछ मलिन पड़ गई, उसकी गर्दन लज्जा से झुक गई और वो अटक कर बोली, हाँ, उन्होंने मुझसे ये बात कही थी। सुभद्रा अब परास्त हो गई। ये जानते हुए भी तुम केशव से विवाह करने को तैयार हो? युवती ने अभिमान से देखकर कहा, तुमने केशव को देखा है? नहीं, नहीं देखा। फिर तुम उन्हें कैसे जानती हो? मेरे एक मित्र ने मुझसे ये बात कही है, वो केशव को जानता है। सुभद्रा ने बात पलट दी। अगर तुम एक बार केशव को देख लेती, एक बार उनसे बातें कर लेती तो ये प्रश्न ना करती। एक नहीं, अगर वो 100 विवाह भी कर लें तो मैं इनकार ना करती। उन्हें देखकर मैं अपने को बिल्कुल भूल जाती हूँ। अगर उनसे विवाह ना करूँ तो फिर मुझे जीवन भर अविवाहित ही रहना पड़ेगा। दुनिया चाहे जितना हंसे, कितनी भी निंदा करे, मैं केशव को नहीं छोड़ सकती। हाँ, उनका विवाह हो चुका है, ये सत्य है, पर उस स्त्री से उनका मन कभी नहीं मिला। यथार्थ में उनका विवाह अभी नहीं हुआ है। तुम ही सोचो, केशव जैसे विद्वान, उदार चेता, मनस्वी पुरुष ऐसी बालिका के साथ कैसे प्रसन्न रह सकते हैं? तुम्हें मेरे साथ विवाह में चलना पड़ेगा। सुभद्रा का चेहरा तमतमा गया। केशव ने उसे इतने काले रंगों में रखा है, ये सोचकर उसका रक्त खौल गया। जी में आया कि एक क्षण में उसको दुत्कार दे और उसके सारे मंसूबे खराब कर दे। युवती ने तत्परता से कहा, घर पहुंचने पर उससे केवल यही कह देंगे कि हम और तुम अब स्त्री और पुरुष नहीं रह सकते। उसके भरण पोषण का वो उसकी इच्छा अनुसार प्रबंध कर देंगे। इसके सिवा वो और क्या कर सकते हैं? हिंदू नीति में तो पति पत्नी में विच्छेद नहीं हो सकता। वो तो अभी उसे पत्र लिखने वाले थे, पर मैंने ही रोक लिया। मुझे उस अभागिन पर दया आ गई है। मैं तो यहाँ तक तैयार हूँ कि अगर इसकी इच्छा हो तो वो भी हमारे साथ रहे। मैं उसे अपनी बहन समझूंगी, किंतु केशव इससे सहमत नहीं है। सुभद्रा ने व्यंग से कहा, रोटी कपड़ा देने को तैयार ही हैं, स्त्री को इसके सिवा और क्या चाहिए? युवती ने व्यंग की परवाह नहीं की और कहा, तो मुझे लौटने पर कपड़े तैयार मिलेंगे ना? हाँ मिल जाएंगे, कल शाम को ले लेना। नहीं, खेद है, अवकाश नहीं है। युवती ने कुछ और नहीं कहा और चली गई। सुभद्रा कितना ही चाह रही थी कि इस समस्या पर शांतचित होकर विचार करे, पर हृदय मानो ज्वाला सा धधक रहा था। केशव के लिए वो अपने प्राणों का कोई मूल्य नहीं समझती थी। वही केशव उसे पैरों से ठुकरा रहा है, ये आघात उसे सहन नहीं हुआ। केशव ने उसके सत्य का अपहरण किया है। प्रेम दर्शन केवल प्रवंचना की है। वो केवल अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए सुभद्रा के साथ प्रेम स्वांग भरता था। फिर उसका वध करना क्या सुभद्रा का कर्तव्य नहीं? उस अंतिम कल्पना से सुभद्रा को उत्तेजना मिल गई। वो भयंकर संकल्प को पूरा करने के लिए आतुर हो गई। ये वही अवस्था है जब स्त्री पुरुष के खून की प्यासी हो जाती है। उसने खूंटी पर लटकती पिस्तौल उतार ली और ध्यान से देखने लगी कि मानो उसने कभी ना देखा होगा। शाम हो गई। आर्य मंदिर में केशव और उसकी प्रेमिका एक दूसरे के सामने बैठे थे। उसने सोचा, एक गोली केशव को मारेगी और दूसरी अपनी छाती में, और अपना ये जीवन समाप्त कर देगी। आर्य मंदिर का आंगन था। वर वधु इष्ट मित्रों के साथ बैठे थे। विवाह संस्कार हो रहा था। उसी समय सुभद्रा पहुंच गई। बरामदे के एक खंभे की आड़ में ऐसी खड़ी थी कि केशव का मुंह उसके सामने था। उसकी आंखों में वो दृश्य खिंच गया जब आज से 3 साल पहले उसने इसी तरह केशव को मंडप में बैठे हुए आड़ से देखा था। तब उसका हृदय कितना खुश था, कितना अपार अनुराग था। असीम अभिलाषाएं थी, मानो जीवन प्रभात का उदय हो गया हो। जीवन मधुर संगीत की भांति सुखद था। अब तक केशव जैसा रूपवान, तेजस्वी, सौम्य, शीलवान पुरुष संसार में नहीं था, पर अब सुभद्रा को ऐसा लग रहा था जैसे कोई पराया युवक उसके सामने है। वो ईर्ष्या और ग्लानि से भर उठी। अब वो उसका नहीं है, उसे अब परवाह नहीं, उस पर किसका अधिकार होता है। विवाह संस्कार समाप्त हो गया। मित्रों ने बधाइयां दी, सहेलियों ने मंगल गान किया और लोग मेजों पर दावत के लिए बैठ गए। रात के 12 बज गए, पर सुभद्रा वहीं पाषाण मूर्ति की तरह खड़ी रही, मानो कोई विचित्र स्वप्न देख रही हो। उसकी तो बस्ती उजड़ गई। संगीत बंद हो गया, दीपक बुझ गए। जब लोग मंदिर से निकलने लगे तो वो भी निकल आई, पर उसे कोई मार्ग नहीं दिख रहा था। परिचित सड़कें वो भूल चुकी थी। तभी एक पुलिसमैन ने पुकारा, मैडम कहाँ जा रही हो? सुभद्रा एकदम से बोल उठी, कहीं नहीं। तुम्हारा स्थान कहाँ है?
1: मेरा स्थान?
0: हाँ तुम्हारा स्थान, मैं तुम्हें बड़ी देर से देख रहा हूँ, तुम भटक रही हो, कहाँ रहती हो? सुभद्रा को उस स्ट्रीट का नाम तक याद नहीं था। भूल गई, याद नहीं। और उसकी दृष्टि सामने के एक साइन बोर्ड पर उठ गई। ओह, यही तो उसका स्ट्रीट है। उसने सिर उठाकर इधर उधर देखा। सामने ही उसका डेरा था और इसी गली में अपने ही घर के सामने वो कितनी देर से चक्कर काट रही थी। अभी प्रातः काल ही था कि युवती सुभद्रा के कमरे में पहुंच गई। वो उसके कपड़े सी रही थी। उसका सारा तन कपड़ों में लगा था। कोई युवती इतनी एकाग्रचित होकर अपना श्रृंगार भी नहीं करती होगी। न जाने उससे कैसा पुरस्कार चाहती थी, उसे युवती के आने की खबर ही नहीं हुई। युवती ने पूछा, मंदिर नहीं आई आप? सुभद्रा ने सिर उठाकर देखा। ऐसा जान पड़ा किसी कवि की कोमल कल्पना मूर्तिमयी हो गई हो। सुभद्रा दौड़कर उसके गले लिपट गई, जैसे उसकी कोई छोटी बहन आ गई हो। मैंने तुम्हें नहीं देखा, मैं अलग थी। तुमने केशव को देखा? खुश होकर युवती ने कहा, हाँ देखा। धीरे से क्यों बोली, मैंने कुछ झूठ कहा? सुभद्रा ने सहृदयता से मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हारी आंखों से नहीं अपनी आंखों से देखा, मुझे तो वो योग्य नहीं जचे, तुम्हें ठग लिया। युवती खिलखिलाकर हंस पड़ी, वो मैं समझती हूँ मैंने उन्हें ठग लिया। सुभद्रा ने गंभीर होकर कहा, एक बार वस्त्र आभूषणों से सचकर अपनी छवि आईने में देखो तो मालूम हो। और सुभद्रा ने अपने सारे गहने उसे दे दिए। युवती चली गई। सुभद्रा अपनी खिड़की से उसे जाते हुए देख रही थी। मुश्किल से एक घंटा गुजरा कि युवती फिर लौट आई। सुभद्रा क्षमा करना, मैं तुम्हारा समय खराब कर रही हूँ, केशव बाहर खड़े हैं, बुला लूँ? एक क्षण, केवल एक क्षण के लिए सुभद्रा घबरा गई। उसने जल्दी से उठकर मेज पर पड़ी सारी चीजें हटा दी। उदासीन और मुस्कुराकर बोली, उन्हें तुमने क्यों कष्ट दिया, जाओ बुला लो। एक मिनट में केशव ने कमरे में कदम रखा और चौंक कर पीछे हट गया, मानो उसका पांव जल गया हो। मुंह से चीख निकल गई, लेकिन सुभद्रा गंभीर, शांत, निश्चल

बीच में कहा, इनके पति जर्मनी में हैं। केशव ने आंखें फाड़ कर देखा पर कुछ नहीं बोला। देखो ना, बेचारी संगीत के पाठ पढ़ाकर और कपड़े सीकर अपना निर्वाह करती हैं। केशव डूब रहा था, तिनके का सहारा पाकर उसकी हिम्मत बंध गई। वो बोल पड़ा, विवाह एक प्रकार का समझौता है, दोनों पक्षों को अधिकार है, जब चाहे उसे तोड़ दे। युवती ने हामी भर दी। सभ्य समाज में यह आंदोलन अब तो बड़े जोरों पर है। केशव सारे दिन बेचैन रहा, सुभद्रा उसकी आंखों में दिख रही थी। जैसे तैसे केशव ने दिन तो काट लिया, लेकिन जैसे ही रात के 10 बजे वो सुभद्रा से मिलने चला गया। युवती ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो केशव ने कह दिया कि एक प्रोफेसर से मिलना है। केशव घर से निकल आया, उसके मन में कई विचार थे। कहीं सुभद्रा मिलने से इनकार न कर दे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो इतनी अनुदार नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि वो अपने विषय में कुछ ना कहे। उसे शांत करने के लिए उसने एक कृपा की कल्पना कर डाली कि वो बीमार था, उर्मिला ने उसकी सेवा की और इसके बदले में वो उसका हो गया। सुभद्रा के घर के निकट पहुंचकर केशव का मन कातर हो गया, लेकिन उसने मन कड़ा किया और सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही सुभद्रा के द्वार पर पहुंचा, कमरे का द्वार बंद था। सहसा मालकिन आती हुई दिखाई दी। केशव ने पूछा, आप बता सकती हैं कि ये महिला कहाँ गई? मालकिन ने उसे सिर से पांव तक देखा और कहा, वो तो आज यहां से चली गई। केशव ने हकबका कर पूछा, चली गई कहाँ गई?

पैकेट लेकर उस तरह भागा मानो कोई चोर भाग रहा हो। इस पैकेट में क्या है ये जानने के लिए उसका हृदय व्याकुल हो उठा। उसे इतना विलंब असहनीय लग रहा था कि वो अपने स्थान पर जाकर उसे खोल कर देखे। पास में ही एक पार्क था, वहां जाकर उसने बिजली के प्रकाश में उस पैकेट को खोल लिया। उस समय उसके हाथ कांप रहे थे, हृदय इतने वेग से धड़क रहा था मानो किसी बंधु की बीमारी के समाचार के बाद तार मिला हो। पैकेट का खुलना था कि केशव की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसमें एक पीले रंग की साड़ी थी, एक छोटी सी सिंदूर की डिबिया और केशव का फोटो। इनके साथ ही एक लिफाफा था। केशव ने उसे खोल कर पढ़ा। लिखा था, बहन मैं जाती हूँ, ये मेरे सुहाग का शव है, उसे थेम्स नदी में विसर्जित कर देना। तुम ही लोगों के हाथों ये संस्कार भी हो जाए तो अच्छा है। तुम्हारी सुभद्रा। केशव हारा हुआ मर्माहत सा पत्र हाथ में लिए वहीं घास पर लेट गया और फूट फूट कर रोने लगा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी सुहाग का शव। सुना आपने कि जब किसी का वादा, किसी का भरोसा टूटता है तो इंसान अंदर तक हिल जाता है। सुनो कहानी समेटने की, अब दीजिए अपनी रेडियो मित्र भारती को अनुमति, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष, जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम
2: अतुल्य भारत।
1: श्रोताओं, मैं हूं आपकी दोस्त कंचन,
3: और मैं हूं आपका दोस्त प्रमोद शर्मा। श्रोताओं, घाटों की नगरी वाराणसी, मंदिरों का शहर वाराणसी, एक धार्मिक स्थल वाराणसी। वाराणसी है ही ऐसा, इसे जितना जाना जाए उतना कम है। इसलिए आज हम आपको परिचित करा रहे हैं वाराणसी से जुड़े हुए कुछ खास खास साहित्यकारों से।
1: श्रोताओं, साहित्य विद्या की ही एक शाखा है, और विद्या की देवी है सरस्वती।
3: बिल्कुल,
1: बिना सरस्वती की कृपा के साहित्य का सृजन हो ही नहीं सकता। ये कृपा व्यक्ति पर भी होती है और स्थान पर भी। यही कारण है कि कुछ स्थानों पर साहित्य की फसल खूब लहलहाती है।
3: ये आपने बिल्कुल ठीक कहा।
1: हाँ, क्योंकि वहाँ की मिट्टी में सरस्वती की कृपा का सिंचन कुछ अधिक ही होता है।
3: जी, वाराणसी के संदर्भ में बात करें तो यह बात साफ दिखाई देती है कि प्रयाग में सरस्वती आज भले ही अदृश्य हो गई हो, पर उसकी धारा गंगा में जरूर मिलती है और बहती हुई वाराणसी तक पहुंचती है, और शायद यहाँ आकर खाली भी हो जाती है।
1: श्रोताओं, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कबीरदास जी की। माँ सरस्वती की कृपा से वाराणसी में साहित्य की जो अक्षय खदान खुदी हुई है, उसके एक चमचमाते रत्न हैं कबीरदास जी। भारत में तो शायद ही कोई हो जिसने इनका नाम न सुना हो। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबको पसंद है वे। बिना लाग लपेट के अपनी बात कहने वाले ये निर्गुण संत वाराणसी से लगे लहरतारा नाम के स्थान पर एक जुलाहे के घर में पले बढ़े।
3: पर शायद ईश्वर से योग की प्यास पिछले जन्मों से ही लिखा कर लाए थे वे, सो बालपन में ही गुरु की खोज में निकल पड़े। किसी ने कहा, रामानंद से बढ़कर कोई गुरु नहीं। पर वे जल्दी किसी को शिष्य बनाते नहीं हैं। बस फिर क्या था, कबीर तो कबीर थे, और कबीर के नाम का अर्थ होता है महान।
1: पता चला कि बाबा रामानंद जी मुंह अंधेरे ही गंगा स्नान को आते हैं। फिर क्या था, कबीर जी चुपचाप घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। अंधेरे में बाबा को दिखा नहीं तो उनका पैर कबीर जी की छाती पर पड़ गया। बाबा चौंक उठे, ये क्या, ये तो कोई मानव तन है। एकदम से पीछे हटे और बोले, राम राम बोल बच्चा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी।
3: बस फिर क्या था, कबीर बोले, अपना शिष्य बना लीजिए बाबा। कहते हुए कबीर ने उनके पांव पकड़ लिए। श्रोताओं, आपने कबीर को थोड़ा भी पढ़ा हो तो आप जानते होंगे कि निर्गुण संत होने के बावजूद कबीर की रचनाओं में राम का नाम बार बार आया है। चलिए उनकी कुछ चौपाइयां हम आपके ध्यान में लाते हैं।
1: कबीरा कोता राम का, मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेहणी, जित खींचे तित जाऊं, दुल्हिन गावहु मंगल चार, तोरे घर आए राजा राम भरतार। और इसी तरह एक और चौपाई है, चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जो कछु चितवे राम बिन सोई काल की पाश।
3: श्रोताओं, कबीर व रामानंद के संबंध में एक मुहावरा सामने आता है, गुरु तो गुड़ ही रह गए और चेला शकर बन गया। एक घटना हम आपको बताते हैं।
1: एक बार की बात है, रामानंद जी मंदिर में राम जी की पूजा कर रहे हैं। बाहर कबीर और उनके दूसरे शिष्य बैठे हैं। रामानंद जी राम का श्रृंगार कर रहे हैं। जब मुकुट पहना दिए तो ध्यान आया कि माला पहनाना तो भूल ही गए। माला छोटी थी, मुकुट के ऊपर से पहनाई नहीं जा सकती थी, पर मुकुट उतारना निषिद्ध था। गुरु क्या करें, चिंतित हो उठे वे।
3: बस फिर क्या था, बाहर बैठे कबीर निर्गुण के ध्यान में डूबे हुए थे और आंखों से सारा तमाशा देख रहे थे। सहसा बोल उठे, गुरुजी माला का गांठ खोल करके पहना दीजिए राम जी को, और फिर दोबारा गांठ लगा दीजिए।
1: ये सुनते ही रामानंद जी सन्न रह गए। उन्होंने बाहर आते ही कबीर जी को गले से लगा लिया। आखिरकार ये सिद्ध हो चुका था कि निर्गुण और सगुण इनमें कोई भेद नहीं।
3: बिल्कुल,
1: तभी तो कुछ लोग कबीर जी की भक्ति को देखकर अचरज में पड़ जाते हैं।
3: हाँ, वे समझ ही नहीं पाते कि जो दिखाई नहीं देता, जिसका कोई शरीर नहीं है, उसके प्रति कबीर का इतना अनुराग कैसे? कैसे वे उनके वियोग के बावले हो जाते हैं? कैसे वे कहते हैं कि गोविंदा गुन गाइये? कैसे वे कहते हैं कि हरि जननी मैं बाकुल तेरा? जब हरि निर्गुण है तो उसके गुण कैसे गाए जा सकते हैं? जब उसका कोई शरीर ही नहीं है तो वे माता कैसे हो गया?
1: ये सब हृदयहीन बौद्धिक व्याख्याएं हैं। निर्गुण का मतलब गुणहीन नहीं बल्कि गुणातीत है। उसमें गुणों की कमी नहीं, परंतु उसे गुणों में बांधा भी नहीं जा सकता। अगर सगुण से कबीर जी का इतना ही बैर होता तो रामानंद जी जैसे एक सगुण उपासक को वे अपना गुरु कैसे बनाते?
3: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद पर आप सुन रहे हैं अतुल्य भारत, और आज हम चर्चा कर रहे हैं वाराणसी के कुछ खास साहित्यकारों की, और इसी श्रृंखला में अब हम चर्चा करते हैं तुलसीदास की। कबीरदास के संदर्भ में निर्गुण सगुण की जो चर्चा चली उसे पूर्ण विराम दिया तुलसीदास ने। उन्होंने साफ कह दिया कि निर्गुण सगुण नहीं कुछ भेदा।
1: तुलसीदास जी का रिश्ता वाराणसी से बहुत गहरा रहा है। उनका जन्म वैसे तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है, पर उनकी कर्मभूमि वाराणसी ही थी। जन्म का नाम था रामबोला और उनके गुरु थे नरहरिदास।
3: जी हाँ, नरहरिदास रामानंद के शिष्य परंपरा में थे। वहीं रामानंद जो कबीर के गुरु थे, अनाथ राम बोला को उन्होंने ही अपनाया और तुलसीदास नाम दिया, और उन्होंने अयोध्या में उन्हें आरंभिक शिक्षा भी दी। पर उच्च शिक्षा के लिए वे अपने इस होनहार शिष्य को वाराणसी भेजना चाहते थे।
1: श्रोताओं, इससे आप तो समझ ही सकते हैं कि वाराणसी उस समय शिक्षा का कितना बड़ा केंद्र था।
3: बिल्कुल।
1: हाँ, तो वाराणसी में नरहरिदास के एक मित्र थे, शेष सनातन। नरहरिदास ने तुलसीदास जी को आगे की पढ़ाई के लिए उन्हीं के पास भेज दिया। शेष सनातन महान विद्वान थे। उनके सानिध्य में तुलसीदास जी ने संस्कृत व्याकरण, ज्योतिष शास्त्र, चारों वेद, छह वेदांग और छह दर्शनों की शिक्षा पाई।
3: 15-16 सालों की पढ़ाई के बाद तुलसीदास अब पुराने तुलसीदास नहीं रहे। वे प्रकांड विद्वान बन चुके थे और उनका श्रेय जाता है भोलेनाथ की इस नगरी को। इसके पास वे वापस लौट आए, पर अपने जीवन के उत्तरार्ध में एक बार फिर वाराणसी लौटे।
1: इस बार की उपलब्धि विद्या नहीं बल्कि भक्ति थी। आज जहां पर संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है, उसी स्थान पर हनुमान जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए, और वो भी एक प्रेत की कृपा से। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी प्रतिदिन एक पेड़ पर जल चढ़ाया करते थे। इस पेड़ के भीतर एक प्रेत रहा करता था, तो प्रसन्न होकर उसने ही तुलसीदास जी को वो विधि बताई कि हनुमान जी के दर्शन कैसे होंगे।
3: लेकिन तुलसीदास की इच्छा तो राम से मिलने की थी, तो हनुमान जी ने उन्हें बताया कि राम जी के दर्शन तो उन्हें चित्रकूट में होंगे। यह एक लंबी कहानी है, अतः विषयांतर से बचने के लिए हम इसे यहीं छोड़ते हैं।
1: गोस्वामी तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि जी का अवतार भी माना जाता है। वही वाल्मीकि जी जिन्होंने महान ग्रंथ रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की थी। लेकिन लगता है कि बाद में जब संस्कृत आम जनता की भाषा नहीं रही, तब वाल्मीकि जी ने ही हिंदी भाषा में रामायण की रचना करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में फिर से जन्म लिया।
3: खैर, इस नए रामायण की रचना तुलसीदास ने रामचरितमानस के नाम से राम की जन्मभूमि अयोध्या में और अयोध्या की ही बोली अवधि में की। वैसे वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और चाहते तो संस्कृत में राम कथा लिख करके विद्वानों की वाहवाही लूट सकते थे, पर उनका उद्देश्य तो राम की कथा जनता को सुनाना था, सो उन्होंने जनता की ही भाषा चुनी।
1: रामचरितमानस के आरंभ और अंत की तिथियां भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा निर्धारित की गई थी। आपने सुना है कि तुलसीदास जी ज्योतिष शास्त्र में माहिर थे, तो इस ग्रंथ की रचना मंगलवार के दिन रामनवमी को शुरू की गई, ग्रह नक्षत्रों की उसी स्थिति में जिसमें राम जी का जन्म हुआ था।
3: बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इसका समापन विवाह पंचमी पर हुआ। यह वह तिथि थी जब राम व जानकी का विवाह हुआ था।
1: अब गोस्वामी तुलसीदास जी की मंजिल एक बार फिर वाराणसी थी। उन्हें अपनी रचना शिव पार्वती जी को सुनानी जो थी बाबा विश्वनाथ के मंदिर में। लेकिन वाराणसी के ब्राह्मण गोस्वामी तुलसीदास जी से नाराज थे, क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस की रचना संस्कृत में न करके एक लोक भाषा अवधि में की थी।
3: वहां के पंडितों का दावा था कि ईश्वर की कृपा सिर्फ संस्कृत भाषा में लिखे ग्रंथों को ही मिलती है। परीक्षा लेने के लिए उन्होंने वेद, शास्त्र, पुराण जैसे संस्कृत ग्रंथों के ढेर के नीचे अवधि में रचित रामचरितमानस को विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में रख करके बाहर से ताला लगा दिया।
1: और श्रोताओं, सुबह जब ताला खोलकर देखा गया तो पाया गया कि रामचरितमानस पर सत्यम शिवम सुंदरम अंकित था और उसके नीचे शिव जी के हस्ताक्षर थे। यहाँ तक कि बाहर जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने भी सत्यम शिवम सुंदरम का उद्घोष भी सुना। शिव जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना पर अपनी मोहर लगा दी थी।
3: खैर, ये तो कुछ किंवदंतियां हैं। अपने जीवन का अंतिम समय तुलसीदास ने वाराणसी में ही बिताया, पर दार्शनिक तथ्य इसमें यह है कि वे अपने जीवन का अंत वाराणसी में करना चाहते थे। उन्होंने ऐसा किया भी। असी घाट पर उन्होंने देह त्यागा। इस संबंध में भी एक रोचक कथा मिलती है।
1: जब गोस्वामी तुलसीदास जी वाराणसी के असी घाट पर निवास कर रहे थे तो जीवन की संध्या बेला में कलयुग ने उन्हें सताना शुरू कर दिया। इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी का स्मरण किया। तब हनुमान जी ने उनसे कहा कि वे अपनी अर्जी राम जी के दरबार में लगाएं। ये अर्जी ही उनकी विनय पत्रिका है। राम जी ने इस पर अपने हस्ताक्षर भी किए हैं।
3: श्रोताओं, गोस्वामी तुलसीदास की विनय पत्रिका वाराणसी के असी घाट पर ही रची गई थी। इसकी भाषा थी ब्रज भाषा और यह उनकी अंतिम कृति थी। उत्कृष्टता के विद्वान रामचरितमानस के बाद उन्होंने विनय पत्रिका को ही लिखा था। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।
1: श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अतुल्य भारत। और अब हम बात करते हैं आधुनिक काल के साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। वाराणसी से संबंधित आधुनिक कालीन साहित्यकारों की बात करें तो पहला नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र का आता है।
3: बिल्कुल,
1: उन्हें आधुनिक हिंदी का आदि पुरुष कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आधुनिक काल में खड़ी बोली हिंदी की नींव डालने वालों में वे प्रमुख थे।
3: श्रोताओं, आपको बता दें कि हिंदी की अनेक बोलियों में एक बोली का नाम है खड़ी बोली, जिसे कोरवी भी कहते हैं। कोरवी इसलिए क्योंकि इसका जन्म कुरुक्षेत्र के इलाके में हुआ। वही कुरुक्षेत्र जहां महाभारत का युद्ध हुआ, वही कुरुक्षेत्र जहां कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था।
1: तो अपभ्रंश भाषा से हिंदी भाषा का जब विकास हो रहा था तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इसके भिन्न भिन्न रूप विकसित हुए, जैसे अवध में अवधी, ब्रजभूमि में ब्रज, हमारे मालवा क्षेत्र में मालवी, कुरुक्षेत्र में कौरवी। श्रोताओं, ये लिस्ट काफी लंबी है जिसमें लगभग 19 बोलियां आती हैं, लेकिन इन 19 बोलियों में से साहित्य में ज्यादातर प्रयुक्त हुए अवध और ब्रज।
3: और वजह यह थी कि शुरुआती रचनाएं ज्यादातर भक्ति परक थी। राम के भक्तों ने अवधि व कृष्ण के भक्तों ने ब्रज का प्रयोग किया। आगे चलकर रीतिकाल में अवधि का जन्म भी ब्रज ने ही ले लिया, क्योंकि बिहारी धनानंद जैसे कवि श्रृंगार रचनाओं के लिए ब्रज ज्यादा उपयुक्त थी।
1: इस भाषा में राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन करने की पुरानी परिपाटी जो थी,
3: बिल्कुल,
1: जबकि अवधि में राम जानकी के अनुराग का वर्णन अत्यंत मर्यादा के साथ किया गया है। प्रसंगवश तुलसीदास जी की कविता यहाँ पर याद आती है।
3: कौन सी कविता?
1: राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाही, ताते सबे सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही।
3: वाह,
1: ये प्रसंग उस समय का है जब राम जानकी जी का विवाह हो रहा था। माता जानकी भगवान श्री राम को देखना चाहती हैं, पर देखें कैसे, लोकलाज और मर्यादा की दीवार जो सामने है। तो उन्होंने अपने कंगन में लगे नग में राम जी की छवि देखी,
3: लेकिन हाथ हिला नहीं सकती थी, क्योंकि यदि ऐसा किया तो राम की छवि हट जाएगी। पलकें भी नहीं झपका सकती थी, क्योंकि इतनी देर के लिए राम पलकों से ओझल हो जाएंगे। इसलिए वे अपना हाथ स्थिर कर लेती हैं और पलकें नहीं गिराती।
1: धन्य धन्य है गोस्वामी तुलसीदास जिन्होंने मर्यादा के साथ इतनी सुंदर श्रृंगारिक रचना की। श्रृंगार का मर्यादित रूप भी कितना सुंदर हो सकता है,
3: बिल्कुल,
1: ये आज के कलाकारों को इनसे सीखने की जरूरत है।
3: जी हाँ, खैर, जब बाहर तेंदु का अवतरण इस दुनिया में हुआ तो साहित्य के क्षेत्र में ब्रज भाषा का बोलबाला था, लेकिन भारतेंदु महसूस कर रहे थे कि आधुनिक ज्ञान विज्ञान के लिए यह भाषा उपयुक्त नहीं है, इसके लिए खड़ी बोली अधिक उपयुक्त है। सो उन्होंने विशेषकर गद्य की भाषा के रूप में खड़ी बोली को आगे बढ़ाया।
1: चूंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र एक साहित्यकार मात्र ही नहीं थे, बल्कि साहित्यकारों की पूरी मंडली रखते थे, इसलिए उनकी प्रेरणा से खड़ी बोली का व्यापक इस्तेमाल शुरू हो गया।
3: सन 1850 में जन्मे भारतेंदु बचपन से ही पैसे को पैसा नहीं समझते थे। खूब संपदा विरासत में मिली थी तो दीपक में तेल की जगह वे इत्र जलाया करते थे। पूछा जाता तो कहते कि इस धन ने मेरे पुरखों को जलाया है, अब मैं इसे जला रहा हूं। लेकिन उनका यही स्वभाव हिंदी साहित्य की फसल सींच गया।
1: उन्होंने अपना निजी पैसा खर्च करके साहित्यकारों को उसी तरह आश्रय दिया जिस तरह कभी राजे महाराजे किया करते थे। आज हिंदी में जितनी भी विधाएं हम देखते हैं उनमें से अधिकतर की नींव उन्होंने ही डाली। नाटक, निबंध, पत्रकारिता, कविता, कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। खास करके नाटकों के विकास के लिए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हमेशा याद रखा जाएगा।
3: जी हाँ, श्रोताओं, आप जानते हैं कि नाटक पढ़ने के लिए नहीं बल्कि खेलने के लिए लिखे जाते हैं, और इन्हें खेलने के लिए रंगमंच की भी जरूरत होती है। लेकिन भारतेंदु के समय में हिंदी में रंगमंच ना के बराबर थे, सो भारतेंदु ने ना केवल नाटक लिखे बल्कि उन्हें खेलने के लिए मंचों की भी स्थापना की। वे अच्छे अभिनेता व निर्देशक भी थे, सो वे अपने लिखे नाटकों में अभिनय भी करते थे और निर्देशन भी करते थे।
1: श्रोताओं, हिंदी पत्रकारिता की नींव भी भारतेंदु जी ने ही डाली थी। उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी जैसी हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन और संपादन किया। भारतेंदु जी को केवल एक साहित्यकार समझना उनके प्रति अन्याय होगा। हम तो कह सकते हैं कि वे पूरा एक युग थे, इसलिए हिंदी साहित्य में उनका काल भारतेंदु काल कहलाता है।
3: हाँ, एक साहित्यकार के होने के साथ साथ भारतेंदु एक राष्ट्रभक्त भी थे उन्हें अंग्रेजों के शोषण से बड़ी पीड़ा पहुंचती थी, जिसकी अभिव्यक्ति उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है, खास करके भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और नील दर्पण में तो उस काल का पूरा भारत ही देखा जा सकता है।
1: राष्ट्रभाषा की अवधारणा संभवतः सबसे पहले उन्होंने ही दी। अपनी भाषा को हेय मानकर विदेशी भाषा के पीछे भागने की प्रवृत्ति से उन्हें दुख पहुंचता था, इसलिए तो उन्होंने कहा कि निज भाषा उन्नति अहि, सब उन्नति को मूल। अर्थात जो समाज अपनी भाषा की उन्नति नहीं कर पाता, उसकी स्वयं की उन्नति भी नहीं हो पाती।
3: वाराणसी में स्थित काशी नगरी प्राचीरणी सभा आज हिंदी भाषा व साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी स्थापना की कहानी भी बड़ी ही रोचक है।
1: सन 1893 की बात है। वाराणसी के क्विंस कॉलेज में नवी कक्षा के 3 छात्र श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह देख रहे थे कि अंग्रेजी और फारसी जैसी भाषाओं का इस्तेमाल तो लोग बड़े फक्र के साथ करते हैं, परंतु हिंदी का इस्तेमाल करने में खुद को हेय समझते हैं।
3: हाँ, सो हिंदी को एक सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए उन्होंने इस संस्था की स्थापना अपने छात्रावास के बरामदे में बैठकर की। इसकी बैठक वाराणसी के घुड़साल में होती थी। इसकी खुद की इमारत तो बाद में जाकर के बनी है।
1: इस सभा ने हिंदी की जो सेवा की, उसकी गिनती भी करना मुश्किल है। उस समय उत्तर प्रदेश में सरकारी भाषा के रूप में अंग्रेजी और उर्दू का प्रचलन था, जबकि आम जनता की भाषा हिंदी थी। संयोग से मदन मोहन मालवीय भी तब तक इस सभा से जुड़ चुके थे, तो इसीलिए इन लोगों के प्रयत्नों से उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए उर्दू के साथ ही हिंदी का ज्ञान भी अनिवार्य कर दिया गया।
3: हिंदी की तितर बितर पांडुलिपियों को ढूंढ कर प्रकाशित करने का जो काम नागरी सभा ने किया, उसका मूल्यांकन करना भी संभव नहीं है हमारे लिए। इसके संग्रहालय में आज हिंदी भाषा की लगभग 15,000 हस्तलिखित पांडुलिपियां मौजूद हैं।
1: और आलम ये है कि अगर आप हिंदी विषय में शोध कर रहे हैं तो काशी नागरी प्रचारिणी सभा की लाइब्रेरी में जाए बिना आपका काम नहीं चलने वाला।
3: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। कार्यक्रम है अतुल्य भारत और आज हम चर्चा कर रहे हैं वाराणसी से जुड़े हुए कुछ महान साहित्यकारों के बारे में। और इसी कड़ी में अगला नाम है जयशंकर प्रसाद का। साल 1885 हिंदी के लिए एक दुखद साल था। मात्र 34 साल की उम्र में भारतेंदु दुनिया छोड़कर के चले गए, लेकिन इसके 5 साल बाद ही वाराणसी के ही सुगनी साहू के घर में मानो उन्होंने पुनर्जन्म ले लिया। इस बार उनका नाम था जयशंकर प्रसाद, लेकिन इस बार भगवान ने उन्हें एक साधारण घर में पैदा किया था। पिछले जन्म में तो उन्होंने बहुत पैसा उड़ाया था, शायद इसीलिए उन्हें इस बार एक गरीब घर में जन्म लेना पड़ा।
1: अभी 8वीं कक्षा में ही पढ़ रहे थे प्रसाद कि पिता चल बसे। अब दुकान भी संभालनी थी, पढ़ाई छूट गई, पर साहित्य की ललक मन में थी। घर में रहकर पढ़ना शुरू कर दिया और एक दिन खुद साहित्यकारों की अगली पंक्ति में पहुंच गए। आज हालत यह है कि 8वीं दर्जा पास प्रसाद की रचनाएं विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं और उनकी एक एक कविता पर लोग PhD कर रहे हैं।
3: बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर हिंदी नाटकों की बात करें तो पहला युग यदि भारतेंदु युग है तो दूसरा युग प्रसाद युग है।
1: बिल्कुल ठीक,
3: बात साफ है। भारतेंदु के ही समान प्रसाद भी युग पुरुष थे, खास करके नाटक व कविता के क्षेत्र में तो उनका कोई सानी नहीं था।
1: भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही तरह प्रसाद जी में भी राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी और उनकी ये राष्ट्रभक्ति ही उनकी रचनाओं में बखूबी देखने को मिलती है।
3: जिस जमाने में अंग्रेज भारत के पढ़े लिखे लोगों को यह घुट्टी पिला रहे थे कि भारत तो शुरू से ही दीनहीन, पिछड़ा व दरिद्र रहा है और ये अंग्रेज ही हैं जो इस देश की तरक्की कर रहे हैं। तो उस जमाने में प्रसाद ने अपने नाटकों के माध्यम से यह दिखाया कि नहीं, प्राचीन काल से ही भारत एक महान एवं ओजस्वी देश है।
1: उन्होंने पश्चिमी विद्वानों द्वारा परोसा गया ये इतिहास नहीं माना कि सिकंदर ने भारत को हराया था। अपने चंद्रगुप्त नाम के नाटक में उन्होंने ये सिद्ध भी कर दिया कि भारत विजय का सपना देखने वाला सिकंदर इसलिए भारत के किनारे से ही लौट गया क्योंकि वो भारत की शक्ति को जान गया था।
3: बिल्कुल ठीक। और इसी नाटक में प्रसाद ने वह प्रसिद्ध गीत भी लिखा है जो आजादी की लड़ाई के लिए भारतीय लोगों का उद्बोधन गीत बन गया था। उसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं।
1: हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बड़े चलो बड़े चलो। कहते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में इस गीत को गा देने से देशभक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती थी।
3: हाँ, अगर कविताओं की बात करें तो प्रसाद को हिंदी छायावाद काव्यधारा के संस्थापकों में से एक माना जाता है। कामायनी नाटक उनका महाकाव्य तो न केवल छायावाद का बल्कि आधुनिक हिंदी का भी महाकाव्य है। यह महाकाव्य जीवन दर्शन से भरपूर है। इसकी अनेक पंक्तियां जीवन के अंधेरे पलों में राह दिखाती हैं।
1: इनमें से कुछ पंक्तियां हम आपको सुनाते हैं।
3: जी।
1: प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। इन पंक्तियों के माध्यम से प्रसाद ने ये बताया कि विनाश से ही सृजन होता है। जब फूल बासी हो जाते हैं तो वे झड़ जाते हैं और फिर नए फूल एक बार फिर से निकलते हैं।
3: मैं रीति की प्रतिकृति लज्जा हूँ, मैं शालीनता सिखाती हूँ। लज्जा सर की इन पंक्तियों में महाकवि का संदेश है कि लज्जा नारियों में शालीनता उत्पन्न करती है और उन्हें अनेक परेशानियों से बचाती है।
1: इसी सर्ग में वो विश्व प्रसिद्ध काव्य पंक्ति भी है जिसे अपने निबंधों में लिखते हुए हम बड़े हुए हैं, जिसका उपयोग वक्ता सभा पर अपनी छाप छोड़ने के लिए करते हैं। तो लीजिए, आप पर भी अपनी छाप छोड़ने के लिए हम भी इसे आपको सुना देते हैं।
3: नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पद तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में।
1: एक जमाने में संस्कृत भाषा में लिखा गया था कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसके बाद प्रसाद जी ने ये पंक्तियां लिखकर समाज में स्त्रियों का महत्व बताया। अब कुछ बातें कामायनी के मूल संदेश की भी कर लेते हैं श्रोताओं।
3: बिल्कुल।
1: इस काव्य में महाकवि का संदेश है समरसता, संतुलन और समन्वय। मध्यम मार्ग की वकालत की गई है इसमें। अति से बचो, अति भोग से बचो, नहीं तो प्रकृति के कहर से बच नहीं पाओगे, ऐसा बताया गया है इसमें। आज जबकि हमारे कर्मों की प्रतिक्रिया प्रकृति बार बार कर रही है, तो इन संदेशों को ग्रहण करने की कुछ ज्यादा ही जरूरत है हमें।
3: श्रोताओं, अब हम क्षमा चाहते हैं आपसे। सोच तो हम यह रहे थे कि इस कार्यक्रम में वाराणसी के अधिक से अधिक साहित्यकारों के बारे में जानकारी आपको दे दें, लेकिन क्या करें, कबीर, तुलसी, भारतेंदु, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद जैसे युग पुरुषों पर चंद बातें करते करते हम भावनाओं में बह गए। अतः शेष बचे लोगों के लिए कुछ एक के बारे में कुछ खास बातें बताकर हम इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं।
1: श्रोताओं, एक जमाने में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला चंद्रकांता कार्यक्रम आपको याद होगा। ये कार्यक्रम चंद्रकांता नामक जिस उपन्यास पर आधारित था, उसके लेखक देवनंदन खत्री वाराणसी के ही निवासी थे और उन्हें हिंदी में मिस्ट्री नॉवेल्स का जन्मदाता कहा जाता है।
3: बिल्कुल ठीक कहा आपने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्या निवास मिश्र, राधा कृष्ण दास, मुंशी प्रेमचंद जैसे हिंदी साहित्यकारों ने ही वाराणसी शहर को इज्जत बख्शी है।
1: श्रोताओं, चलिए अब मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में भी कुछ चर्चा हम आपसे कर लेते हैं। हिंदी में मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है और हिंदी उपन्यास का पूरा एक काल ही प्रेमचंद काल कहलाता है। इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान। 1930 के दशक में लिखा गया यह उपन्यास भारत के गांवों की इतनी संपूर्ण तस्वीर खींचता है कि इसे ग्रामीण जीवन का महाकाव्य तक कहा गया है।
3: बिल्कुल ठीक कहा आपने। विश्व की लगभग सभी भाषाओं में इसका रूपांतरण हो चुका है। इसके रूसी रूपांतरण पर तो रशिया का सबसे बड़ा साहित्यकार पुरस्कार तक मिल चुका है। एक किसान होरी की कहानी है इसमें, जिसके जीवन काल की केवल एक ही महत्वाकांक्षा थी कि घर के आंगन में एक गाय हो।
1: उसकी ये महत्वाकांक्षा पूरी होती भी है और नहीं भी। वो कर्जदार हो जाता है, किसान से मजदूर हो जाता है और अंत में दम तोड़ देता है। भारत के किसान की बेबसी और लाचारी अगर आपको देखनी हो तो गोदान उपन्यास आप अवश्य पढ़ें। होरी जब मरता है तो ऐसा लगता है कि हमारे भीतर भी कुछ दरक गया।
3: श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे थे कार्यक्रम अतुल्य भारत। आज का विषय था वाराणसी से जुड़े हुए कुछ साहित्यकारों के बारे में चर्चा। इसका आलेख तैयार किया था श्रीमती पूनम जायसवाल ने और स्वर थे प्रमोद शर्मा
1: और कंचन राजानी के।
3: अब हमें आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार, नमस्कार।

0: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। नवे दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। मैं हूँ आपके साथ आपके रेडियो मित्र प्रमिला, लेकर आई हूँ आज का भारत भारती कार्यक्रम। श्रोताओ, आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सुगम संगीत।
1: उस आश्रम भजनावली में कुछ श्लोक हैं, उनमें से 4 चुनिंदा श्लोक वो लेकर उपस्थित हो रही हैं, और इन्हीं श्लोकों से शुभारंभ।

अर्थात हाथ से या पैर से, वाणी से या शरीर से, कान से या आंख से मैं जो भी अपराध करूं, वो कर्म से उत्पन्न हो या केवल मानसिक हो, अमुक करने से हो या अमुक न करने से हो, हे करुणा सागर, कल्याणकारी महादेव, उन सब के लिए तू मुझे क्षमा कर। मेरे हृदय और जीवन में तेरी ही जय जयकार हो।

हे ईश्वर, तू ही एक शरण लेने योग्य आश्रय का स्थान है, तू ही एक वर्णीय इच्छा करने लायक है, तू ही एक जगत का पालन करने वाला है और अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है, तू ही एक इस सृष्टि को पैदा करने वाला, पालने वाला और इसका संहार करने वाला है, और तू ही एक निश्चल और निर्विकल्प है।

गांधी जी का कहना था कि डर शरीर की बीमारी नहीं, ये आत्मा को मारता है, और प्रार्थना हमें निर्भय बनाती है। दरअसल हमारी आध्यात्मिक यात्रा साहस की यात्रा है। प्रस्तुत करने जा रहे हैं अभिषेक नागराज।

गांधी जी ने कहा था, मुझे यकीन है कि एक मनुष्य के आध्यात्मिक लाभ के साथ सारी दुनिया का लाभ होता है, और ठीक इसी तरह एक मनुष्य के अधः पतन के साथ उसी हद तक सारे संसार की अधोगति भी होती है। इसीलिए पराई पीर को समझने वाले करुणा से और प्रेम से भरे हुए मनुष्य को वैष्णव जन कहा गया। आइए सुनते हैं बापू का प्रिय भजन, प्रस्तुत कर रही हैं तापसी नागराज, रचना नरसी मेहता की।

जब हम गांधी जी के जीवन को देखते हैं तो पाते हैं कि उनका पूरा जीवन अपने अंतःकरण के प्रक्षालन का जीवन रहा। वो लगातार सत्य के साथ प्रयोग करते रहे। उनके विचार, वाणी और कर्म में हमेशा एक रूपता रही। जब शब्द आचरण से मंडित होता है तो वो मंत्र की शक्ति प्राप्त कर लेता है। मीराबाई की यही भक्ति रचना सुनते हैं। प्रस्तुत कर रही हैं तापसी नागराज।

जिस तरह सुबह और शाम का आना जाना है, ठीक उसी तरह जीवन में सुख और दुख का आना जाना भी है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख न दुख, न राग न विराग। सिर्फ उस विराट की एक झलक पा लेने का जो अनुभव है, वो ही ऐसा है जो मिटता नहीं। जीवन की नश्वरता की ये चेतना ही हमें उस परम सत्ता से जोड़ती है। संत कबीर ने भी कहा, पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। इसी तरह नजीर अकबर आबादी कहते हैं, है बहारे बाग दुनिया चंद रोज, देख लो इसका तमाशा चंद रोज। आइए सुनते हैं ये रचना, गा रहे हैं अभिषेक नागराज।

जिसे उस परमात्मा की झलक मिल गई, उसके लिए ये सारा संसार मिट्टी हो जाता है। ईश्वर की वीणा जिसके हृदय में बज उठी, उसके लिए सारी आवाजें शोर हो जाती हैं। सूफी परंपरा भी उसी विशुद्ध प्रेम की गुनगुनाहट है। निजामुद्दीन औलिया की रचना आइए सुनते हैं, गा रही हैं तापसी नागराज।

दक्षिण अफ्रीका से लौटते समय भेंट स्वरूप बहुत से गहने उन्हें दिए गए थे। बा स्त्री सुलभ स्वभाव की वजह से उन गहनों को रखना चाहती थी, लेकिन गांधी जी इससे इनकार कर रहे थे। बा ने अंत में रोते हुए कहा कि अच्छा एक तो रख लूँ, लेकिन गांधी जी नहीं माने। बा हार कर उन गहनों का उन्होंने त्याग किया। ये ठीक वैसा ही था जैसे कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक अंधेरे में हो और उसे खींच कर हम उजाले में ले आए। अपरिग्रह का जो व्रत गांधी जी का था उसका पालन उन्होंने अपनी जिंदगी में किया था और अंततः बा उससे सहमत हुई। संत कबीर का भक्तिपद आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं।

गांधी जी का मानना था कि अंतःकरण की शुद्धता और सदाचरण से ही हमारे सांसारिक जीवन का उत्थान होता है, देश का उत्थान होता है। इसलिए गांधी जी ने एकादश व्रत का सूत्र दिया, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह, शरीर श्रम, अस्वाद, सर्वधर्म संभाव, स्वदेशी, स्पर्श भावना और साहस। ये व्रत हमारा भीतर और बाहर शुद्ध कर देता है और तब हमारे भीतर प्रार्थना का फूल खिलता है और उसकी सुगंध हमारे भीतर फैल जाती है। संत रैदास की ये भक्ति रचना प्रस्तुत कर रहे हैं प्रशांत सोनी।

वो हमारी दृष्टि है जो इस संसार को अलग तरह से छूती है और सृष्टि का कण कण हमें ईश्वर की अनुभूति से भर देता है। अगर हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी हर रचना हमें छूती है। इसी प्रेम से भरकर गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने इस संसार को आनंद यज्ञ कहा। प्रस्तुत है गुरुदेव की रचना।

गांधी जी ने कहा था कि यदि हम धर्म, राजनीति, अर्थशास्त्र आदि से मैं और मेरा निकाल सकें तो हम शीघ्र ही स्वतंत्र हो सकेंगे और पृथ्वी पर स्वर्ग उतार सकेंगे। ऋग्वेद में एक प्रार्थना है कि जैसा संकल्प होगा वैसा ही कर्म होगा, जो तय किया गया है परिणाम वैसा ही होता है। इसलिए हे परमेश्वर, हमारे मन को शुभ संकल्प वाला बनाओ। तो आइए समापन करें स्वस्ति गान से। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की मंगल कामना का हिंदी अनुवाद किया है पंडित भवानी प्रसाद मिश्र ने। प्रस्तुत कर रही हैं तापसी नागराज।

0: इसके साथ ही आज की ये प्रार्थना सभा संपन्न होती है।
1: आज के भारत भारती कार्यक्रम में आपने सुगम संगीत सुना। अब ये कार्यक्रम खत्म होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद को, देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए।
2: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि। अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 178 से वाचन। ऋषि हैं अगस्त्य मैत्रा वरुणी, देवता हैं इंद्र और छंद है त्रिष्टुप।
3: यद्धस्या त इंद्र सृष्टिरस्ति यया बभूथ जरित्रिभ्य ऊति मानः कामम महयंतमा धग्विश्वा ते अश्याम परियाप आयोः। हे इंद्रदेव, जिन धनों से आप स्तोताओं का संरक्षण करते हैं वह हमें प्रदान करें, हमारी श्रेष्ठ अभिलाषाओं को न रोककर आप हमारे लिए उपयोगी ऐश्वर्य प्रदान करें। न घा राजेंद्र आदभन्नो या नु स्वसारा कृणवंत योनौ आपश्चिदस्मै सुतुका अवेशन गमन्न इंद्रह सख्या वयश्च। हमारी अंगुलियों ने जिन यज्ञीय कार्यों को यज्ञस्थल में सोमाभिषवण के रूप में किया है उन्हें तेजस्वी इंद्रदेव नष्ट न करें। इस कार्य के संपादन के लिए शुद्ध जल की भी प्राप्ति हो। इंद्रदेव हमारे लिए मैत्री भाव और श्रेष्ठ पोषक अन्न प्रदान करें। जेता नृभिरिन्द्रः पृत्सु शूरः श्रोता हवम नाधमानस्य कारोः प्रभर्ता रथम दाशुष उपाक उद्यन्ता गिरो यदि च त्मना भूत। शूरवीर इंद्रदेव युद्धों में सैन्य शक्ति के सहयोग से ऐश्वर्य विजेता विपदाग्रस्त स्तोता की करुण पुकार को सुनने वाले दानी यजमान के निकट रथ को रोकने वाले तथा जो साधक श्रद्धा भावना से प्रार्थना करने वाले हैं उनकी वाणी रूपी साधना को ऊर्ध्वगामी बनाने वाले हैं। एवा नृभिरिन्द्रः सुश्रवस्या प्रखादः वृक्षो अभि मित्रिणो भूत समरिय इषः स्तवते विवाची सत्राकरो यजमानस्य शंसः। श्रेष्ठ यशस्वी इंद्रदेव मनुष्यों के साथ मित्रता पूर्ण व्यवहार करने वाले यजमान की हवियों को ही ग्रहण करते हैं। स्तोताओं की प्रार्थना को पूर्ण करने वाले और यजमान के शुभ चिंतक इंद्रदेव जहां परस्पर मिलकर अनेक स्तोत्रों से आवाहित किए जाते हैं, ऐसे युद्ध में अपने मित्रों का संरक्षण करते हैं। त्वया वयम् मघवन्निन्द्र शत्रुनभि श्याम महतो मन्यमानान् त्वं त्राता त्वमु नो वृधे भूर्विद्यामेशं व्रजनं जीरदानुम्। हे ऐश्वर्यवान इंद्रदेव, हम आपके सहयोग से बड़े बड़े अहंकारी शत्रुओं को भी पराजित करें। आप ही हमारे संरक्षक और प्रगति के कारण बने, जिससे हम अन्न बल और दीर्घ जीवन प्राप्त कर सकें।
4: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 178 से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए सुनिए कार्यक्रम भक्ति संगीत।

मूर्खों का संग न करना, विद्वानों का संग करना और पूजनीय पुरुषों का सत्कार करना उत्तम और शुभकारक कर्म है।

ईश्वर भक्ति के अनेक मार्ग बताए गए हैं, उनमें सबसे सरल मार्ग ईश्वर का नाम स्मरण करना है। नाम स्मरण करने का कोई नियम नहीं है। भक्त जहां भी हो, चाहे जिस हालत में हो, ईश्वर का नाम स्मरण कर सकता है।

हम ईश्वर की भक्ति ईश्वर को पाने के लिए करते हैं। भक्ति का वास्तविक अर्थ है ईश्वर से मिलने के लिए चलना, और यदि हम ईश्वर को पा लिए तो इसी को मोक्ष कहते हैं।

निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करना ही सच्ची भक्ति है और यही हमारा परम कर्तव्य है। प्रभु का सच्चा भक्त वही है जो भगवान से ही प्रेम करता है, सच्चे हृदय से उन्हें याद करता है, किंतु उनसे संसार की कोई वस्तु नहीं मांगता। वह प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, मुझे सिर्फ आपका प्रेम चाहिए।

इसी भक्ति रचना के साथ आज का कार्यक्रम सांदगीत पूरा होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वतन का राग कार्यक्रम में आज हम स्मरण कर रहे हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और पत्रकार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के अविस्मरणीय योगदान ने देश के स्वाधीनता संग्राम को एक निर्णायक दिशा दी थी। गरम दल के नेता रहे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने हुंकार भरते हुए कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और उनके इस उद्घोष ने भारतीय जनमानस को जगा कर रख दिया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई सन 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी के पास ग्राम चिखली में हुआ था। उनका पूरा नाम बलवंत गंगाधर तिलक था। उनके पिता गंगाधर रामचंद्र तिलक एक शिक्षक और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। मात्र 16 वर्ष की उम्र में ही तिलक के पिता का निधन हो गया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बिना किसी व्यवधान के अपनी शिक्षा जारी रखी। पिता की मृत्यु के 4 महीने के अंदर ही उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली और डेक्कन कॉलेज पूना में दाखिला लिया। उन्होंने सन 1876 में बीए ऑनर्स की परीक्षा पास की और सन 1879 में मुंबई विश्वविद्यालय से एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। तिलक जी आरंभ से ही अन्याय के घोर विरोधी थे। कानून की पढ़ाई करते समय ही उनकी मित्रता गोपाल गणेश अगरकर से हुई। दोनों देश की स्थिति पर लंबे विचार विमर्श किया करते थे। मन में ये चिंता थी कि देशवासियों की सेवा की कौन सी सर्वोत्तम योजना बनाई जा सकती है, और अंततः दोनों ने ये संकल्प लिया कि वो कभी भी सरकारी नौकरी नहीं करेंगे तथा नई पीढ़ी को सस्ती और अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्राइवेट हाई स्कूल और कॉलेज खोलेंगे। उनके सहपाठी दोनों की आदर्शवादी बातों का मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन तिलक जी अंग्रेजी शिक्षा के घोर आलोचक थे। उनका मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली छात्रों के मन में भारतीय सभ्यता के प्रति हीन भावना पैदा करती है, उसका अनादर सिखाती है। इसी कारण उन्होंने आगे चलकर डेक्कन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की ताकि भारत में शिक्षा का स्तर सुधर सके। अपने पिता की ही तरह लोकमान्य गंगाधर तिलक ने भी पहले अध्यापन का कार्य आरंभ किया। कुछ समय उन्होंने स्कूल और कॉलेज में गणित पढ़ाया, लेकिन देश के हालात उन्हें बेचैन कर रहे थे। वो कराहती हुई जनता की पुकार सुन पा रहे थे। 19वीं सदी के आखिरी सालों में स्वदेशी का नारा लेकर बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के गांव-गांव घूमे। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि स्वराज का वक्त आ चुका है और हमें अपना सब कुछ इस हेतु झोंक देना चाहिए। महाराष्ट्र में गणपति बप्पा मौर्या की गूंज सन 1893 के पहले भी थी ही। गणेश जन्मोत्सव परंपरागत तरीके से घरों में मनाया जाता था, लेकिन इसे सामाजिक राजनीतिक एकता और जन जागरण का हथियार बनाया लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। गणेश उत्सव और शिवाजी जयंती अब सार्वजनिक समारोह बन गए और राष्ट्रीय एकता का राग इस बहाने बह चला। यही एकता आगे चलकर गुलाम भारत की आजादी के संघर्ष में एक बेजोड़ हथियार साबित हुई।

ये वो वक्त था जब तिलक जी को लगता था कि भारतीयों पर हो रहे अत्याचार और उनके संघर्ष की कहानी दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। तब लोकमान्य तिलक एक प्रखर पत्रकार के रूप में सामने आए। उन्होंने राष्ट्रीय चेतना की जागृति के लिए मराठी में केसरी और इंग्लिश में द मराठा नाम से दो दैनिक समाचार पत्र शुरू किए, जो जनता में बहुत लोकप्रिय हुए। इन समाचार पत्रों के जरिए ब्रिटिश शासन की कटु आलोचना के लिए वो विख्यात हो गए। केसरी में छपने वाले उनके लेखों की वजह से उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा, लेकिन तिलक जी की आवाज बुलंद रही। सन 1896 में बंबई प्रेसिडेंसी को भयंकर अकाल का सामना करना पड़ा। तिलक जी पूरी तरह राहत कार्यों में जुट गए। उन्होंने बंबई सरकार से अकाल संहिता लागू करने का आग्रह किया। अकाल का प्रभाव कम करने के लिए उन्होंने सरकार को अनेक सुझाव भी दिए। पूना में उन्होंने बहुत सस्ती अनाज की दुकानें खोलकर अकाल के कारण होने वाले दंगों को रोका। तिलक जी ने प्लेग की बीमारी के दौरान देशवासियों की जो सेवा की, उसे भी भुलाया नहीं जा सकता। जैसे ही पूना में प्लेग के लक्षण प्रकट हुए, उन्होंने हिंदू प्लेग अस्पताल शुरू किया और कई दिनों तक इसके लिए धन जुटाने का कार्य किया। पूना के अधिकांश नेता उस दौरान शहर छोड़कर बाहर चले गए थे, लेकिन तिलक जी वहीं रहे। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया। वे खोजी दलों के साथ स्वयं सेवक के रूप में गए, अस्पताल का प्रबंध किया, शिविर में निःशुल्क रसोई की व्यवस्था की और जनता के सामने आ रही कठिनाइयों के बारे में सरकार को बताते रहे। सन 1890 में लोकमान्य तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गए थे, लेकिन इसके नरम दल के लिए तिलक जी के विचार ज्यादा ही उग्र थे। फलतः जल्दी ही कांग्रेस से उनका वैचारिक मतभेद सामने आया। गरम दल में लोकमान्य तिलक के साथ लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल शामिल हुए, जिन्हें हम आज भी लाल बाल और पाल की तिकड़ी के रूप में जानते हैं। बाल गंगाधर तिलक के विरोध की गूंज अंग्रेजी हुक्मरानों को बेचैन कर रही थी। भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने जब सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की, तो तिलक जी ने इस विभाजन को रद्द करने की मांग का जोरदार समर्थन किया और ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की वकालत की, जो जल्दी ही एक देशव्यापी आंदोलन बन गया। उनके द्वारा शुरू की गई राजनीतिक गतिविधियों, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और सत्याग्रह को ही आगे चलकर गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक असहयोग आंदोलन के रूप में अपनाया। अपने पत्र केसरी में तिलक जी ने अंग्रेजों की नीतियों की पोल खोलते हुए एक लेख लिखा था, जिसका शीर्षक था देश का दुर्भाग्य। इसे पढ़कर अंग्रेजी हुकूमत जैसे तिलमिला उठी। उनको भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के अंतर्गत राजद्रोह के अभियोग में 27 जुलाई सन 1897 को गिरफ्तार कर लिया गया। तिलक जी एक अनुभवी वकील थे। उन्होंने अपने बचाव में जो ऐतिहासिक जिरह की, वो कई दिनों तक लगातार चली, लेकिन अंततः उन्हें 6 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई और बर्मा के मांडले जेल में बंद कर दिया गया।

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एक निर्भीक पत्रकार तो थे ही, साथ ही वो एक गंभीर चिंतक और लेखक भी थे। तिलक जी ने वेदों के काल निर्धारण से संबंधित अपने अनुसंधान के परिणाम स्वरूप वेदों की प्राचीनता पर एक निबंध लिखा, जो ज्योतिषीय गणित अवलोकन के प्रमाणों पर आधारित था। इस पूरे निबंध को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक की प्रशंसा यूरोप और अमेरिका के कई विद्वानों ने की और तिलक जी के निष्कर्षों को पूरी तरह से स्वीकार किया गया। उन्होंने कई किताबें लिखीं। उनके द्वारा लिखित पुस्तकें हैं द ओरियन, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष आदि। लेकिन श्रीमद भगवद गीता की व्याख्या को लेकर बर्मा के मांडले जेल में लिखी गई गीता रहस्य उनकी सर्वोत्कृष्ट कृति है, जिसका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इसमें उन्होंने श्रीमद भगवद गीता के कर्म योग की वृहद व्याख्या की। उन्होंने इस ग्रंथ के माध्यम से बताया कि गीता चिंतन उन लोगों के लिए नहीं है जो स्वार्थपूर्ण सांसारिक जीवन बिताने के बाद खाली समय में बैठकर इसे पढ़ने लगते हैं। गीता रहस्य में ये दार्शनिकता निहित है कि हमें मुक्ति की ओर ध्यान रखते हुए भी सांसारिक कर्तव्य कैसे करने चाहिए। मांडले जेल से रिहा होने के बाद तिलक जी एक बार फिर से जुट गए स्वराज के अभियान में। अप्रैल सन 1916 में उन्होंने एनी बेसेंट की मदद से होम रूल लीग की स्थापना की। स्वराज के संघर्ष में ये एक अहम पड़ाव था। होम रूल आंदोलन के समय बाल गंगाधर तिलक को बहुत प्रसिद्धि मिली। इसी दौरान उनकी सार्वजनिक सेवाओं को देखते हुए लोग उन्हें लोकमान्य कहकर पुकारने लगे। तिलक जी लगातार जनता को एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार कर रहे थे। वो केंद्रीय असेंबली से लेकर क्षेत्रीय सरकारों तक भारतीयों की भागीदारी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहते थे। फूट डालो और राज करो, अंग्रेजों की इस साजिश के खिलाफ तिलक जी ने भारतीय जनमानस में राष्ट्रीय एकता का मंत्र फूंका। लखनऊ समझौता, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक एकता के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया वो अविस्मरणीय है। भारतीय क्रांति के जनक कहे जाने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1 अगस्त सन 1920 को मुंबई में अंतिम सांस ली। तिलक जी को याद करते हुए महात्मा गांधी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। लेकिन सच तो ये है कि बाल गंगाधर तिलक प्रतीक हैं उस मानव गरिमा के, जहां

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आपके साथ हूं मैं सुनीता सिंह। प्रस्तुत है कार्यक्रम मध्य भारत के जनजातीय राजवंश और स्थापत्य कला में उनका योगदान। समय की एक सुदीर्घ यात्रा तय करते हुए एक देश, एक समाज की अपनी पहचान बनती है। पीढ़ियों की आवाजाही में कुछ निशान बनते हैं, कुछ निशान छूटते हैं, जो किसी सभ्यता, किसी समाज के होने की गवाही देते हैं। धरती के सीने पर मौन खड़े ये महल, किले, दुर्ग, मंदिर या बावड़ियां कितनी कहानी समेटे हैं। इतिहास इन निशानियों को गौर से देखता है, इन साक्ष्यों को टटोलता है, इनके एकांत में बैठ इन कहानियों को सुनता है और फिर वर्तमान पीढ़ी को सुनाता है। इस तरह किसी देश की सभ्यता और संस्कृति से, उसकी रंगत, उसकी महक से हम परिचित होते हैं। और हमारे देश का तो एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जितना प्राचीन उतना ही व्यापक। अपने इस कार्यक्रम में हम मध्य भारत के जनजातीय राजवंशों के इतिहास और स्थापत्य कला में उनके योगदान पर चर्चा करेंगे। हम आपको बता दें कि मध्य भारत में मुख्य रूप से चार राज्यवंश हुए हैं। गढ़ा मंडला का गोंड राज्य, देवगढ़ का गोंड राज्य, चंद्रपुर का गोंड राज्य और खेरला का गोंड राज्य। इसके अलावा भी अनेक गोंड रियासतें यहाँ रही हैं। अपनी इस कार्यक्रम श्रृंखला की शुरुआत हम गढ़ा मंडला के गोंड राजवंश से करने जा रहे हैं। गढ़ा मंडला के गोंड राजवंश में प्रतापी राजा हुए संग्राम शाह और इसी राजवंश में हुई सुप्रसिद्ध वीरांगना रानी दुर्गावती। तो आइए जानते हैं गढ़ा मंडला के गोंड राजवंश का इतिहास और स्थापत्य कला में उनके योगदान के विषय में। हमारे बीच हैं पुरातत्वविद सुश्री पूजा सक्सेना। आपको पुरातत्व के क्षेत्र में अध्ययन और संरक्षण का 23 वर्षों का लंबा अनुभव है। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि धर्मपाल शोधपीठ द्वारा पूजा जी की एक पुस्तक का प्रकाशन भी किया गया है, गोंड राजवंशों की स्थापत्य कला, जिसका संपादन किया है प्रोफेसर संतोष कुमार वर्मा ने। नमस्कार पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
2: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हम आज गढ़ा मंडला के गोंड राजवंश की बात करने जा रहे हैं और स्थापत्य कला में उनके योगदान की चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि आप ये बताएं कि जो गोंड राजवंश था गढ़ा मंडला का, उसका उद्भव कैसे हुआ?
2: भारत का इतिहास बहुत विस्तृत है और 12वीं सदी में हम देखते हैं कि एक मोड़ आता है
1: जी।
2: और जब मोहम्मद गौरी के आक्रमण दिल्ली पर होते हैं और विदेशी सत्ता काबिज हो जाती है और धीरे धीरे जो है वहाँ बहुत उथल पुथल चलती है, उसी समय मध्य भारत में जहाँ पर 11वीं-12वीं सदी में बहुत से राजपूतों का शासन था, जैसे परमार, प्रतिहार, कलचुरी या चंदेल, उन स्थानों पर जब 13वीं सदी में इनका शासन समाप्त होता है, उसके बाद अचानक से हमें पूरे मध्य भारत से अर्थ है मध्य प्रदेश और उसके आसपास लगे हुए प्रदेश
1: जी,
2: तो इन क्षेत्रों में हमें गोंड राजवंशों का शासन दिखाई देता है, जिसमें से सबसे प्रमुख रहा गढ़ा मंडला का गोंड राज्य। गढ़ा से अर्थ है जबलपुर, मध्य प्रदेश का जबलपुर
1: जी,
2: नर्मदा के किनारे बसा हुआ। तो उनका सबसे प्रतापी राजा संग्राम शाह है। संग्राम शाह से पहले भी जो उनकी वंशावलियां मिलती हैं उसमें 48 राजाओं का जिक्र आता है।
1: अच्छा,
2: तो उसमें 49वें नंबर पर संग्राम शाह है।
1: हाँ, अच्छा।
2: और गढ़ा मंडला में जो मदन महल है, जबलपुर के पास में जो मदन महल है, वो उनका प्रमुख केंद्र रहा।
1: तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि गढ़ा मंडला में, जैसे कि आपने बताया कि पहले राजपूतों का शासन था, उनका राज्य था, धीरे धीरे वो सारा राज्य समाप्त हुआ और गोंड जो राजवंश है उसकी स्थापना हुई। तो ये स्थापना कैसे हुई, और विशेष रुचि ये जानने में है कि संग्राम शाह जो हैं, जिनको आपने बताया कि वो 49वें अपनी पीढ़ी के राजा थे, तो वो किस तरह से राजा बने?
2: गढ़ा के गोंड राजवंश की स्थापना के संबंध में बहुत सारी जनश्रुतियां हैं, उसमें से एक जनश्रुति मैं आपको सुनाती हूँ
1: जी। जी,
2: कहानी है कि गढ़ा के राजा ने यह घोषणा की कि वह अपनी पुत्री रत्नावली का विवाह करना चाहते हैं।
1: अच्छा।
2: और सभी लोग नदी के किनारे पर इकट्ठे हों। तो सब लोग इकट्ठे हुए तो वहां पर एक सर्वे पाठक नाम का एक ब्राह्मण भी खड़ा था। तो उसने देखा दूर एक गोंड लड़का खड़ा है, जदुराव। हाँ। उसका बाद में नाम यादव राव भी मिलता है
1: जी।
2: तो जदुराव भी खड़ा था, तो सर्वे पाठक ने कहा कि आ जाओ, तुम भी खड़े हो जाओ। तो जदुराव आकर वहां नदी के किनारे खड़ा हो गया। और जैसा कि शर्त थी कि जिसके सर पर नीलकंठ पक्षी बैठेगा उसी से रत्नावली का विवाह होगा।
1: अच्छा।
2: तो जब नीलकंठ उड़ा तो वो जाकर जदुराव के सर पर बैठ गया।
1: अच्छा।
2: तो जदुराव और रत्नावली की शादी हो गई और बाद में फिर जदुराव गढ़ा का राजा बना।
1: तो ये बहुत ही रोचक सी आपने कहानी बताई। जनजातीय समाज में इस तरह की प्रथाएं होती हैं या इस तरह की शर्तें वो रख लेते हैं कि एक नीलकंठ अगर आपके सर पर आकर बैठेगा तो शादी होगी।
2: इसका मतलब ये है कि जिस पर महादेव की कृपा होगी
1: हाँ,
2: तो वो अगला राजा होगा।
1: अगला राजा होगा, ये भाव रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से मतलब गोंड राजवंश की स्थापना होती है। और संग्राम शाह के विषय में आप बताएं कि वो किस तरह से राजा बने।
2: गोंड राजवंश की, गढ़ा के गोंड राजवंश की बहुत सारी हमको वंशावलियाँ मिली हैं, लिखी हुई वंशावलियाँ भी हैं और कहावतों में, कहानियों में भी आती हैं। तो उनसे पता चलता है कि 48 राजा हो चुके थे, उसके बाद 49वें राजा संग्राम शाह थे।
1: हाँ।
2: संग्राम शाह के पिता जो थे अर्जुन दास, वो भी राजा रह चुके थे और उनका लगभग 10 वर्षों का शासन है। तो जब संग्राम शाह शासक बने 1510 में।
1: अच्छा।
2: और उनका शासन काल है 1543 तक।
1: अच्छा।
2: तो शुरू में उनका नाम मिलता है आमणदास, जबलपुर में एक जगह भी है जो उनके नाम पर है।
1: अच्छा।
2: और फिर बाद में 1516 के आसपास आते आते उनका नाम मिलता है संग्राम शाह या संग्राम शाही।
1: अच्छा।
2: तो संभवतः उन्होंने कोई संग्राम जीता होगा इसलिए उनका नाम संग्राम शाही पड़ा।
1: तो ये भी बड़ी रोचक सी बात है कि पहले आमणदास उनका नाम था और संभवतः कोई युद्ध जीता तो संग्राम शाही या संग्राम शाह के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। अच्छा, ये भी पढ़ने में आता है कि उन्होंने सोने का सिक्का चलाया था, तो इस पर आप प्रकाश डालें। बड़ी रोचक बात है कि सोने का सिक्का यानी काफ़ी समृद्धि।
2: जी हाँ, सोने का सिक्का चलाने का अर्थ ही यही है कि वह राज्य बहुत शक्तिशाली और आर्थिक रूप से समृद्ध है, तभी आप सोने का सिक्का चला पाते हैं।
1: बिल्कुल।
2: तो संग्राम शाह के कुछ सोने के सिक्के मिले हैं और इन सिक्कों से कई सारी जानकारियां मिलती हैं।
1: अच्छा।
2: जैसे सिक्के पर संग्राम शाह अपने आप को पुलस्त्य वंशी लिखते हैं।
1: अच्छा।
2: तो पुलस्त्य ऋषि के गोत्र से जो लोग अपना उद्भव मानते हैं वो लोग अपने आप को पुलस्त्य वंशी कहते हैं, तो संभवतः वो पुलस्त्य वंशी रहे हैं।
1: बिल्कुल।
2: दूसरी बात यह है कि सिक्कों पर एक शेर बना हुआ मिलता है और एक पुत्री।
1: अच्छा।
2: पुत्री मतलब एक ह्यूमन फिगर है, लाइन ड्राइंग रहती है, जो बहुत शुभ माना जाता है, इस क्षेत्र में आज भी बनाई जाती है। और साथ ही उनका नाम मिलता है स्वस्ति श्री संग्राम शाही।
1: अच्छा।
2: ये संस्कृत में है।
1: अच्छा।
2: और खास बात यह है कि यही नाम उसी सिक्के पर तेलुगु में भी मिलता है।
1: तेलुगु में?
2: जी हाँ।
1: अच्छा।
2: दो भाषाओं का उपयोग किया है। तो शुरू के विद्वान ये मानते थे कि गोंडों का उद्भव भारत के दक्षिणी भाग से हुआ है, इसलिए यहाँ पर दो भाषाओं का
1: तेलुगु भाषा का भी प्रयोग सिक्कों पर है।
2: जी हाँ। जी। लेकिन बाद के जो विद्वान हैं जैसे डॉक्टर आर के शर्मा हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। दो राज्यों के बीच जब बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध होते हैं तो लेन देन को आसान बनाने के लिए दो भाषाओं का उपयोग किया जाता है।
1: बिल्कुल।
2: तो ये हाँ। भी दिखाता है कि ये आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध होगा।
1: बिल्कुल।
2: और मैं आपको बताऊं कि स्वतंत्रता के कुछ समय बाद ही मदन महल के पास से एक घड़ा निकला था, एक खेत से।
1: अच्छा।
2: तो उसमें बहुत सारे सिक्के निकले थे प्राचीन। तो ये प्राचीन सिक्के विभिन्न राजवंशों के थे, भारत के दूर दूर तक के राजवंशों।
1: अच्छा।
2: के। और ये दिखाता है कि जबलपुर उस समय बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा और यहाँ से प्राचीन राजमार्ग निकलता होगा। तो यहाँ पर व्यापारिक संबंध रहे होंगे, तभी यहाँ पर एक साथ बहुत सारे सिक्के
1: अलग अलग जगह
2: अलग अलग जगहों के मिल रहे हैं,
1: वहाँ से मिल रहे हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से मालूम पड़ता है कि समृद्धि थी उस वक्त, ये मालूम पड़ रहा क्योंकि सोने के सिक्के थे। और जैसा कि आपने बताया कि संस्कृत में उनका नाम लिखा है संग्राम शाह का, तो शिक्षा भी अच्छी मालूम पड़ती है कि शिक्षा की स्थिति भी अच्छी थी। और फिर आपने बताया कि तेलुगु भाषा में भी लिखा है, यानी व्यापारिक संबंध जो थे वो दूर दूर के राज्यों तक भी थे, तो समृद्धि निश्चित तौर पर बहुत अधिक थी, ये तो साबित होता है। अच्छा पूजा जी, हमने जैसा कि बताया ही अपने श्रोताओं को कि इस कार्यक्रम में हम जनजातीय राजवंशों की चर्चा तो करेंगे ही, इसके साथ ही स्थापत्य कला में उनके योगदान की भी हम चर्चा करेंगे। और गढ़ामंडला की जब इस राजवंश की बात चलती है तो मदन महल वो उनका प्रमुख गढ़ था, तो इसके विषय में आप बताइए।
2: मदन महल, अगर अभी भी आप जबलपुर जाएं कभी, तो जब आप जबलपुर से भेड़ाघाट की तरफ जाते हैं तो एक ऐतिहासिक स्मारक आपको रास्ते में दिखाई देता है और ये सभी को आकर्षित करता है। उसका कारण ये है कि ये जो भवन है ये आधा एक गोल चट्टान के ऊपर है और आधा जमीन के ऊपर है।
1: अच्छा।
2: हाँ, तो ये सभी को बहुत आकर्षित करता है। ये असल में पुरानी चौकी है
1: जी।
2: जब कलचुरियों का शासन रहा होगा तो क्या है कि जहां भी इन राजपूतों का शासन था तो ये लोग वन क्षेत्र में हमेशा जनजातियों के प्रमुखों को नियुक्त करते थे।
1: अच्छा।
2: क्योंकि जनजातियों को जंगल का, जीव जंतुओं का बहुत ज्ञान होता है, साथ ही ये लोग सुरक्षा भी करते थे, जो व्यापारी काफिले जाते थे उनकी, तो जनजातियां ही वन क्षेत्र को संभालती थी। तो ये जो मदन महल है ये भी एक चौकी की तरह रहा होगा, और संभवतः इसका नाम जो पड़ा मदन महल वो मदन शाही के नाम पर पड़ा होगा, क्योंकि जो गोंड राजवंशों की हम वंशावली देखते हैं उसमें एक नाम आता है मदन शाही, जो कि 1116 के आसपास होंगे
1: जी।
2: तो संभवतः वो यहाँ के प्रमुख रहे होंगे इस चौकी के, तो उनके नाम पर मदन महल पड़ा।
1: आपका कहना ये है कि जो वनांचल थे, जो वन क्षेत्र था
2: जी
1: कलचुरियों के राज में, उसकी रक्षा के लिए ये जनजातीय समाज वहाँ था और मदन शाही के नाम पर मदन महल ये नाम पड़ा है। और वास्तव में जबलपुर के आसपास से आप जब निकलते हैं तो मदन महल की चर्चा होती ही है, लेकिन इस तरह से उसको जोड़कर नहीं देख पाते हम। अच्छा, संग्राम शाह के 52 गढ़ की भी बहुत चर्चा है, तो इस पर भी आप विस्तार से प्रकाश डालें हम चाहते हैं हमारे श्रोताओं के लिए।
2: एक कहावत है, आमन बुद्ध 52 गढ़ा, यानी कि आमनदास, जैसा कि मैंने कहा संग्राम शाह का नाम था, तो संग्राम शाह के 52 गढ़। 52 गढ़ यहाँ से मतलब है किला, फोर्ट।
1: अच्छा,
2: तो 52 फोर्ट्स जिसके हों वो बहुत शक्तिशाली राजा होगा। तो ये किले दिखाते हैं कि आपकी कितनी अच्छी प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं। तो 52 गढ़ उनके पास था। जो संग्राम शाह के अधिकार क्षेत्र था वो बहुत विस्तृत था, उसमें मध्य प्रदेश का कुछ भाग, कुछ महाराष्ट्र का और कुछ छत्तीसगढ़ का आता था।
1: अच्छा।
2: तो आज अगर हम इसको जिलों में देखें, मध्य प्रदेश में जबलपुर, मंडला, दमोह, बालाघाट, कवर्धा, डिंडोरी, नर्मदापुरम, सिवनी, नरसिंहपुर, पन्ना, सागर, बिलासपुर, अब छत्तीसगढ़ में, और नागपुर, ये सब संग्राम शाह के यहाँ पर गढ़ मिलते हैं,
1: किले मिलते हैं।
2: तो बहुत ही ये दिखाता है कि उनके बहुत स्ट्रॉन्ग अधिकार रहा है। तो इन 52 गढ़ों के नाम भी मिलते हैं, हालांकि उसकी सूची बहुत लंबी है। पर उसमें से जैसे सिंगौरगढ़ है, चौरागढ़ है, गौरझामर, खिमलासा, रहली, राहतगढ़, मड़िया दो, गढ़ा कोटा, ये इस तरीके के कुछ बहुत प्रमुख किले उनके रहे
1: जी। जी, तो आपने सिंगौरगढ़ का नाम लिया तो मेरी रुचि उस ओर हुई कि हमें मतलब विस्तार से बताइए इस किले के बारे में।
2: सिंगौरगढ़ को सबसे ज्यादा प्रमुखता संग्राम शाह के समय में ही मिली। सिंगौरगढ़ आजकल दमोह जिले में है, मध्य प्रदेश के
1: जी।
2: आज भी यहाँ तक पहुँचना बड़ा दुर्लभ है। शहर से आप 10-15 किलोमीटर अंदर चले जाते हैं एकदम सुनसान जंगली जंगल में, तब आप जाके सिंगौरगढ़ पहुंचते हैं। तो ये बड़ा दुर्गम किला रहा होगा। किला एक ऊंची पहाड़ी पर है, फिर चारों तरफ से किले की सुरक्षा दीवारें हैं, लेकिन खास बात क्या है जो गोंडों की सुरक्षा व्यवस्था में होती है कि इस पहाड़ी के चारों ओर भी बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं।
1: अच्छा।
2: हाँ, यानी कि इस पहाड़ी को चारों ओर से ऊंची ऊंची पहाड़ियों ने घेरा हुआ है। और फिर इन पहाड़ियों के बाद एक घना जंगल है, आज उसका नाम वीरांगना रानी दुर्गावती के ऊपर वह है, वीरांगना रानी दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी
1: जी।
2: यानी कि दुर्ग तक कोई सेना पहुंचना चाहती है तो उसको पहले तो एक घना जंगल पार करना होगा जिसमें जंगली जानवर भी होंगे, और उसके बाद कई नदी नाले, और उसके बाद ये ऊंची पहाड़ियां जो चारों ओर से घेरी हुई हैं, और इन पहाड़ियों के ऊपर भी फोर्टिफिकेशन वॉल बनाई हुई है, सुरक्षा दीवार बनाई हुई है।
1: अच्छा।
2: तो अगर कोई सेना इसको पार भी कर जाती है तो आगे जाके आपको सामना करना पड़ेगा जो मुख्य पहाड़ी है उसके नीचे एक पश्चिमी ओर बहुत बड़ा तालाब बना हुआ है जिसे सिंगौरगढ़ तालाब कहते हैं।
1: अच्छा।
2: तो ये तालाब मुख्य द्वार के तक आया करता था, जैसे खाई होती है तो खाई भी पार करनी पड़ेगी, और फिर कहीं जाके आप ऊंची पहाड़ी पर जब चढ़ना शुरू करोगे तो पहला दरवाजा आएगा जिसको हाथी दरवाजा कहते हैं, फिर एकदम खड़ी चढ़ाई आएगी, उस पर कई सीढ़ियां चढ़ के आप दूसरा दरवाजा अगर पार कर लेते हो, ये सुरक्षा चौकी है, उसको भी अगर आपने पार कर लिया, क्योंकि चारों ओर से दीवार से भी घिरा हुआ है, और तब आप जाके किले के अंदर पहुंचते हो।
1: क्या बात है।
2: तो जब आप किले के अंदर पहुंच जाते हो तो एक विशाल तालाब दिखाई देता है जो आर्टिफिशियल है, कृत्रिम टैंक है। ये लगभग 100 मीटर से ज्यादा लंबा और 60 मीटर से ज्यादा चौड़ा और काफी गहरा है।
1: अच्छा।
2: तो खास बात क्या है कि इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती थी।
1: अच्छा।
2: यानी कि किले के लिए जरूरत होती है कुछ चीजों की, पानी, खाना और सेना और हिम्मत। तो पानी खत्म ना हो जाए इसके लिए साल भर, जब बारिश होती थी तो साल भर का पानी टैंक में इकट्ठा कर लिया जाता था, उसके लिए वहां पर कई सारी नालियां बनी, पक्की नालियां बनी हुई हैं। फिर हम आगे जाते हैं तो हमको रानी महल मिलता है। रानी महल में एक मुख्य हॉल है बीच में, और उसके चारों तरफ गलियारे हैं, कक्ष हैं, ये 2 मंजिला है तो बहुत सुंदर है। उसके आसपास कुछ मूर्तियां रखी हुई हैं, कलचुरी काल की कुछ मूर्तियां दिखाई देती हैं और कुछ गोंड काल की हैं।
1: तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया कि क्या चौकस सुरक्षा व्यवस्था, और अगर किले तक पहुंचना है तो कितनी कठिनाइयों के बाद आप पहुंचेंगे, और फिर उतना ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण कि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी वहां देख पा रहे हैं, जिसकी बात आज की जा रही है, आज हम चर्चा करते हैं और इसका प्रचार प्रसार करते हैं कि आप कीजिए पानी बोइए तो ये उस वक्त कर रहे थे संग्राम शाह के समय में। अच्छा पूजा जी, जबलपुर में ही बाजना मठ भी है, तो हम चाहते हैं कि इसके विषय में भी आप विस्तार से बताएं।
2: जबलपुर में एक टेकरी है यानी कम ऊंची पहाड़ी, उस पर बाजना मठ है। बाजना मठ में बटुक भैरव की एक छोटी सी मूर्ति है।
1: अच्छा।
2: ऐसा माना जाता है कि बाजना मठ का निर्माण संग्राम शाह ने ही किया, और यहाँ तांत्रिक साधना होती थी, ये मठ। अच्छा। था। इस बाजना मठ में एक कमरा है, कमरे में एक ही प्रवेश द्वार है, खिड़कियां नहीं है, और ऊपर गुंबजाकार छत है, साथ में गलियारा भी रहा होगा जो अब नहीं है। तो मठ जो होते हैं यहाँ आचार्य रहते हैं।
1: अच्छा।
2: और वो आचार्य अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, ग्रंथों की रचना करते हैं, इस तरीके के कार्य मठों में हुआ करते थे, तो यहाँ पर भी हुआ करते होंगे। तो हम देखते हैं कि संग्राम शाह खुद भी संस्कृत के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने खुद रस रत्न माला नामक एक ग्रंथ लिखा है।
1: अच्छा।
2: और उसके आखिरी पन्ने पर उनका नाम भी उन्होंने लिखा है।
1: जी। अच्छा, अच्छा।
2: तो संग्राम शाह ने बहुत से अन्य विद्वानों को भी प्रश्रय दिया, खासकर इस समय मैथिल ब्राह्मण जो हुआ करते थे, उनका बड़ा बोलवाला था, तो उन्होंने कई मैथिल ब्राह्मणों को जबलपुर में बुलवाया और उनसे काफी ग्रंथों की रचनाएं भी करवाई। तो उसमें एक हुए हैं दामोदर ठाकुर, उन्होंने काफी ग्रंथ लिखे हैं, और एक ग्रंथ लिखा है संग्राम शाही विवेक दीपिका, जो कि संग्राम शाह के ऊपर ही है। और इसके साथ में दूसरे जो बहुत प्रसिद्ध विद्वान हुए उनका नाम है महेश ठाकुर।
1: अच्छा।
2: और उनके भी कई ग्रंथ हैं, और संग्राम शाह की जो पत्नी थी उन्होंने महेश ठाकुर को विष्णुपुर नाम का एक ग्राम दान दिया था।
1: अच्छा।
2: जो उनके योगदान के लिए रहा होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बाजना मठ के विषय में भी बताया और संग्राम शाह जी की सांस्कृतिक साहित्यिक अभिरुचि के विषय में भी बताया कि वो खुद संस्कृत के ज्ञाता थे और बहुत से साहित्यकारों को प्रश्रय भी था उनके राजवंश में। मध्य भारत के जनजातीय राजवंश और स्थापत्य कला में उनके योगदान, इस श्रृंखला के अंतर्गत गढ़ा मंडला के गोंड राजवंश पर हमने चर्चा की, संग्राम शाह की चर्चा की, और उनके स्थापत्य में उनके योगदान की भी हमने कुछ बात की है, और ये हमारी श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी। और अपने श्रोताओं को हम बता दें कि इस कार्यक्रम के अगले भाग में हम चर्चा करेंगे वीरांगना रानी दुर्गावती की। पूजा जी, आज आप हमारे बीच उपस्थित हुई, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
1: तो श्रोताओं, मध्य भारत के जनजातीय राजवंश और स्थापत्य कला में उनका योगदान, इस श्रृंखला के अंतर्गत गढ़ा मंडला के गोंड राजवंश पर हमने चर्चा की, संग्राम शाह की चर्चा हुई। बहुत जल्द इस कार्यक्रम के अगले अंक के साथ आपसे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार। आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में इन दिनों हम योग वासिष्ठ ग्रंथ के पन्ने पलट रहे हैं। वो महान ग्रंथ जिसने भगवान श्री राम के मन में उपजे वैराग्य की जमीन पर आकार लिया और पीढ़ियों को जीवन का असल मर्म समझाया, योग का पाठ पढ़ाया। पिछले अंगों में योग वासिष्ठ के वैराग्य प्रकरण पर हमने विस्तार से चर्चा की और वैराग्य प्रकरण के उत्तरार्ध पर आज हम खड़े हैं। आज हम चर्चा करेंगे मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण पर। मुमुक्षु अर्थात मोक्ष की तीव्र इच्छा रखने वाला साधक या जन्म मरण के बंधन से छूटने की चाह रखने वाला व्यक्ति। इसी प्रसंग में सुखदेव जी का वृत्तांत भी आता है। उन्हें भी वैसा ही वैराग्य हुआ है जैसा भगवान श्री राम को हुआ है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी उनका मन शांत नहीं होता। क्यों? और फिर उसका समाधान कैसे प्राप्त होता है? तो इस वृत्तांत के माध्यम से एक रोचक बिंदु प्रकाश में आता है कि वैराग्य, फिर ज्ञान और फिर किस विधि मन शांत हो, ये समाधान। तो आइए इस ज्ञान यात्रा पर चलें जो विवेक, वैराग्य, सत्संग और आत्मचिंतन से स्वयं को प्रकाशित करती है। हमारे बीच इस बातचीत के लिए हमेशा की तरह उपस्थित हैं योग, अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
2: नमस्कार।
1: मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और सुखदेव जी का मैंने जिक्र भी किया, लेकिन उस प्रसंग तक पहुँचे उसके पहले हम उस बिंदु पर पहुँचे जहाँ राम जी की जो वैराग्य दशा है उस पर महर्षि वाल्मीकि भरद्वाज जी से बात कर रहे हैं।
2: इसमें सुंदर कहा आपने, महर्षि वाल्मीकि भरद्वाज जी से कहते हैं कि भरद्वाज, जैसे मोर मेघों की घटाओं के सम्मुख केकारों करके थक जाने के कारण चुप हो जाता है, उसी प्रकार निर्मल चंद्रमा के समान मनोहर एवं महान तत्व विचार से विकसित चित्त वाले रामचंद्र जी वशिष्ठ आदि गुरुजनों के समक्ष वैराग्य की ये बातें करके शांत हो गए हैं, चुप हो गए हैं
1: जी।
2: और उनकी जो दशा है कि जैसे मोर चुप हो जाता है, वैसे ही राम जी अपने वैराग्य के चित्त में उठने वाली जो बातें हैं उन बातों को कहने के बाद बिल्कुल शांत चित्त चुप हो जाते हैं। और फिर इस पर वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम, तुम्हारा जो ये वैराग्य है, ये वैराग्य विवेक से उत्पन्न वैराग्य है, और विवेक से उत्पन्न वैराग्य निश्चित ही बहुत ऐसे लोगों को प्राप्त होता है जो बहुत इने गुने लोग हैं, क्योंकि सामान्य तौर पर संसार में विफलताओं या संसार की दशा को देख करके संसार से आदमी ऊब जाता है और वैरागी हो जाता है और कहता है संसार व्यर्थ है, लेकिन विवेक से उत्पन्न वैराग्य संसार की व्यर्थता को नहीं कहता, वो संसार में सार्थक जीवन का उपयोग कैसे किया जाए ये जिज्ञासा उसके अंदर उत्पन्न होती है। तो इसमें हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि योग वासिष्ठ जो ग्रंथ है वो राम जी के जीवन की सार्थकता को समझने की जिज्ञासा से ओतप्रोत है, और जो उनका वैराग्य है वो इसी बात को लेकर के है कि आखिर जीवन की सार्थकता कर्म से कैसे सिद्ध की जाए, जबकि कर्म करने वाले सारे लोग इस संसार में दुखी हैं, चाहे जो जैसा भी कर्म कर रहा हो, लेकिन मैंने कर्म करते हुए व्यक्ति को शांत नहीं देखा है। तो इसीलिए वो चुप हो गए हैं ये कहके। तो फिर विषय बड़ा प्यारा है, वो सारे लोग प्रसन्न हो रहे हैं राम जी का जो वैराग्य की बातें हैं इसको सुन करके, सब आश्चर्यचकित हैं। आकाश से फूलों की वर्षा, सिद्ध पुरुषों के उद्गार, राज्यसभा में सिद्धों और महर्षियों का आगमन होता है, क्योंकि ये दृश्य ही बड़ा अद्भुत है कि जो स्वयं ब्रह्म है वो आज ब्रह्म ज्ञान के लिए गुरु के समक्ष प्रार्थना कर रहा है या अपने चित्त की बात प्रकट कर रहा है। सोचिए ये भारतीय ज्ञान परंपरा में कितना दुर्लभ विषय है कि इन विषयों को हमारे ऋषियों ने हमारे समक्ष रखा है, उसके बाद भी हम मानसिक रोग, बेचैनी और तमाम चीजों के शिकार जो होते हैं, वो इस नाते कि हम अपनी जड़ों से कट रहे हैं, अगर जड़ों से जुड़े तो निश्चित ही संसार का कोई भी विषय हमारे चित्त को विचलित नहीं कर सकता। वो हमारे जीवन की सार्थकता पर कभी प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता, क्योंकि जीवन की सार्थकता प्रकट होती है वैराग्य से। वैराग्य के प्रकाश में जीवन की सार्थकता प्रकट होती है, न कि जीवन की व्यर्थता।
1: जी जी, अच्छा, यही चर्चा जब आगे बढ़ती है तो इसमें वासनाओं की भी चर्चा है, तो संसार की जो वासनाएं हैं वो नष्ट कैसे होती हैं?
2: संसार की वासनाओं को नष्ट करने के लिए वैराग्य की वासनाएं नष्ट कर सकती हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को इस बात में थोड़ी समझने में परेशानी हो सकती है कि संसार अगर एक वासना है तो क्या वैराग्य भी वासना है? अब यहाँ वैराग्य को इस अर्थ में लीजिए कि जैसे कोई कांटा चुभ जाए, तो चुभे हुए कांटे की चुभन के कष्ट से बचने के लिए आपको फिर से एक कांटा चुभा करके उस कांटे को निकालना पड़ता है। तो संसार की जो वासना है ये कभी समाप्त नहीं होती, और इसीलिए संसार की वासना को समाप्त करने के लिए वैराग्य की वासना भी निरंतर बनी होनी चाहिए। वासना का मतलब यह हुआ कि वैराग्य की दृष्टि निरंतर हो, यानी वो अवेयरनेस की दृष्टि, जिसको आप माइंडफुलनेस भी कह सकते हैं, जागरूक दृष्टि कह सकते हैं, ध्यान से युक्त दृष्टि कह सकते हैं, कि संसार को ध्यान पूर्वक देखना। क्योंकि राम जी ने संसार को ध्यान पूर्वक ही देखा है, तभी उनके अंदर वैराग्य प्रकट हुआ है। क्योंकि हम लोग ध्यान पूर्वक संसार नहीं देखते, इसलिए हम राग द्वेषात्मक दृष्टि रखते हैं संसार में। राम जी की दृष्टि राग द्वेषात्मक नहीं है, इसलिए हमेशा हमें से याद रखना चाहिए कि वैराग्य राग से उत्पन्न होने वाली कोई क्रिया नहीं है। वैराग्य सत्य को जान लेने के बाद उत्पन्न होने वाली एक ऐसी जिज्ञासा है जो जीवन की सार्थकता को खोज रही है।
1: जी जी, बिल्कुल जी। बिल्कुल, अच्छा, इसी प्रकरण में भगवान श्री राम को वीतरागी कहा गया
2: जी।
1: तो मैं चाहती हूँ कि जो हमारे सुनने वाले हैं उन्हें आप बताएं कि वीतरागी का क्या अर्थ है, और वैरागी और वीतरागी में कोई अंतर है क्या?
2: वीतराग का मतलब होता है कि जिसका राग बीत गया हो, समाप्त हो चुका हो, और उसके बाद वो संसार के सत्य को उद्घाटित करने के लिए जिज्ञासु हुआ है, ये वीतराग की स्थिति है। और एक व्यक्ति जिसके राग का संसार में विरोध हुआ हो, या संसार जिसके राग को तृप्त करने में असमर्थ रहा हो, तो उसके अंदर संसार से वैराग्य हो गया, तो ये वैराग्य नहीं है। ये वैराग्य जो है राग से ड्रिवन है, ये राग की प्रतिक्रिया है।
1: जी जी।
2: लेकिन राम जी का वैराग्य राग की प्रतिक्रिया नहीं है, इसलिए राम जी वीतरागी हैं। इसलिए कहा गया है कि वासनाएं जो है संसार की, वो वैराग्य की वासना से नष्ट हो गई है राम जी की। सब लोग दो घड़ी के लिए मानो अमृतमय समुद्र की तरंगों में डूबने उतराने लगे राम जी के वीतरागी स्थिति को देखने के बाद। वहां जितने भी ऋषि मनीषी थे वो सब जो है ऐसे डूबने उतराने लगे राम जी की बातें में। जिन लोगों ने सुनी वे निश्चलता के कारण चित्रलिखित से प्रतीत होते थे, ऐसा लगता था जैसे कोई चित्र बन गया हो। क्योंकि राम जी के इस वैराग्य की दशा को सुनने के बाद सारे लोगों के चित्त में एक अलग तरह की स्थिरता, जिसे चित्र लिखित जो कह रहे हैं कि जैसे चित्र के द्वारा कोई चीज लिख दी जाए, अन्यथा वो बिल्कुल निश्चल भाव में सब के सब स्तब्ध रह गए। तो ऐसी स्थिति थी, इसलिए राम जी को वीतरागी कहा गया। क्योंकि वीतरागी वो होता है जिसके अंदर राग नहीं है
1: जी।
2: और संसार में राम जी ने राग से कर्म करते हुए लोगों को देखा, तो दुखी पाया, तो ऐसे में राम जी ने राग का त्याग पहले कर दिया। यानी कर्म करके जो फल में राग होता है वो राग राम जी को नहीं है। इसीलिए आप देखें तो गीता में जो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन भगवान कृष्ण कहते हैं, उस स्थिति में राम जी खड़े हैं। वहां कोई फल की कामना नहीं है, बस एक जिज्ञासा है कि ऐसे कर्म का क्या अर्थ, जो कर्म अंततः दुख ही देता है। तो ऐसे में राग से युक्त कर्म व्यक्ति को कभी सुखी नहीं कर सकता।
1: नहीं कर सकता। प्रज्ञा की बहुत बात होती है, तो मैं चाहती हूँ कि आप ये बताएं कि हृदय को प्रकाशित करने वाली जो प्रज्ञा है वो कैसी होती है?
2: हृदय को प्रकाशित करने वाली जो प्रज्ञा है वो प्रज्ञा ऐसी प्रज्ञा नहीं होती जो सामान्य तौर पर देह भाव से युक्त होकर के व्यक्ति जिज्ञासा रखता है और उसको जो जान लेता है वो समझता है ये मेरी प्रज्ञा है। यहाँ पर कहते हैं वशिष्ठ जी कि राजकुमार, आपके सिवा दूसरा कौन है जिसकी वाण के समान सूक्ष्म अर्थ का भेदन करने वाली कुशाग्र बुद्धि रूपिणी लता विवेक रूपी फल से सुशोभित हो विचार वैराग्य रूपी उत्तम विकास को प्राप्त हो रही है। श्री राम की भांति जिसके हृदय में अनुपम प्रकाश फैलाने वाली प्रज्ञा रूपिणी दीप शिखा प्रज्वलित हो रही हो वही श्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है। अब राम जी यहाँ उस श्रेष्ठ पुरुष से उनकी तुलना की जा रही है जिनकी जो प्रज्ञा हृदय को प्रकाशित करती है। हृदय देखिए, हृदय भाव का स्थान है
1: जी।
2: और सामान्य तौर पर हम हृदय को छोड़ करके अगर बुद्धिपूर्वक किसी विषय को जानना चाहते हैं तो वो हमारी बुद्धि का विकास तो हो सकता है, लेकिन कभी भी भाव प्रधान हम नहीं हो सकते। और भाव प्रधान हुए बिना आप जो विश्व में एकात्मता का बोध है उसको आप ऐसे ज्ञान पूर्वक नहीं जान सकते। इसीलिए जो आपने शुरू में कहा है ना कि सुखदेव जी का वृतांत,
1: जी जी,
2: राम जी को ये वैराग्य हो गया है लेकिन इस वैराग्य के बाद भी राम जी को शांति नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि वो अभी प्रज्ञा जो है वो संसार को देख करके उत्पन्न हुई है, अभी हृदय को प्रकाशित नहीं कर पा रही
1: जी,
2: है
1: जी, जी,
2: यानी
1: जी।
2: अभी वो भाव उत्पन्न नहीं हो पा रहा है जिस भाव के द्वारा चित्त शांत होता है। इसके लिए फिर गुरु की सन्निधि आवश्यक है।
1: हाँ।
2: और यहाँ पर गुरु की सन्निधि को हम कहना चाहेंगे कि गुरु की सन्निधि हाड़ मांस के शरीर के रूप में नहीं, क्योंकि कहा जाता है, इसी में ग्रंथ में कहा गया है कि जिन मनुष्यों में ऐसी प्रज्ञा है वे मनुष्य देह में रक्त मांस हड्डियों के यंत्र रूपी देह में ही आत्मबुद्धि रखते हैं। तो ऐसी आत्मबुद्धि रख करके अगर आपने किसी गुरु के समक्ष अपना समर्पण किया है या देह में ही देहात्म भाव रखने वाले व्यक्ति को गुरु मान लिया है तो उससे प्राप्त प्रज्ञा कभी भी हृदय को प्रकाशित नहीं करेगी। हृदय को प्रकाशित करने वाली जो प्रज्ञा है वो सुखदेव जी जैसी होगी, राम जी जैसी होगी। इसीलिए राम जी को कहा गया कि राम जी बीतरागी हैं, क्योंकि राम जी की तुलना बृहस्पति से भी नहीं की गई है। कहते हैं कि बृहस्पति भी यद्यपि देवताओं के गुरु हैं लेकिन उनकी जो प्रज्ञा है वो भी राम जैसी प्रज्ञा नहीं है, क्योंकि राम जी की प्रज्ञा बीतरागी की प्रज्ञा है और बीतरागी की प्रज्ञा हृदय को प्रकाशित कर सकती है।
1: अच्छा, इसमें राम जी को तत्वदर्शी कहा है
2: जी।
1: तो मेरे मन में ये जिज्ञासा थी कि आप हमारे सुनने वालों को ये बताएं कि जो तत्वदर्शन करने वाला पुरुष होता है वो कैसा होता है, क्या लक्षण होते हैं उसके?
2: तत्वदर्शी लोग होते हैं वो तत्व चिंतन में तत्पर रहते हैं और विवेक के द्वारा आत्मज्ञान या परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप सार पदार्थ के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। वे ही सुयस के भंडार, सत्पुरुषों में अग्रगण्य, धन्य एवं समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। मतलब ये जो कहा गया कि सुयस उन्हीं के पास है, सत्पुरुषों में अग्रगण्य हैं, धन्य हैं वे लोग जिन लोगों में तत्व चिंतन की प्रवृत्ति विकसित हुई है। इसलिए राम जी को धन्य कहते हुए कह रहे हैं महर्षि कि राम जी से तत्व दर्शन रूपी चमत्कार का आविर्भाव देखा गया है, तो इसलिए राम जी तत्वदर्शी हैं। और तीनों लोकों में रामचंद्र जी के समान विवेकशील तथा उदार चरित पुरुष न तो अब तक कोई देखा गया है और न ही भविष्य में कोई होगा, ऐसी हमारी मान्यता है, ऐसा कह रहे हैं वाल्मीकि जी भरद्वाज से
1: जी। अच्छा, हमने सुखदेव जी के वृत्तांत की चर्चा की
2: जी,
1: तो विश्वामित्र जी ने राम जी से क्या कहा? इस कथा के विषय में हमारे जो सुनने वाले हैं जरूर उत्सुक होंगे, तो मैं चाहती हूँ कि वो वृत्तांत भी आप बताएं।
2: विश्वामित्र जी ने अपने सामने बैठे हुए श्री राम जी से प्रेम पूर्वक कहा। देखिए, मैंने कहा कि हृदय की प्रज्ञा प्रेम की प्रज्ञा
1: जी, जी, जी।
2: कहते हैं ना, कवि साहब ने इसके लिए कहा भी गया कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो जो ढाई आखर ये प्रेम का है ये हृदय की प्रज्ञा से प्रस्फुटित होता है, न कि पोथी पढ़ने से। तो प्रेम का कोई ग्रंथ नहीं होता है, ग्रंथ से तो ग्रंथी बनती है और प्रेम से ग्रंथ भेदन होता है। तो इसलिए जो हृदय की प्रज्ञा है वो ग्रंथ भेदन की प्रज्ञा है। और हमारे यहाँ कहा भी जाता है, हम लोग कहते भी हैं कि प्रेम अनकंडीशनल हो, तो अनकंडीशनल कब माइंड होगा आपका? वो तो हृदय ही अनकंडीशनल हो सकता है जी। तो इसलिए हृदय की प्रज्ञा जो है वो अनकंडीशनल लव की बात करती है। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ रघुनंदन, तुम्हारे लिए कुछ और जानना शेष नहीं है। तुम अपनी ही सूक्ष्म बुद्धि से सब कुछ जान चुके हो। तुम्हारी बुद्धि भगवान व्यास के पुत्र सुखदेव की सी है। अब
1: अच्छा,
2: देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर आता है सुखदेव का वृतांत। वो कहते हैं कि राम तुम्हारी जो बुद्धि है ये व्यास नंदन सुखदेव जैसी है। और ऐसे ही जैसे तुमको बीतराग से जो हृदय को प्रकाशित करने वाली जो प्रज्ञा है ये उत्पन्न हुई है, ऐसे ही सुखदेव भी बीतरागी अवतारी पुरुष हैं, देव भगवान का अवतार ही हैं। तो कहते हैं कि श्री राम मैं तुमसे व्यास पुत्र सुखदेव का यह वृतांत कह रहा हूं जो तुम्हें सुनना चाहिए। और उसको सुनने के बाद मनुष्यों के जन्म मरण संसार से मोक्ष प्राप्त हो जाता है, जन्म मरण के संसार का कारण समाप्त हो जाता है। तो वो सुनाते हैं, वो कहते हैं कि सुखदेव जी को तुम्हारे ही जैसा एक बार वैराग्य हुआ,
1: तो ये वृतांत उन्होंने शुरू किया
2: जी। तो उन्होंने ये कहना शुरू किया कि उस समय उनके हृदय में तुम्हारी ही तरह विवेक का उदय हुआ। उस महामना सुखदेव ने अपने विवेक से स्वयं ही चिरकाल तक विचार करके जो परम मनोहर परमार्थ सत्य वस्तु है उसे प्राप्त कर लिया। उसे प्राप्त कर के भी उनके हृदय में यही यथार्थ वस्तु है ऐसा पूर्ण विश्वास नहीं हुआ। इसलिए उस परम वस्तु के स्वतः प्राप्त हो जाने पर भी उनके मन को शांति नहीं मिली। अब देखिए कितनी सुंदर बात है कि उन्होंने अपने विवेक से उस परम तत्व को जाना, तत्व चिंतन करके, लेकिन वो तत्व चिंतन उन्हें शांति नहीं दे रहा है। तो शांति नहीं दे रहा है तो मन जब शांत नहीं होगा तो मन चंचल भी होगा। उनके चित्त की चंचलता तो दूर हुई लेकिन एक मन में जो अशांति थी वो बनी रही।
1: तो ये जो विवेक से उत्पन्न ज्ञान है ये मन को शांत क्यों नहीं होने देता है?
2: आपने सुंदर कहा, ये इसलिए नहीं होने देता क्योंकि देखिए मन का स्वभाव जो है वो है विचलन का, चंचलता। अब ऐसा यहाँ पर ये भी सोच सकते हैं कि चंचल मन कैसे उस तत्व को चिंतन करने में समर्थ हो गया। समर्थ हो भी गया, जान भी गया, तो उस पर वो टिकेगा नहीं। क्योंकि इसलिए नहीं टिकेगा कि उस पर उसको भरोसा नहीं है। तो फिर इसीलिए बहुत सारा आप देखते होंगे ज्ञान सबके पास है, तत्व चिंतन, तत्व ज्ञान सबके पास है। जैसे हर जन्म लेने वाला आदमी जानता है कि मृत्यु सुनिश्चित है, लेकिन बावजूद इसके वो मृत्यु से डरता है। पूरे जीवन सारे उपागम करता है कि मृत्यु ना होने पाए, जबकि मृत्यु के करीब वो जा रहा है, मृत्यु उसके करीब आ रही है। ये सच है, ये तत्व सभी जानते हैं। लेकिन इस तत्व को जानने के बाद भी पूरे जन्म जिस चीज के लिए पुरुषार्थ होता है, क्या वो मृत्यु के साक्षात्कार के लिए होता है, मृत्यु से बचने के लिए होता है? तो ऐसे में यहाँ पर एक प्रतीक के रूप में, यद्यपि ये लोग बीतरागी हैं, इनको हम आम लोगों की तरह नहीं ले सकते, लेकिन हमारे श्रोता कहीं सुनते हुए भटक ना जाएं, इसलिए मैं इस पर प्रकाश डालना चाहूंगा कि ये एक वृतांत के तौर पर कहा गया कि उन्होंने अपने विवेक से बीतरागी भाव को उत्पन्न करने के बाद भी उस परम तत्व को जानने के बाद वो शांत नहीं रह पाए। तो जब शांत नहीं रह पाए तो फिर वो अपने पिता के पास गए और पिता से अपनी सारी बात कही उन्होंने कि ऐसी ऐसी मेरी स्थिति है, और जाकर के अपने पिता मुनिवर कृष्ण द्वैपायन व्यास से भक्ति भाव से उन्होंने पूछा कि मुने यह संसार रूपी आडंबर कैसे उत्पन्न हुआ है। अच्छा। यही राम जी के भी सवाल जी, है जी, देख रहे होंगे कि यहाँ पर लोग कर्म कर रहे हैं। फिर कहते हैं कैसे उत्पन्न हुआ है, कैसे इसकी शांति या नाश होता है, यह कितना बड़ा है, किसका है और कब तक रहेगा। पुत्र के इस प्रकार के प्रश्न करने पर मुनिवर ने उनसे कहा कि पुत्र, भूतल पर जनक के नाम से प्रसिद्ध एक राजा हैं, जो जानने योग्य तत्व यानी सच्चिदानंद घन परमात्मा को यथार्थ रूप से जानते हैं। अच्छा, अब देखिए कितनी बड़ी बात है ये। कहते हैं कि उनसे तुम्हें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, उनके पास जाओ। अब पिता यहाँ उपदेश नहीं कर रहा है। हाँ। जबकि आमतौर पर जो सवाल हुआ, पिता उन सारे प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है। लेकिन पिता को ये पता है कि मेरे उत्तर से इसके चित्त में वैसे ही अशांति बनी रहेगी जैसे इसने अपने विवेक से जान लेने के बाद भी ये शांति को उपलब्ध नहीं हुआ।
1: तो
2: ये
1: पिता की ऐसा क्यों है?
2: हाँ, ऐसा बता रहा हूँ, इस कथा कहने पड़ेगी तब क्लियर होगा ये। तो ये जाते हैं जनक जी के पास। जनक जी के पास जब ये जाते हैं तो जनक जी के द्वारपाल आके कहते हैं कि कृष्ण द्वैपायन के पुत्र सुखदेव जी आए हुए हैं मिलने के लिए। तो उन्होंने बिना किसी भाव के, बिना अपने चेहरे पर कोई भाव आए, उन्होंने उसके प्रति अटेंशन ही नहीं दिया और वो एकदम शांत निस्तब्ध रहे और 7 दिन तक उनसे बात नहीं की। और सुखदेव जी जैसे बीतरागी संत जो अपने विवेक से तत्व ज्ञान को जान चुके हैं, उनके आने की खबर मिलने के बाद जनक के चित्त में किसी भी प्रकार का आंदोलन नहीं हो रहा है। ये देखिए दृष्टि है ना। जबकि जनक जैसा बीतरागी, क्योंकि जनक और सुखदेव का मिलना कोई सामान्य घटना नहीं है, आदमी तड़प जाए ऐसे जिज्ञासु को पाकर, लेकिन ऐसे जिज्ञासु को पाकर वो अपने चित्त की स्थिरता को बनाए हुए हैं। अब जब 7 दिन सुखदेव जी के प्रति कोई संज्ञान नहीं लिया गया तो सुखदेव जी के भी चित्त में कोई विचलन नहीं हुआ। अच्छा। ये देखिए संवाद ये है जी, ये जी, बातों जी, का संवाद नहीं जी, है जी, जी, ये जी, बिल्कुल तरंगों का संवाद है। हाँ। इनके भी चित्त में, जबकि सोचना चाहिए कि यार मैं परम ज्ञानी हूँ,
1: निर्माण है।
2: व्यास का मैं पुत्र हूँ, वो व्यास जो मतलब ज्ञान का साक्षात कहते हैं मूर्तिमान प्रतिरूप है। फिर उसके बाद 7 दिन बाद उन्हें वो अपने बुलाते हैं आंगन में।
1: अच्छा, तो सुखदेव जी को
2: जनक जी बुलाते हैं जी। और 7 दिन बाद आंगन में बुलाने के बाद भी उन्होंने कोई संवाद नहीं किया।
1: अच्छा तो क्या किया?
2: एकदम बिल्कुल दोनों मिलते थे लेकिन कोई संवाद नहीं होता था। वो एक तरह से ये प्रयास था कि चित्त के विचलन को देखा जाए,
1: देखा क्या जाए
2: सुखदेव की ये पात्रता है इस ज्ञान को पचा लेने की। ज्ञान को पा लेना द्रुह नहीं है, क्योंकि हर मनुष्य में ये पात्रता है कि वो तत्वज्ञ हो सके, तत्व चिंतक हो सके। इसीलिए देवताओं ने, गोस्वामी जी ने कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। यानी देवताओं को भी दुर्लभ है मनुष्य का तन। तो ये मनुष्य का तन मिला है तत्व चिंतन के लिए, और तत्व चिंतन का सामर्थ्य हर मनुष्य में है, लेकिन उस सामर्थ्य से उसे शांति नहीं मिलती। और जब आंगन में बुलाने के बाद भी उन्होंने उनसे बात नहीं की, तो फिर 7 दिन बाद उनको अंतःपुर में बुलाया, अपने अंतःपुर में। अब देखिए, अंतःपुर में बुलाया, और अंतःपुर में बुलाने के बाद उन्होंने उनकी खूब परीक्षा ली इस तरीके से
1: जनक जी ने
2: कि देखें कि मतलब इनको क्या, इनके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है। और उनके इस उपेक्षा जनित व्यवहार से व्यास पुत्र के मन में कोई विचलन पैदा नहीं हुआ। वो पूर्ण चंद्रमा के समान निर्विकार, भोग और अनादर में भी समान स्वस्थ और मौन तथा प्रसन्न चित्त बने रहे।
1: जी।
2: अब देखिए, जिस ज्ञान को पा लेने के बाद उनके चित्त को शांति नहीं हुई, यहाँ कोई ज्ञान नहीं दिया जा रहा है, चित्त की शांति का जो संवाद है उस संवाद ने उनके चित्त को विचलित नहीं किया, चित्त शांत बना रहा। ये है गुरु का सानिध्य।
1: जी, जी, जी,
2: जो आमतौर पर लोग सोचते हैं गुरु कोई ज्ञान देगा, गुरु की उपस्थिति पर्याप्त है। गुरु की उपस्थिति से, जैसे कहते हैं ना, चुंबक है उसमें ऐसी क्षमता है, वो भी लोहा है, लेकिन लोहा बरबस खींचा चला जाता है। तो गुरु का प्रेजेंस अगर आपको खींचने न लगे तो समझिए कि ये गुरुत्व नहीं है। गुरुत्व एक आकर्षण है जो खींचता है। धरती में ये सामर्थ्य है कि वो धरती पर रहने वाली हर चीज को अपने पास, अपने करीब खींचती है। यही तो गुरुत्वाकर्षण है।
1: जी,
2: तो ये गुरु का, ये गुरुत्व, इसीलिए गुरुत्वाकर्षण शब्द नाम दिया गया।
1: जी, जी।
2: ये आकर्षण है गुरु का। फिर सुखदेव जी ने कहा, महाराज मैं जानना चाहता हूं कि संसार रूपी आडंबर कैसे उत्पन्न हुआ है और इसकी शांति या विनाश कैसे हो। आप शीघ्र ही मुझे इस विषय में यथावत रूप से प्रतिपादित करें। विश्वामित्र जी कहते हैं कि महाराज इस प्रकार पूछे जाने पर जनक ने सुखदेव को उस समय वही बात बताई जो पहले उनके महात्मा पिता व्यास के द्वारा बताई गई थी। लेकिन व्यास के द्वारा बताए जाने पर उनको शांति नहीं,
1: नहीं मिली थी।
2: और व्यास ने भी वही बताई जो सुखदेव जी द्वारा अपने विवेक से जाना गया, तो उससे भी उनको शांति नहीं मिली। अब देखिए कितना सुंदर चित्रण है कि आप अपने चैतन्य से, अपने विवेक से भी उस ज्ञान को जान ले तो भी आपको अगर शांति नहीं मिल रही है, इसका अर्थ है कि वो ज्ञान अभी परिपक्व नहीं हुआ है। तो वो परिपक्व नहीं हुआ तो किसी परिपक्व के पास जाकर के ही उस ज्ञान से आप उसकी परिपक्वता को अनुभव कर सकेंगे।
1: जी, जी,
2: और यहाँ पर सुखदेव जी के चित्त में कोई विचलन नहीं आया जनक जी के व्यवहार से, जबकि जनक जी का व्यवहार पूरा विचलित कर देने के लिए पर्याप्त है।
1: जी,
2: देखें
1: जी,
2: तो 7 दिन तक दरवाजे पर वो खड़े हैं और उनसे वो कोई बात नहीं कर रहे हैं। अपने आंगन में बुलाते हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं। तब सुखदेव जी ने कहा, वक्ताओं में श्रेष्ठ महाराज, मैंने पहले विवेक से स्वयं ही यह बात जान ली थी जो आपने कही है
1: जी।
2: और फिर पिताजी ने इसके विषय में पूछा तो उन्होंने भी यही बात कही। इन महावाक्यों को जान लेने के बाद भी मेरे चित्त में शांति नहीं हुई
1: जी।
2: यह विनाशशील संसार अपने संकल्प से उत्पन्न हुआ है और संकल्प का अत्यंतिक विनाश होने से नष्ट हो जाता है, यही शास्त्रों का भी निश्चय है, यही बात आप भी कह रहे हैं
1: जी।
2: तो क्या यही अविचल सत्य है? यदि हाँ, तो इसका इस तरह उपदेश कीजिए जिससे यह मेरे हृदय में अचल असंदिग्ध रूप से बैठ जाए। संसार के विषयों में भटकते हुए चित्त के द्वारा इधर उधर भटकाया जाता हुआ मैं आज आपसे शांति लाभ प्राप्त करना चाहता हूं। अब ये जो बात अभी हम लोग कर रहे थे, यही बात सुखदेव जी कह रहे हैं कि मैं उसके बाद भी ये जान लेने के बाद, पिता से जान लेने के बाद, शास्त्र

0: महावीर हैं। विषय भोगों को त्यागना वीर है, विषय भोगों का भोग वीरता नहीं है। ये है भारतीय ज्ञान परंपरा का दर्शन।
1: जी, जी, जी।
0: हम लोग क्या समझते हैं, जैसे ही हमारे पास शक्ति आती है हम विषय के भोगों के प्रति टूट पड़ते हैं। कितनी बड़ी बात है, कि कितनी बड़ी मूर्खता है कि हम एक प्रकार से उन भोगों के विष का पान करके अमरत्व को प्राप्त करने की आकांक्षा ले बैठे हैं।
1: जी जी जी।
0: कोई व्यक्ति कह सकते हैं कि मतलब मरण धर्मा चीजों का चिंतन करे और स्वर्ग की आकांक्षा करे या अमरता के ख्याल पाल
1: जी,
0: रखे
1: जी, जी,
0: है ना। हाँ। जो मृत्यु और माम मृतम गमय की बात करते हैं। हाँ। तो आप जरा विचार करके देखिए कि मनुष्य पूरे जीवन मरण धर्मा चीजों का ही तो चिंतन करता है, और हम कहते हैं विषयों को आप मरण धर्मा न भी माने, आप तो मरण धर्म है, आपके शरीर का तो मृत्यु होना ही है, आप जानते हैं। तो शरीर से शरीर के विषयों का चिंतन करना और फिर अमृत का आकांक्षा करना कितनी बड़ी मूर्ता है ये, जिसको लेके हम जो अपने उपनिषद के ऋषि कहते हैं मृत्यु और माम मृतम गमय, कि मृत्यु से अमृत की यात्रा होनी चाहिए। तो ऐसा उन्होंने कहा, ब्राह्मण जो प्राप्त करने योग्य वस्तु है उसे पूर्ण रूप से आपने पा लिया है, आपका चित्त पूर्ण काम हो गया है, आप दृश्य वस्तु की ओर दृष्टपात नहीं करते हैं, अतः मुक्त हैं। अब देखिए मुक्ति की परिभाषा क्या है, दृष्ट वस्तु की तरफ दृष्टपात न करना। और हम लोगों का क्या है, दृष्ट वस्तु की तरफ ही दृष्टपात करने में पूरा जीवन लगाते हैं।
1: जी, जी,
0: है ना। हाँ। यहां तक कि अदृश्य को भी दृष्ट करने की कोशिश करते हैं, उसका भी एक रूप बना लिया हम लोगों ने।
1: जी।
0: अभी और कुछ पाना और जानना शेष रह गया है, इस भ्रम को त्याग दो। अब देखिए ये बड़ी बात उन्होंने कह दी, कहा कि ये आपने जान लिया कि परम पुरुष परमात्मा के अतिरिक्त तो दूसरा कुछ भी नहीं है, और जो भी इसके सिवाय और कुछ जानने योग्य नहीं है, और कुछ जानने योग्य है तो इस भ्रम को त्याग दो, ये भ्रम है और कुछ नहीं है, ये संसार का भ्रम है। इस पर विश्वामित्र जी कहते हैं कि श्री राम महात्मा जनक के द्वारा इस प्रकार उपदेश पाकर सुखदेव जी अत्यंत शुद्ध परम वस्तु परमात्मा में चुपचाप स्थित हो गए। यही है मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, ये व्यवहार बताया, मुमुक्षु का व्यवहार कैसा होगा, है ना। वे सर्वथा निरीह और संशय रहित हो गए। तदनंतर वे मेरुगिर के प्रशस्त शिखर पर समाधि लगाने के लिए चले गए, वहां 10,000 वर्षों तक निर्विकल्प समाधि में स्थित रहे।
1: सुखदेव जी।
0: तो कहते हैं कि ये जो मुमुक्षु व्यवहार है, अब देखिए कितना सुंदर प्रकरण है ये। पहले तो वैराग्य प्रकरण, ऐसा वैराग्य नहीं जो संसार के रागादि दोषों से उत्पन्न हुआ है, है ना, वो वीतराग से उत्पन्न वैराग्य एक बात, और दूसरी बात उस वैराग्य के बाद जो राम जी जब चुप होते हैं तो उसके बाद मुमुक्षु व्यवहार सुनाया जाता है उनको, कि मुमुक्षुओं का व्यवहार क्या है। ऐसे ही एक मुमुक्षु सुखदेव का वृतांत जो है सुनाया गया विश्वामित्र जी के द्वारा राम जी को।
1: बहुत ही सुंदर
0: जी।
1: तो शशिकांत जी, बहुत ही सुंदर आज की चर्चा रही, आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए, आपका हम हृदय से आभार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज हमने चर्चा की मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण पर। उम्मीद है आज का ये विषय आप तक बहुत सहज होकर पहुंचा होगा और पसंद आया होगा। चलते चलते आपको हम बता दें कि हमारे बीच विशेषज्ञ के तौर पर उपस्थित थे योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना आदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपसे बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें, नमस्कार। आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत विभूति।
2: नमस्कार श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद के कार्यक्रम भारत विभूति में आपका स्वागत है। भारत की महान परंपरा केवल राजाओं, योद्धाओं और संतों की परंपरा नहीं है, ये उन शिक्षकों, विचारकों और ज्ञान पुरुषों की भी परंपरा है जिन्होंने राष्ट्र की आत्मा को गढ़ा है। आज हम ऐसे ही एक महापुरुष की जीवन यात्रा पर चलेंगे जिन्होंने आधुनिक भारत की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा दी, गणित के क्षेत्र में विश्व स्तर पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया और भारतीय युवाओं में आत्मविश्वास जगाने का भी काम किया। आज की हमारी विभूति है सर आशुतोष मुखर्जी।
3: जब भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था तब बहुत से भारतीयों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया जाता था कि ज्ञान, विज्ञान और शोध केवल पश्चिम की देन है। लेकिन उसी समय भारत की धरती पर एक ऐसा व्यक्तित्व खड़ा हुआ जिसने अपनी प्रतिभा और परिश्रम से यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय बुद्धिमत्ता किसी से कम नहीं है। वह व्यक्ति था आशुतोष मुखर्जी, एक गणितज्ञ, एक न्यायविद, एक शिक्षाविद और सबसे बढ़कर एक राष्ट्र निर्माता।
2: 29 जून 1864, कलकत्ता का भवानीपुर क्षेत्र, एक प्रतिष्ठित परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। पिता थे डॉक्टर गंगा प्रसाद मुखर्जी, वो अपने समय के जाने माने चिकित्सकों में गिने जाते थे। माता जगत तारिणी देवी संस्कार, धर्म और भारतीय जीवन मूल्यों की प्रतीक थीं। घर में विद्या, संस्कृति और अनुशासन का वातावरण था और यहीं से प्रारंभ हुई उस बालक की यात्रा जो आगे चलकर भारतीय शिक्षा जगत का एक युग पुरुष बनने वाला था।
3: बचपन से ही आशुतोष असाधारण प्रतिभा के धनी थे। कहा जाता है कि वे किसी भी विषय को केवल पढ़ते नहीं थे, उसे समझते थे। और केवल समझते ही नहीं थे, उसके भीतर छिपे तर्क को खोजने का प्रयास करते थे। शायद यही कारण था कि गणित उन्हें विशेष रूप से आकर्षित करता था। संख्याएं उनके लिए केवल गणना का साधन नहीं थी, वे उनके लिए चिंतन का माध्यम थी।
2: उनकी प्रारंभिक शिक्षा चक्रबेड़िया स्थित साउथ सबर्बन स्कूल में हुई। विद्यालय के दिनों में ही उनकी प्रतिभा सबका ध्यान आकर्षित करने लगी थी। शिक्षक समझ चुके थे कि यह बालक साधारण नहीं है, उनके भीतर कुछ तो विशेष है, कुछ ऐसा जो उसे आने वाले समय में अति विशिष्ट बनाएगा।
3: सन 1879, आयु मात्र 15 वर्ष, कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा और परिणाम आया। आशुतोष मुखर्जी ने पूरे विश्वविद्यालय में दूसरा स्थान प्राप्त किया। उस समय यह उपलब्धि असाधारण मानी जाती थी। यह सफलता केवल एक विद्यार्थी की नहीं थी, यह भारतीय प्रतिभा की बड़ी पहली घोषणा थी।
2: और इसके बाद उन्होंने कलकत्ता के प्रतिष्ठित प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। यह वही संस्थान था जहां उस समय भारत के कई प्रतिभाशाली युवा शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। यहीं उनकी मुलाकात दो महान व्यक्तित्वों से हुई, एक थे वैज्ञानिक प्रफुल्ल चंद्र राय और दूसरे थे नरेंद्र नाथ दत्त। वही नरेंद्र नाथ दत्त जिन्हें दुनिया बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से जानने लगी।
3: जरा कल्पना कीजिए उस वातावरण की, एक ओर विज्ञान का उजाला, दूसरी ओर आध्यात्मिक चिंतन, एक ओर आधुनिकता और दूसरी ओर भारतीय संस्कृति की गहराई। इन सब के बीच अध्ययन कर रहे थे आशुतोष मुखर्जी। यह वातावरण उनके व्यक्तित्व को और व्यापक बनाता चला गया।
2: सन 1883 में उन्होंने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उन्हें प्रतिष्ठित प्रेमचंद रायचंद छात्रवृत्ति प्रदान की गई। यह उस समय की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित शैक्षणिक उपलब्धियों में से एक मानी जाती थी। लेकिन आशुतोष मुखर्जी के लिए ये केवल एक पड़ाव मात्र था, उनकी यात्रा अभी बहुत आगे तक जाने वाली थी।
3: गणित में उनकी रुचि लगातार बढ़ती जा रही थी। उन्होंने गणित में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की और इसके बाद भौतिक विज्ञान में भी स्नातकोत्तर किया। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के इतिहास में पहले ऐसे विद्यार्थी बने जिन्होंने दो अलग अलग विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त की। आज भी यह उपलब्धि अत्यंत प्रेरणादायक मानी जाती है।
2: लेकिन एक और खास बात थी, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ वो लगातार शोध कार्यों में भी लगे हुए थे। जब अधिकांश विद्यार्थी केवल परीक्षाओं की तैयारी करते, तब आशुतोष मुखर्जी नए गणितीय प्रश्नों के समाधान खोज रहे थे। वो विश्व के प्रसिद्ध गणितज्ञों द्वारा प्रकाशित शोध पत्रों को पढ़ा करते, उनके प्रश्नों पर विचार करते और अपने समाधान भी तैयार करते।
3: सन 1880 के दशक का भारत, जहां शोध के अवसर सीमित थे, वैज्ञानिक संसाधन कम थे, फिर भी एक युवा भारतीय गणितज्ञ विश्व के प्रतिष्ठित गणितीय मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा था, और यह किसी चमत्कार से कम नहीं था।
2: 1881 में उन्होंने यूक्लिड के प्रसिद्ध ज्यामितीय संरचना से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रमेय का नया प्रमाण प्रस्तुत किया। ये शोध इंग्लैंड की प्रसिद्ध गणितीय पत्रिका मैसेंजर ऑफ मैथमेटिक में प्रकाशित हुआ। उस समय किसी भी भारतीय विद्वान के लिए यह अत्यंत गौरव की बात थी।
3: इसके बाद उन्होंने सलमोन के प्रमेय पर महत्वपूर्ण कार्य किया, एलिप्टिक फंक्शंस पर शोध किया, डिफरेंशियल समीकरणों पर लेख लिखे, ज्यामिति और कलन के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण योगदान दिए। उनके शोधपत्र इंग्लैंड और भारत की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगे और धीरे धीरे उनका नाम अंतर्राष्ट्रीय गणितीय समुदाय में पहचाना जाने लगा।
2: श्रोताओं, कहा जाता है कि गणित उनके लिए केवल एक विषय नहीं था, वो उनके सोचने का एक तरीका था। वो हर समस्या को तर्क और विश्लेषण की दृष्टि से देखते थे, और शायद यही वजह थी कि बाद में जब वो शिक्षा और प्रशासन के क्षेत्र में आए, तब भी उनकी निर्णय क्षमता अत्यंत साफ और व्यवस्थित रही।
3: 1888 तक आते आते वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के फेलो चुने गए। उस समय उनकी आयु केवल 24 वर्ष थी। यह सम्मान किसी साधारण व्यक्ति को नहीं मिलता था। यह उस प्रतिभा की सार्वजनिक स्वीकृति थी जिसे पूरा शैक्षणिक जगत पहचान चुका था।
2: लेकिन यहाँ एक और प्रश्न उठता है कि अगर आशुतोष मुखर्जी इतने बड़े गणितज्ञ थे, तो उन्होंने अपना पूरा जीवन केवल गणित को क्यों नहीं समर्पित किया? वो विश्व के महानतम गणितज्ञों में स्थान प्राप्त कर सकते थे। उनके पास वो प्रतिभा थी, उनके पास वो क्षमता भी थी, फिर उन्होंने दूसरा मार्ग क्यों चुना?
3: क्योंकि उनके भीतर केवल एक गणितज्ञ नहीं था, उनके भीतर एक राष्ट्रभक्त भी था, और वे समझ चुके थे कि भारत को केवल एक महान वैज्ञानिक की आवश्यकता नहीं है, भारत को ऐसी शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है जो हजारों वैज्ञानिक तैयार कर सके। भारत को ऐसे विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है जो विश्व स्तर का ज्ञान उत्पन्न कर सकें। और शायद यही विचार उनके जीवन की दिशा बदलने में सहायक सिद्ध हुआ। देश में नई चेतना जन्म ले रही थी। लोग शिक्षा को केवल नौकरी का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय जागरण का साधन मानने लगे थे। ऐसे समय में आशुतोष मुखर्जी ने अपनी प्रतिभा को केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने तय किया कि अब उनका ज्ञान समाज के काम आएगा।
2: हालांकि गणित के क्षेत्र में उनकी यात्रा लगातार आगे बढ़ रही थी। वो शोध कर रहे थे, नए प्रमेयों पर काम भी कर रहे थे, ज्यामिति और कलन के जटिल प्रश्नों का वो समाधान खोज रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ वो भारतीय शिक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को भी समझ रहे थे।
3: उस समय अधिकांश भारतीय विश्वविद्यालय केवल परीक्षाएं आयोजित करने वाली संस्थाएं थीं। ज्ञान की रचना कम होती थी, शोध की परंपरा लगभग न के बराबर थी, प्रयोगशालाएं सीमित थीं, और भारतीय विद्यार्थियों के सामने अवसर भी बहुत कम थे। आशुतोष मुखर्जी इस स्थिति से कतई संतुष्ट नहीं थे।
2: श्रोताओं, आप जानते हैं कि वो मानते थे कि यदि किसी राष्ट्र को वास्तव में शक्तिशाली बनाना है, तो उसे ज्ञान के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनना होगा। उसे ऐसे विश्वविद्यालय चाहिए होंगे जो केवल पढ़ाए नहीं, बल्कि नया ज्ञान भी उत्पन्न करें, जो केवल डिग्रियां ना दें, बल्कि एक नया विचार भी दें।
3: यही सोच उन्हें विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर ले गई। सन 1888 में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के फेलो बने। उस समय उनकी आयु केवल 24 वर्ष थी। इतनी कम उम्र में यह जिम्मेदारी मिलना उनकी प्रतिभा और प्रतिष्ठा का प्रमाण था।
2: फेलो बनने के बाद उन्होंने विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली को बहुत करीब से जाना उन्होंने महसूस किया कि भारत में प्रतिभा की कमी नहीं है, कमी है तो केवल उचित मार्गदर्शन और अवसरों की, और ये कमी दूर की जा सकती है।
3: और इसी बीच उनका गणितीय कार्य भी जारी रहा। उन्होंने एलिप्टिक फंक्शंस, डिफरेंशियल समीकरणों और ज्यामिति पर अनेक शोध पत्र लिखे। उनके शोध पत्र केवल भारत में ही नहीं बल्कि इंग्लैंड की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हो रहे थे।
2: शोध पत्रों की सूची देखें तो पता चलता है कि उन्होंने यूक्लिड के प्रमेयों से लेकर मोंज के समीकरणों तक अनेक विषयों पर कार्य किया। उन्होंने गणित को केवल सिद्धांत तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने ये भी दिखाया कि गणित का उपयोग वास्तविक जीवन की जटिल समस्याओं को समझने में कैसे किया जा सकता है।
3: उनकी एक और विशेषता थी, वे केवल नए शोध नहीं करते थे, वे गणित को सरल बनाने का प्रयास भी करते थे। कहा जाता है कि वे जटिल ज्यामितीय सिद्धांतों को बीज गणितीय रूप में समझाने का प्रयास करते थे ताकि विद्यार्थी उन्हें बेहतर ढंग से समझ सकें।
2: सन 1887 से सन 1890 के बीच उन्होंने भारतीय विज्ञान संवर्धन संस्था में गणित के अनेक व्याख्यान दिए। इन व्याख्यानों में विद्यार्थी, शिक्षक और शोधार्थी बड़ी संख्या में हिस्सा लेते थे। उनकी भाषा विद्वत्तापूर्ण होते हुए भी सरल होती, वो कठिन से कठिन विषय को रोचक बना दिया करते।
3: श्रोताओ, ये वही समय था जब उनके भीतर शिक्षक का स्वरूप और अधिक स्पष्ट होने लगा था, क्योंकि वे समझ चुके थे कि ज्ञान का वास्तविक मूल्य तभी है जब वह दूसरों तक पहुंचे, जब वह समाज को लाभ पहुंचाए।
2: आशुतोष मुखर्जी का यह विश्वास था कि भारत को पश्चिम से सीखना चाहिए, लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं। उन्होंने हमेशा भारतीय और पाश्चात्य ज्ञान परंपराओं के संतुलन की बात की। उनका मत था कि विज्ञान सार्वभौमिक है, लेकिन शिक्षा की आत्मा अपने समाज और संस्कृति से जुड़ी होनी चाहिए।
3: और उनके विचारों का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। शिक्षा जगत में उनका सम्मान बढ़ रहा था। गणितज्ञ उन्हें अपने बीच का विद्वान मानते थे, शिक्षक उन्हें प्रेरणा मानते थे और विद्यार्थी उन्हें मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे थे।
2: लेकिन आशुतोष मुखर्जी केवल एक विषय तक सीमित रहने वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने कानून की पढ़ाई भी पूरी की और जल्द ही न्यायिक क्षेत्र में भी अपनी पहचान बना ली।
3: यह उनके व्यक्तित्व की एक अद्भुत विशेषता थी, एक ओर गणितज्ञ, दूसरी ओर वैज्ञानिक चिंतक, तीसरी ओर शिक्षाविद और अब एक विधिवेत्ता। ऐसा बहुआयामी व्यक्तित्व इतिहास में विरला ही देखने को मिलता है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। उनका अध्ययन इतना व्यापक था कि लोग उन्हें चलता फिरता विश्वविद्यालय कहा करते थे। किसी भी विषय पर उनसे बातचीत कर लीजिए, इतिहास, विज्ञान, दर्शन, साहित्य, कानून या गणित, हर विषय पर उनकी पकड़ अद्भुत थी।
3: इसी बीच उन्होंने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने महसूस किया कि भारत में गणित के लिए सशक्त मंच होना चाहिए, और ऐसा मंच जहां गणितज्ञ अपने विचार साझा कर सकें, जहां शोध को प्रोत्साहन मिले, जहां भारतीय प्रतिभाएं विकसित हो सकें।
2: और इसी विचार के साथ आगे चलकर कलकत्ता मैथमेटिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। ये संस्था भारत में गणितीय अनुसंधान की महत्वपूर्ण आधारशिला बनी। आशुतोष मुखर्जी इसके संस्थापकों में अग्रणी थे और लंबे समय तक इसके नेतृत्व से जुड़े रहे।
3: आज जब हम भारत में गणितीय अनुसंधान की समृद्ध परंपरा देखते हैं तो उसके प्रारंभिक स्तंभों में आशुतोष मुखर्जी का नाम अवश्य दिखाई देता है। उन्होंने न केवल स्वयं शोध किया बल्कि शोध की संस्कृति भी विकसित की।
2: धीरे धीरे उनकी दृष्टि और व्यापक होती चली गई। अब वो केवल गणित या किसी एक विषय के विकास की बात नहीं कर रहे थे, वो पूरे शिक्षा तंत्र के परिवर्तन की बात कर रहे थे।
3: और यहीं से आरंभ होता है उनके जीवन का वह अध्याय जिसने उन्हें भारतीय शिक्षा जगत का महानायक बना दिया। एक ऐसा अध्याय जिसमें वे विश्वविद्यालयों का स्वरूप बदलते हैं, नई संस्थानों की स्थापना करते हैं, देश भर की प्रतिभाओं को आगे लाते हैं और भारतीय उच्च शिक्षा को नई दिशा देते हैं। और अब उस समय की बात करते हैं जब भारत राजनीतिक रूप से गुलाम था लेकिन मानसिक रूप से जाग रहा था। देश में नई चेतना का उदय हो रहा था। युवा वर्ग शिक्षा को स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का मार्ग मानने लगा था और ऐसे समय में शिक्षा संस्थानों की भूमिका पहले से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई थी।
2: साल था 1906। कलकत्ता विश्वविद्यालय में उपकुलपति के रूप में एक ऐसा नाम सामने आया जो आने वाले वर्षों में भारतीय शिक्षा का पर्याय बन गया, आशुतोष मुखर्जी।
3: उपकुलपति का पद संभालते ही उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी, विश्वविद्यालय केवल परीक्षा लेने वाली संस्था नहीं रहेगा, यह ज्ञान निर्माण का केंद्र बनेगा। यहाँ केवल पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाए जाएंगे, यहाँ शोध होगा, नवाचार होगा, नए विचार जन्म लेंगे।
2: उस समय अधिकांश भारतीय विश्वविद्यालय अंग्रेजी प्रशासन की जरूरतों के अनुसार काम कर रहे थे। उनका उद्देश्य ऐसे कर्मचारी तैयार करना था जो शासन व्यवस्था को चलाने में सहायता कर सकें। लेकिन आशुतोष मुखर्जी का सपना इससे कहीं अधिक बड़ा था। वो ऐसे विश्वविद्यालय चाहते थे जो राष्ट्र की बौद्धिक शक्ति बने।
3: उन्होंने सबसे पहले उच्च शिक्षा में शोध की संस्कृति को प्रोत्साहित किया। उनका मानना था कि केवल किताबें पढ़ लेने से कोई समाज महान नहीं बन सकता। महान समाज वह होता है जो नया ज्ञान उत्पन्न करता है, जो नए प्रश्न पूछता है और उनके उत्तर खोजता है।
2: और यही कारण था कि उन्होंने विश्वविद्यालय में शोध कार्यक्रमों और उच्च अध्ययन को विशेष महत्व दिया। उन्होंने योग्य विद्यार्थियों को प्रोत्साहन दिया, शोध वृत्तियां शुरू की और नए विभागों की स्थापना का भी मार्ग प्रशस्त किया।
3: उनकी दूरदृष्टि का एक महत्वपूर्ण उदाहरण था विज्ञान शिक्षा को दिया गया महत्व। उस समय विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम थी, संसाधन भी सीमित थे, लेकिन आशुतोष मुखर्जी समझ चुके थे कि आने वाला युग विज्ञान का युग होगा।
2: और इसीलिए उन्होंने वैज्ञानिक शिक्षा के विस्तार के लिए भी अथक प्रयास किए। उनका सपना था कि भारत के विद्यार्थी विदेश जाए बिना भी उच्च स्तर का वैज्ञानिक अध्ययन कर सकें, और साथ ही ये भी कि भारत की धरती पर ही विश्व स्तरीय प्रयोगशालाएं भी स्थापित हों।
3: उनके प्रयासों का परिणाम था कलकत्ता विश्वविद्यालय का विज्ञान महाविद्यालय। यह केवल एक भवन नहीं था, यह भारतीय विज्ञान के भविष्य की नींव था।
2: कहा जाता है कि संसाधनों की कमी के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। वो लगातार लोगों से सहयोग मांगते रहे, दानदाताओं को प्रेरित करते रहे और अंततः उनका सपना साकार हुआ।
3: यहीं से आगे चलकर अनेक वैज्ञानिक तैयार हुए जिन्होंने भारत का नाम विश्व में रोशन किया। वास्तव में यदि हम आधुनिक भारतीय विज्ञान के इतिहास को देखें तो उसकी जड़ों में कहीं ना कहीं आशुतोष मुखर्जी की दूरदृष्टि दिखाई देती है।
2: लेकिन विज्ञान ही उनकी प्राथमिकता नहीं था, उनकी दृष्टि अत्यंत व्यापक थी। वो भारतीय भाषाओं और भारतीय ज्ञान परंपराओं को भी उतना ही महत्व देते थे।
3: उस समय अंग्रेजी शिक्षा को ही श्रेष्ठ माना जाता था, भारतीय भाषाओं को उच्च शिक्षा के योग्य नहीं समझा जाता था। लेकिन आशुतोष मुखर्जी इस सोच से सहमत नहीं थे।
2: बिल्कुल, क्योंकि वो मानते थे कि कोई भी राष्ट्र अपनी भाषा और संस्कृति से कटकर महान नहीं बन सकता। इसीलिए उन्होंने विश्वविद्यालय में भारतीय भाषाओं और भारतीय अध्ययन को प्रोत्साहन दिया।
3: संस्कृत, पाली, बांग्ला, भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति, इन सभी विषयों को उन्होंने सम्मानजनक स्थान दिलाने का प्रयास किया।
2: उनका विश्वास था कि आधुनिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति साथ साथ चल सकते हैं। एक ओर प्रयोगशालाएं हो सकती हैं, तो दूसरी ओर साहित्य और दर्शन भी। एक ओर आधुनिक शोध हो सकता है तो दूसरी ओर परंपरा का संरक्षण भी।
3: यही संतुलित दृष्टि उन्हें अपने समय के अन्य शिक्षाविदों से अलग बनाती है। वे अतीत में अटके हुए व्यक्ति नहीं थे, लेकिन वे अपनी जड़ों को छोड़कर आगे बढ़ने में भी विश्वास नहीं करते थे।
2: आशुतोष मुखर्जी की एक और विशेषता थी, प्रतिभा को पहचानने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। वो व्यक्ति नहीं देखते थे, वो क्षमता देखते थे।
3: कई युवा विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को उन्होंने अवसर दिए, उनकी सहायता की, उन्हें आगे बढ़ने का मंच दिया, क्योंकि वे जानते थे कि एक प्रतिभा को अवसर देना राष्ट्र के भविष्य में निवेश करना है।
2: और उनके व्यक्तित्व का प्रभाव इतना व्यापक था कि विद्यार्थी उन्हें केवल प्रशासक नहीं बल्कि मार्गदर्शक मानते थे। वो उनके पास केवल शैक्षणिक समस्याएं लेकर ही नहीं आते थे, बल्कि उनसे वो अपने जीवन से जुड़े प्रश्न भी पूछते थे।
3: आशुतोष मुखर्जी का उत्तर केवल एक ही दिशा में होता था, परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास। वे कहते थे कि यदि व्यक्ति में ये तीन गुण हैं तो सफलता देर से मिलेगी लेकिन अवश्य मिलेगी।
2: धीरे धीरे उनका नाम पूरे भारत में सम्मान के साथ लिया जाने लगा। उनकी प्रशासनिक क्षमता, उनकी विद्वता और उनकी निर्भीकता और उनकी राष्ट्रनिष्ठा, इन सब ने मिलकर उन्हें एक असाधारण व्यक्तित्व बना दिया।
3: इसी दौरान लोगों ने उन्हें एक नया नाम देना शुरू किया, बंगाल का बाघ। यह केवल एक प्रशंसा नहीं थी, यह उनके साहस और स्वाभिमान का सम्मान था।
2: कारण था कि वो किसी भी तरह के दबाव के सामने झुकते नहीं थे। यदि उन्हें लगता कि कोई निर्णय शिक्षा या विद्यार्थियों के हित में नहीं है तो वो खुलकर उसका विरोध करते, चाहे सामने कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना खड़ी हो।
3: उनके लिए केवल पद महत्वपूर्ण नहीं था, सिद्धांत महत्वपूर्ण थे। प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण नहीं थी, सत्य महत्वपूर्ण था। और यही कारण था कि वे लाखों विद्यार्थियों की प्रेरणा बन गए।
2: श्रोताओं, जब आज हम भारत के शिक्षा व्यवस्था की चर्चा करते हैं तब हमें याद रखना चाहिए कि जिन संस्थाओं और परंपराओं पर हमें गर्व है उनकी नींव रखने वालों में आशुतोष मुखर्जी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है।
3: लेकिन उनके जीवन की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अभी हमें जानना है एक न्यायाधीश के रूप में उनका योगदान, एक पिता के रूप में उनकी भूमिका और वह विरासत जो उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ी। वे केवल एक शिक्षाविद तक सीमित नहीं थे, वे न्याय के क्षेत्र में भी उतने ही सम्मानित थे जितने शिक्षा के क्षेत्र में।
2: कानून की शिक्षा पूर्ण करने के बाद उन्होंने न्यायिक क्षेत्र में प्रवेश किया। उनके तार्किक क्षमता, गहन अध्ययन और निष्पक्ष दृष्टि ने शीघ्र ही उन्हें विशिष्ट पहचान दिलाई।
3: गणित ने उन्हें तर्क दिया था, विज्ञान ने उन्हें विश्लेषण की क्षमता दी थी और कानून ने उन्हें न्याय का दृष्टिकोण दिया। इन तीनों का अद्भुत समन्वय उनके निर्णयों में भी दिखाई देता था।
2: कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में उन्होंने कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की। उनकी पहचान एक ऐसे न्यायाधीश की थी जो तथ्यों को गहराई से समझता था और किसी भी तरह के दबाव से प्रभावित नहीं होता था।
3: उनके लिए न्याय केवल कानून की भाषा नहीं था, यह नैतिक उत्तरदायित्व भी था। वे मानते थे कि न्यायालय केवल विवादों का समाधान करने का स्थान नहीं बल्कि समाज के विश्वास का केंद्र है।
2: यही कारण था कि न्यायपालिका में भी उनका सम्मान अत्यंत ऊंचा था। लेकिन जितना बड़ा उनका पद था उतनी ही बड़ी उनकी विनम्रता भी थी।
3: उनके जीवन का एक और महत्वपूर्ण पक्ष था उनका पारिवारिक जीवन। वे एक अनुशासित पिता थे लेकिन उससे भी अधिक एक प्रेरक मार्गदर्शक।
2: उनके पुत्र श्यामा प्रसाद मुखर्जी आगे चलकर स्वतंत्र भारत के प्रमुख राष्ट्रनायकों में गिने गए, लेकिन किसी भी महान व्यक्तित्व के पीछे कुछ संस्कार भी होते हैं, कुछ मूल्य होते हैं, कुछ आदर्श होते हैं और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व में इन आदर्शों की छाप साफ दिखाई देती है।
3: आशुतोष मुखर्जी ने अपने बच्चों को केवल शिक्षा नहीं दी, उन्होंने आत्मसम्मान दिया, उन्होंने सत्य के प्रति निष्ठा दी, उन्होंने राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना दी।
2: वो मानते थे कि किसी व्यक्ति की वास्तविक पहचान उसके चरित्र से होती है। डिग्रियां और पद महत्वपूर्ण हो सकते हैं लेकिन चरित्र से बड़ा कोई सम्मान नहीं होता।
3: उनका जीवन इस विचार का जीवंत उदाहरण था। उन्होंने कभी सुविधा का मार्ग नहीं चुना, उन्होंने हमेशा सही मार्ग चुनने का प्रयास किया चाहे वह कठिन ही क्यों न हो।
2: और आज जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो पाते हैं कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि कोई एक संस्था नहीं थी, कोई एक पद नहीं था, कोई एक सम्मान नहीं था। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी एक ऐसी बौद्धिक परंपरा का निर्माण जिसने आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित किया।
3: उन्होंने भारतीय युवाओं को यह विश्वास दिलाया कि वे भी विश्व स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने भारतीय शिक्षा को यह आत्मविश्वास दिया कि वह केवल अनुकरण करने वाली व्यवस्था नहीं बल्कि ज्ञान निर्माण करने वाली व्यवस्था भी बन सकती है।
2: श्रोताओं, उनका विश्वास था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का निर्माण है, शिक्षा का उद्देश्य समाज को बेहतर बनाना है और शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्र को मजबूत करना है।
3: आज भारत के विश्वविद्यालयों में जो शोध हो रहे हैं, आज भारतीय वैज्ञानिक जो उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं, आज भारतीय विद्यार्थी विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जो पहचान बना रहे हैं, उन सब की पृष्ठभूमि में कहीं न कहीं आशुतोष मुखर्जी जैसे दूरदर्शी शिक्षाविदों का योगदान मौजूद है।
2: उनकी दृष्टि समय से बहुत आगे थी। वह ऐसे भारत की कल्पना कर रहे थे जो ज्ञान में आत्मनिर्भर हो, जो अपनी संस्कृति पर गर्व करे, जो विज्ञान में अग्रणी हो और जो दुनिया का केवल अनुसरण ना करे बल्कि उसे दिशा भी दे।
3: पच्चीस मई 1924, ये वह दिन था जब यह महान व्यक्तित्व भौतिक रूप से हमारे बीच से विदा हो गया। लेकिन कुछ लोग अपने जीवन काल से बड़े हो जाते हैं, वे शरीर से नहीं अपने विचारों से जीवित रहते हैं। आशुतोष मुखर्जी ऐसे ही व्यक्तित्व का नाम है।
2: उनके स्मृति आज भी भारतीय शिक्षा जगत में जीवित है, उनके विचार आज भी प्रासंगिक है, उनका जीवन आज भी प्रेरणा देता है।
3: जब भी कोई विद्यार्थी कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ता है, जब भी कोई शिक्षक शिक्षा को केवल नौकरी नहीं मिशन मानता है, जब भी कोई विश्वविद्यालय नए ज्ञान के निर्माण का संकल्प लेता है, तब कहीं ना कहीं आशुतोष मुखर्जी की विरासत हमारे सामने उपस्थित होती है।
2: श्रोताओं, भारत विभूति के आज के इस विशेष अंक में हमने जाना एक ऐसे महापुरुष को जिसने गणित को साधना बनाया, शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का माध्यम बनाया और अपने जीवन को ज्ञान के प्रकाश के लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया।
3: सर आशुतोष मुखर्जी को विनम्र श्रद्धांजलि, उनके विचारों को नमन, उनके योगदान को प्रणाम।
2: तो श्रोताओं, इसी के साथ अब हम इस यात्रा को यहीं विराम देते हैं। अगले सप्ताह भारत विभूति में हम फिर मिलेंगे भारत के एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व के साथ।
3: तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम भारत विभूति। आज के इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की सर आशुतोष मुखर्जी के बारे में। मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम, आलेख मनीषा चतुर्वेदी का था और मैं था आपके साथ विजयकांत नायक
2: और मैं थी आपकी रेडियो मित्र स्वाति।
3: ये है रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत, गीतकार ख्वाजा अल्ताफ हुसैन

रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं रविंद्र भवन सभागार में, जहां 31 जुलाई की शाम महफिल सजी मशहूर पार्श्व गायक मोहम्मद रफी के नाम।

ये थी आज की रेडियो रिपोर्ट। अगली रेडियो रिपोर्ट तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका इतिहास, इस देश का इतिहास जो आ पहुंचा है आपके पास आपको सुनाने फिर से एक वीर की गाथा। लेकिन तारीख कहाँ है? अरे तारीख, तुम वहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें देखा ही नहीं।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी तारीख, आपकी अपनी तारीख, जो यहाँ आ पहुँची है देने इतिहास का साथ। और आज तो इतिहास से पहले ही आ गई हूँ मैं।
1: क्या बात है, आज तो बड़े उत्साह में दिखाई पड़ती हो। भाई बात क्या है, हम भी तो जाने।
2: बिल्कुल सही कहा, मैं तो हूँ ही उत्साहित। अब भाई आखिर मैं तारीख हूँ, उत्साहित नहीं रहूंगी क्या? लेकिन आज मेरे उत्साह का एक और कारण है।
1: अच्छा, तो हम सबको भी तो बताओ वो कारण।
2: इतिहास, आपने ही तो कहा था कि आज आप ऐसे नायक के बारे में बताएंगे जिसे राजनीति में ऋषि का प्रादर्श कह सकते हैं।
1: बिल्कुल तारीख, देखो राजनीति का ऋषि पहले एक प्रादर्श क्रांतिकारी होता है, इसलिए ये कहना चाहिए कि क्रांति नायक राजर्षि।
2: ओ हाँ, अब याद आया, आप आज राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के बारे में हम सबको बताने वाले हैं, है ना? जिन्हें राजर्षि की उपाधि स्वयं जनता ने दी है।
1: वाह, तुम्हें याद है, बहुत खूब तारीख। भाई मान गए तुम्हें, देर से ही सही लेकिन तुम्हें याद तो आया।
2: अरे आप मेरी तारीफ छोड़िए और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी के बारे में बताइए।
1: ये तो मेरा सौभाग्य होगा तारीख, तुम्हें पता है उनके लिए एक कविता हमेशा कही जाती है।
2: वाह कविता, अरे मैं क्या, हम सब सुनना चाहेंगे इतिहास, जरूर सुनाइए।
1: तो सुनो, दे राजर्षि की उपाधि देश ने जिनका था सम्मान किया, निरासक्त उन महतापी ने क्या था अपना नहीं दिया, व्रती भीष्म सदृश थे वे शिव सामान अवढर थे, पुत्र भारती का हो कोई उनके सबके हित कर थे।
2: सुना है वो हिंदी की उन्नति के लिए भीष्म थे और हरीशचंद्र की तरह दृढ़ प्रतिज्ञ थे। आज हिंदी अगर राष्ट्रभाषा के पद पर है तो वो उन्हीं की साधना का फल है।
1: हाँ तारीख, बिल्कुल सही सुना है तुमने। चलो अब हम और हमारे साथी सुनते हैं एक देशभक्ति से ओतप्रोत गीत।

0: राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी का जन्म 1882 की 1 अगस्त को प्रयाग के खुशहाल पर्वत नामक मोहल्ले में हुआ था। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी के पिताजी का नाम सालिग्राम और माताजी का नाम बिट्टन देवी था, जो कि बाद में राधास्वामी धर्म में दीक्षित होने के चलते शरण देवी हो गया। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ने प्रारंभिक शिक्षा घर पे लेने के बाद 1897 में गवर्नमेंट हाई स्कूल से मैट्रिक और 1899 में कायस्थ पाठशाला कॉलेज से इंटर और उसके पश्चात 1904 में म्योर सेंट्रल कॉलेज से बीए और फिर 1906 में वकालत की परीक्षा पास की। इसके साथ ही साथ वकालत की पढ़ाई करते हुए उन्होंने इतिहास में एमए भी किया।
1: हाँ, और 1899 में ही उनका विवाह चंद्रमुखी देवी से करवा दिया गया था और चंद्रमुखी देवी ने भी कस्तूरबा जी की ही तरह हमेशा अपने पति के सिद्धांतों का अनुसरण किया। इस प्रकार चंद्रमुखी देवी भी ऋषि पत्नी होने का एक प्रादर्श हैं।
0: वकालत करते करते राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी का संपर्क महामना मालवीय जी से हुआ। 1914 में मालवीय जी ने राजर्षि को पंजाब के नाभा राज्य के दीवान के पद पर नियुक्ति दिलवाई, लेकिन उसे अपनी प्रवृत्ति और प्रकृति के प्रतिकूल पाकर राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने जल्द ही उस पद से मुक्ति ले ली।
1: राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी जन्मजात देशभक्त तो थे ही साथ जन्मजात रूप से अनाचार और अत्याचार के विरुद्ध निडर होकर खड़े होने वाले योद्धा भी थे। जब वे एक विद्यार्थी के रूप में अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर रहे थे, तभी उन्हें अपनी देशभक्ति के चलते कांग्रेस का साथ मिला और वो कांग्रेस के साथ हो लिए।
0: हाँ, तारीख कांग्रेस पार्टी में वे सबसे पहले 1905 में वाराणसी में हुए कांग्रेस अधिवेशन में स्वयंसेवक के रूप में शामिल हुए और उस अधिवेशन की अध्यक्षता श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इसके बाद 1908 में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन में प्रतिनिधि बनकर शामिल हुए राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन उर्फ राजर्षि।

0: वो समय आ चुका था जबकि भारत का इतिहास करवट बदल रहा था। शांतिपूर्वक भारत का शासन भारतीयों को देने के वादे से अंग्रेज सरकार मुकर गई थी। और तो और इससे भी बढ़कर एक जो बहुत ही बुरी बात हुई थी वो ये कि रोलेट एक्ट कानून भी पास कर दिया गया था। क्रांतिकारी कांग्रेस सरकार ने उसे काला कानून नाम दिया और इस कानून के विरुद्ध एक जन आंदोलन छिड़ गया।
1: इसी समय की बात है, देश में जलियांवाला कांड भी हो चुका था। कांग्रेस ने इस क्रूर कांड की जांच समिति बनाई जिसके एक सदस्य पुरुषोत्तम दास टंडन उर्फ राजर्षि भी नियुक्त किए गए। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी। पुरुषोत्तम दास टंडन भी राजसी आय वाली वकालत छोड़कर इस आंदोलन में शामिल हो गए। सारे ठाट बाट छोड़कर उन्होंने अपने परिवार को भी सारी सुविधाओं से वंचित कर दिया। वे गांव गांव घूमकर विदेशी कपड़ों की होली जलाते, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते, चरखे का प्रचार, अदालतों का बहिष्कार, अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार करते और इस तरह आजादी की अलख जगाने में जुट गए। इसका परिणाम ये हुआ कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 1.5 बरस का कारावास हुआ।
0: कितने महान होते थे वो वीर सपूत जो अपनी सारी सुविधाएं भूलकर भारत माता की आजादी के लिए जेल जाने में अपना सुख खोज लेते थे। कितने खुशनसीब थे वो जेल जिनमें ऐसे सपूतों के चरण पड़ते थे।

0: समय धीरे धीरे करवट ले रहा था। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था और सभी राजनीतिक बंदी मुक्त कर दिए गए थे।
1: इस दौर में पुरुषोत्तम दास टंडन उर्फ राजर्षि की पत्नी चंद्रमुखी जी ने अपने पति को दिए वचन का पालन करने के लिए न किसी की मदद ली और न ही याचना की।
0: जेल से निकलने के बाद लाला लाजपत राय ने उनकी प्रचारक क्षमता को ध्यान में रखते हुए पुरुषोत्तम दास टंडन को अछूतोद्धार के कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए आमंत्रित किया और इसके लिए उन्हें 500 रुपए मासिक वेतन देने का वायदा भी किया। लाला जी चाहते थे कि पुरुषोत्तम दास टंडन की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार आ जाए, बस राजर्षि इस बात को भांप गए और मदद न लेने की अपनी नीति के चलते उन्होंने लाला जी के आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। पुरुषोत्तम दास टंडन उर्फ राजर्षि का मानना था कि देश सेवा का प्रतिदान आजादी का फल पाने के लिए होता है, न कि आर्थिक उन्नति करने के लिए।
1: वाह, क्या विचार थे! देश सेवा का प्रतिदान आजादी का फल पाने के लिए होता है, न कि आर्थिक उन्नति करने के लिए। हाँ, परंतु लाला जी ने भी हार नहीं मानी होगी, है ना?
0: हाँ, लाला जी भी कहाँ हार मानने वाले थे। आखिरकार लाला लाजपत राय ने पुरुषोत्तम दास टंडन जी को लाहौर बुलाकर उनकी नियुक्ति पंजाब नेशनल बैंक के सचिव के पद पर करवा ही दी। यहाँ राजर्षि लाला जी का लिहाज करके काम भी करते रहे, लेकिन 1928 में जब लाला जी इस दुनिया को त्याग कर चले गए, तब पुरुषोत्तम दास टंडन ने भी अपने पद का त्याग कर दिया और ये नौकरी छोड़ दी। और फिर राजर्षि लोक सेवा मंडल के अध्यक्ष के रूप में फिर से इलाहाबाद आ गए। इलाहाबाद में उन्होंने गांधी जी के नमक सत्याग्रह आंदोलन के सहयोग में नमक कानून तोड़ा, जिसके फलस्वरूप वे अंग्रेज शासन द्वारा पुनः जेल भेज दिए गए। 1935 में गांधी जी ने गांधी इरविन समझौते के तहत आंदोलन वापस ले लिया और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जेल से छूट गए।
1: इस दफे पुरुषोत्तम दास टंडन ने किसानों को संगठित करना शुरू किया और उनकी कोशिशों से इलाहाबाद में एक बहुत बड़ा किसान सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता श्री वल्लभ भाई पटेल ने की।
0: उत्तर प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने उन्हें बतौर स्पीकर चुना, लेकिन 1940 में उन्होंने इस पद को भी त्याग दिया। कांग्रेस ने देशव्यापी भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया और इसमें राजर्षि की सक्रियता को देखकर अंग्रेज सरकार ने उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया और 1945 तक वे जेल में ही रहे।
1: कांग्रेस के जो कार्यकर्ता जेलों में बंद थे, उन्हें कांग्रेस ने आर्थिक सहायता भी पहुंचाई, लेकिन राजर्षि की पत्नी ने ये सहायता लेने से साफ इनकार कर दिया।
0: फिर कांग्रेस की सरकार बनी और 1945 में पुरुषोत्तम दास टंडन जेल से छूट कर आए और पुनः चुनाव जीत कर उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष बने। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन राजर्षि विभाजन के विरुद्ध थे। जब सभी लोग आजादी का जश्न मना रहे थे, तब राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन एकांत में बैठकर आंसू बहा रहे थे, क्योंकि वो ये विभाजन कभी नहीं चाहते थे।
2: इस

0: 1950 में भारत के संविधान निर्माण के लिए गठित समिति में एक सदस्य राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन भी थे। उन्हीं के कारण हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। इसके बाद 1952 में वो लोकसभा के अध्यक्ष भी चुने गए और 1955 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। 1961 में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया।
1: अंततः एक निरासक्त कर्मयोगी ने 1 जुलाई 1932 में बीमारी के चलते अपनी अंतिम सांस ली। वे एक सिद्ध के आशीर्वाद स्वरूप इस धरती पर जन्मे थे और एक सिद्ध के रूप में ही दूसरों के लिए सोचते करते चिर निद्रा में लीन हुए। एक सिद्ध योगी के रूप में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन इतिहास में भी अपना नाम सिद्ध पुरुष के रूप में दर्ज करा गए।
0: उन्होंने अपने जीवन में जितने काम किए दूसरों के लिए ही किए। दूसरों की खुशियों, दूसरों के सुख से ही स्वयं सुख की अनुभूति पाने वाले उस कर्मवीर को इतिहास कभी नहीं भुला पाएगा। सच्चे शब्दों में सदा उन्हें राजर्षि के रूप में याद किया जाएगा। क्रांति नायक राजर्षि।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है। खुलकर

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं गायन, वादन, लोकगीत, गजलें और बहुत कुछ। आज आप सुनेंगे डॉक्टर ऋषि मिश्र का गायन।
1: मुखड़ा देखिएगा,

तंदिश की बूंद है, गगन सघन घेरी आए, पड़त बूंद छहरी छहरी, नव पल्लव नव कुसुम है, सब नए पत्ते नए फूल जगाए, हरि तज नित मन लुभाए, प्रभु के मन को वो लुभा रहा है ऐसा।

दादुर मोर पपीहा बोले, जब बारिश होता है तो मोर पपीहा सब बोलते हैं, कोयल बन कूं के कूं के। इतना सुंदर वातावरण है, लेकिन उस खूबसूरत वातावरण को देखकर बिरहन का मन हूंक हूंक हो रहा है, बड़े पीड़ा में है वो, क्योंकि उसका पति या उसका प्रेमी उसके साथ नहीं है।

और ये देखकर जो इसके रचयिता हैं मेरे गुरुजी पंडित गणेश प्रसाद मिश्र जी, उनका तन जल रहा है ये देखकर, ऐसा देश कहाँ भगवान खुश थे और वो इतना पीड़ा में है ये देख।

काल की एक रचना है, मेघ मल्लार में ही याद आ गया, तो वो थोड़ा सा सुनाते हैं, बस दो चार मिनट सुनाएंगे। वो बड़ा अच्छा उसका मुखड़ा देखिएगा, आप लोग इतना प्यार से सुन रहे हैं तो सुनाने का मन कर गया मुझे, मुखड़ा देखिएगा।

यातायात के नियम आपकी हिफाजत के लिए हैं। गाड़ी चलाते समय अनावश्यक ओवरटेक ना करें, गाड़ी की गति पर नियंत्रण रखें, तेज स्पीड से गाड़ी ना चलाएं। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: अभी तक आपने बालक नरेंद्रनाथ का बालपन, उनका नटखट स्वभाव, चंचल परंतु भावुक हृदय और प्रखर बुद्धिमत्ता के बारे में जाना। उनकी स्वाभाविक नेतृत्व कला, उपस्थित बुद्धि, निर्भीकता तथा तर्कसंगत विचार के सभी कायल थे। उनका मन सैकड़ों सुंदर कल्पनाओं से पूर्ण था। हृदय स्नेह सिक्त, बुद्धि कुशाग्र, साहस अमित, अचिंतनीय उद्भावनी शक्ति, कार्यक्षमता असीम और उत्साह अदम्य था। और सबसे बढ़कर थी उनकी ईश्वर के प्रति उन्मुखता। जन्म से ही थे वे ध्यान सिद्ध। पूजा प्रार्थना आत्मानुसंधान में बचपन से ही उनकी रुचि और अधिकार थे। इस अनन्य असाधारण महापुरुष के जीवन का अनुध्यान करने से हम लोग देखेंगे कि ये सारी बातें अतिरंजित नहीं बल्कि सत्य की तुलना में बहुत कम हैं।
1: उम्र के छठे वर्ष में प्रवेश करते ही बालक नरेंद्र का विद्याभ्यास प्रारंभ हुआ। पाठशाला जाने के पहले दत्तवंश के कुल पुरोहित ने आकर नियमानुसार पूजा अर्चना कर नरेंद्र को पहला पाठ पढ़ाया। सरकंडे की कलम को दूध में डुबोकर स्लेट पर बंगला भाषा का पहला अक्षर अ लिखवाया और कहा,
2: कहो बेटा आ, आ, और ये है आ,
3: आ।
1: हो गया विद्यारंभ। दूसरे दिन से नरेंद्र धोती पहनकर सरकंडे की कलम और रस्सी बंधी दवात लेकर पाठशाला जाने लगे, पर ज्यादा दिन जाना नहीं हुआ।
0: माता पिता ने गौर किया कि नरेंद्र पाठशाला के साथियों से गलत भाषा सीख रहा है। उसके तौर तरीके भी बदलने लगे। स्कूल में हर सामाजिक स्तर के बच्चे पढ़ने आते हैं, उनकी बातचीत बोलचाल भी सब नए ढंग के होते हैं। सो माता पिता ने उन्हें और इस प्रकार के विद्यालय में रखना उचित नहीं समझा। घर पर ही एक कमरे में छोटी मोटी पाठशाला खोलकर वहां गुरुजी के हाथों अपने पुत्र को समर्पित कर दिया। इस नई पाठशाला में कई रिश्तेदारों के बच्चे भी पढ़ने आने लगे, इसलिए नरेंद्र को दोस्तों की कमी नहीं हुई। पर पाठशाला में पढ़ने के बावजूद माँ के निकट नरेंद्र जो ज्ञान प्राप्त कर रहे थे वो बंद नहीं हुआ।
4: बेटा, तुम गुरुजी से बंगला तो सीख ही रहे हो, पर आज से मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना भी सिखाऊंगी।
3: क्यों माँ?
4: भाषा सीखना तो अच्छी बात है, अंग्रेजी राजभाषा है, उसे सीखना भी जरूरी है। फिर दूसरे प्रांत के लोगों से बातचीत करने में ये भाषा काम आएंगी।
3: ये कौन सी किताब है माँ?
4: ये प्यारी चरण सरकार का लिखा अंग्रेजी का फर्स्ट बुक है।
1: नरेंद्रनाथ के पढ़ने का एक अपना ही ढंग था। अध्यापक महोदय बगल में बैठकर पाठ पढ़ जाते और नरेंद्र आंखें मूंद कर लेटे लेटे उसे सुनते और इसी तरह सुन सुनकर उन्हें पाठ याद हो जाता।
0: उन दिनों उनके एक बुजुर्ग रिश्तेदार नृसिंह दत्त अपने पुत्र रामचंद्र दत्त के साथ नरेंद्रनाथ के घर में रहते थे। रात में नरेंद्र नृसिंह दत्त के साथ ही सोया करते थे। वृद्ध दत्त महोदय को संस्कृत का अच्छा ज्ञान था और उनकी धारणा थी कि कठिन विषयों को बचपन में सिखाने से बच्चे उन्हें आसानी से याद कर लेते हैं। सो वे रोज रात को नरेंद्र से बातें किया करते थे और उन्हें उनकी वंशावली, संस्कृत के श्लोक तथा स्रोत और संस्कृत व्याकरण के सूत्रों को याद करवाते थे। इस तरह नरेंद्र को बचपन में ही संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा का ज्ञान हो गया था। वे टूटी फूटी अंग्रेजी और संस्कृत भी बोलने लगे थे और बांग्ला तो उनकी मातृभाषा थी ही।
1: सन 1871 में जब वे 8 वर्ष के थे, उन्हें ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा स्थापित मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में भर्ती करा दिया गया। विद्यालय के शिक्षक गण एवं एक एक करके सभी उनकी बुद्धिमत्ता से उनकी ओर आकृष्ट हुए। पर एक दिन कठिन समस्या उठ खड़ी हुई। नरेंद्र ने अचानक अंग्रेजी भाषा सीखने से मना कर दिया। सभी लोगों ने बहुत समझाया कि आजकल अंग्रेजी सीखना आवश्यक है, नहीं सीखने से काम नहीं चलता। यहाँ तक कि वृद्ध नरसिंह दत्त महाशय ने भी समझाया, पर नरेंद्र की प्रतिज्ञा नहीं टली। इस तरह कुछ दिन चलता रहा। अंततः उन्होंने दत्त महाशय की बात मान ली और नए उत्साह से अंग्रेजी भाषा सीखने लगे। इतिहास और संस्कृत भी उनका प्रिय विषय रहा, पर गणित के प्रति वे विरक्त थे।
4: उनके पिता ने इसे सहज रूप से लिया और कहने लगे,
2: ठीक है, अगर बिले को गणित में रुचि नहीं तो ना सही, ये तो बनियों के दुकानों में काम आने वाला विषय है। बिले के आप पंसारी की दुकान खोलकर दाल चावल बेचेगा।
0: खेलकूद के प्रति नरेंद्र को बचपन से ही स्वाभाविक प्रेम था। उन्हें बहुत जल्दी पाठ याद हो जाता था और वे साथियों के साथ खेलने में मतवाले हो जाते। जलपान का पैसा जमा करके कंचा, बैट बॉल आदि खरीदते। क्रिकेट के खेल में वे दक्ष थे। परीक्षा निकट आने पर वे थोड़े ही दिनों की पढ़ाई में पास हो जाते। सभी खेलों में वे अगुआ थे। कभी कभी विद्यालय का कक्ष ही खेल का मैदान बन जाता। बच्चों में झगड़ा हो जाने पर वे ही मध्यस्थता करते। दो दलों में मारपीट हो जाती तो बीच में पड़कर वे ही दोनों दलों को अलग कर देते। ऐसा करते वक्त उन्हें भी एक दो घूंसे पड़ जाते, पर वे खुद भी मुक्केबाजी में प्रशिक्षित थे, इसलिए अपना बचाव कर लेते थे। स्वयं वे मारपीट बिल्कुल पसंद नहीं करते थे।
4: बहुत जल्दी पाठ याद करके वे क्लास में ही दोस्तों से गप्पे लड़ाने लगते थे। शिक्षक के क्लास में आकर पढ़ाना शुरू कर देने के बाद भी वे कहानी सुनाने में ही मशगूल रहते। रामायण महाभारत के कोई मजेदार प्रसंग छेड़ देते और बाकी दोस्त पाठ भूलकर उन्हें ही सुनते रहते। एक बार फुसफुसाहट से चिढ़कर एक शिक्षक छात्रों से पाठ पूछने लगे। कोई जवाब नहीं दे पाया। सभी चुप रहे, परंतु नरेंद्र का मन दो तरफा था। कहानी सुनाते सुनाते भी वे शिक्षक की बात सुन लेते थे। इसीलिए शिक्षक ने जब नरेंद्र से पाठ पूछा तो उन्होंने उसका जवाब दे दिया। शिक्षक ने पूछा, कौन बता रहा था? सबने नरेंद्र की ओर उंगली उठाई, पर शिक्षक ने विश्वास नहीं किया और नरेंद्र को छोड़ सबको बेंच पर खड़ा कर दिया। नरेंद्र भी खड़ा हो गया।
5: बेटा, तुम्हें खड़ा होना नहीं पड़ेगा, बैठ जाओ।
3: नहीं, मुझे भी खड़ा होना होगा, क्योंकि मैं ही तो बात कर रहा था।
0: एक रास्ता उन्हें भाती नहीं थी। बालक नरेंद्र पढ़ाई के साथ साथ नित नए खेल या मनोरंजन का साधन ढूंढते रहते। उन्होंने एक नाटक दल का गठन किया और वे पूजा घर के सामने के बरामदे में घर में नाटक खेला करते। पर एक चाचा ने आपत्ति की तो उन्होंने आंगन के एक किनारे व्यायाम का अखाड़ा बना लिया। मित्रों के साथ वहां वे नियमित व्यायाम करते। एक दिन एक चचेरे भाई का व्यायाम करते समय गिरकर हाथ टूट गया। चाचा ने नाराज होकर व्यायाम का सारा सामान तोड़ दिया। दुखी होकर नरेंद्र ने पड़ोस के नवगोपाल बाबू के जिम्नास्टिक के अखाड़े में नाम लिखाया। वहां उन्होंने लाठी भांजने, तलवार चलाने, नाव खेने, तैरने, कुश्ती तथा अन्य व्यायामों में दक्षता प्राप्त की। एक बार मुक्केबाजी में प्रथम पुरस्कार स्वरूप उन्हें एक चांदी की तितली मिली थी। लाठी भांजने में बालक नरेंद्र को बड़ा मजा आता था। अखाड़े में और अखाड़े के बाहर कुछ मुस्लिम उस्तादों से उन्होंने इस विद्या में महारत हासिल की थी।
4: जब उनकी उम्र महज 10 साल की थी, स्कूल में खेल प्रतियोगिता चल रही थी। नरेंद्र ने लाठी भांजने वालों को ललकार कर कहा,
3: मेरे साथ कोई खेलने को तैयार है? कोई भी चलेगा।
4: सबसे बलवान और अधिक उम्र का एक खिलाड़ी आगे आकर बोला,
6: तू ललकार रहा है, तेरी उम्र ही क्या है?
3: अरे, उम्र से क्या होता है, साहस हो तो आगे आओ।
6: अरे सुनो, इस बच्चे की बात तो सुनो। ला रे, एक लाठी तो दे, मैं भी इसकी छुट्टी कर देता हूँ।
7: नरेंद्र, क्या पागल हो गया है? इस पहलवान से तू क्या लड़ेगा, हार जाएगा रे।
3: पहले से ही हार मान लूं, देखूं तो आजमा कर।
6: शाबाश नरेंद्र, क्या पैतरा कसा है। अरे देखो तो, ये छोटा सा लाडला, अरे बराबरी से लड़ा जा रहा है, पर हार तो निश्चित है।
0: नरेंद्र ने पैतरा बदलते बदलते अचानक कुशलता पूर्वक हा की आवाज करते हुए प्रतिद्वंदी पर एक ऐसा प्रचंड आघात किया कि उसकी लाठी दो टुकड़े होकर जमीन पर गिर गई।
3: ये लो, संभालो।
6: अरे वाह नरेंद्र, वाह, क्या मारा है।
2: अच्छी शिक्षा पाई तूने नरेंद्र, तेरी शिक्षा सार्थक हुई।
1: वे अपने मोहल्ले के सबसे प्रिय पात्र थे। वे उन लोगों को मामा, छोटे चाचा, फूफा, मौसी, माँ, दादा, दादी, दीदी, भाई या बहन कहकर पुकारते थे। सबसे बुरे वक्त में वे ही सबसे पहले पहुंचकर उनकी मदद किया करते थे। उनके हास परिहास से बुजुर्ग भी बिना हंसे नहीं रह पाते थे। सभी के घरों में वे निसंकोच आते जाते थे। पिता ने उन्हें एक छोटा सा घोड़ा खरीद दिया था। घुड़सवारी में दक्ष हो जाने पर रोज शाम घोड़े पर चढ़कर घूमने जाना उनका शौक था।
0: सभी दोस्त नरेंद्र को बहुत चाहते थे, प्यार करते थे। वे भी सभी से इतना घुल मिलकर बातें करते थे कि सभी बच्चे समझते थे कि नरेंद्र उसे ही सबसे ज्यादा चाहता है।
1: एक बार एक पड़ोसी बुजुर्ग ने नरेंद्र से कहा,
8: अरे नरेंद्र, हमेशा मैं तुम्हें घूमते घामते या खेलते ही देखती हूँ। कभी पढ़ता लिखता भी है तू?
3: ताई जी, मैं दोनों ही काम करता हूँ।
0: बात सही निकली। परीक्षा में नरेंद्र ने सभी प्रश्नों का जवाब ठीक दिया। कविता, इतिहास, भूगोल, अंक गणित, भाषा, सभी में अव्वल नंबर मिले। परीक्षक ने खुश होकर पूछा,
5: नरेंद्र, सुना है तुम्हारे पिताजी आजकल लाहौर गए हैं, तो तुम्हारी देखभाल कौन करता है?
3: जी हाँ, पिताजी लाहौर में हैं, पर माँ तो यही है, और वो ही मुझे क्या करना होगा वो समझा देती हैं, और पढ़ाई तो मैं स्वयं करता हूँ।
5: बहुत अच्छा बेटा, ऐसा ही करते रहना। भविष्य में तुम जरूर बहुत बड़े आदमी बनोगे।

0: सन्यास के प्रति नरेंद्र को बचपन से ही अनुराग था। वे हमेशा सोचते रहते कि मौका मिलते ही वे सन्यासी बन जाएंगे। अक्सर ये बातें वे स्कूल के दोस्तों से कहते थे।
1: तुम लोग देख लेना, बड़ा होकर मैं सन्यासी बनूंगा।
2: क्यों?
1: ये देखो ना, मेरे हाथ में सन्यासी बनने की रेखा मौजूद है।
2: तुझे कैसे पता ये कौन सी रेखा है?
1: मुझे एक साधु ने कहा है।
0: फिर कल्पना के सहारे वे कहते जाते सन्यासी गण कैसे हिमालय जाकर तपस्या करते हैं।
1: हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी और उसमें गुफा के अंदर सन्यासी धुनी जलाकर ध्यान करते हैं।
2: वो क्या खाते हैं नरेन?
1: वो लोग तो फल फूल खाकर ही गुजारा करते हैं। पहाड़ों के जंगल में अनेक फलों के पेड़ हैं, वही तोड़ के खाते हैं। अगर मैं हिमालय में भी ना जाऊं, तो जंगल में झोपड़ी बना के रहूंगा और वही तपस्या करूंगा।
2: तुझे डर नहीं लगेगा? जंगली जानवर आ जाए तो क्या करेगा?
1: अरे जंगली जानवर कभी सन्यासियों पर हमला नहीं करते, और वैसे भी अगर तुम जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाओ, तो वे भी तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप निकल जाएंगे।
2: अच्छा?
1: हाँ, तभी तो कौपीनधारी जटाजूट वाले सन्यासीगण फल फूल खाकर भगवान के ध्यान में मग्न रहते हैं।

0: बढ़ने के साथ साथ उनके स्वभाव में एक परिवर्तन आया। वे पुस्तकों के अध्ययन, समाचार पत्रों के अध्ययन, सभा समितियों में उपस्थित रहने में रुचि दिखाते रहे। उनकी याददाश्त बहुत ही प्रखर थी, इसीलिए सभाओं से लौटकर साथियों को भाषण का सार तत्व कह देते थे और उन विषयों पर आलोचना भी करते थे।
1: उनका सौंदर्य बोध भी अपूर्व और मौलिक था। एक दिन एक दोस्त को गाते सुनकर उन्होंने कहा था,
2: सुर और ताल ही संगीत का एकमात्र अंग नहीं है। अगर कोई नकियाते स्वर में गाए तो क्या अच्छा लगेगा, आनंद मिलेगा। गीत के भाव को भीतर से फूट पड़ना चाहिए, शब्दों का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए और सुरताल तो ठीक होना ही है। जो संगीत श्रोता के मन में अनुरूप भाव जगा नहीं पाता, वो संगीत संगीत ही नहीं है।
0: सन 1877 में जब नरेंद्र तीसरी कक्षा में पढ़ते थे, उनके पिता विश्वनाथ काम के सिलसिले में उत्तरी और मध्य भारत में जाया करते थे। एक बार जब वे मध्य प्रदेश के रायपुर में थे तो कई महीनों के बाद उन्होंने अपने परिवार को रायपुर ही रहने के लिए बुला लिया। उन दिनों इलाहाबाद और जबलपुर होकर ट्रेन नागपुर तक जाती थी। नागपुर से रायपुर तक बैलगाड़ी में सफर करना पड़ता था, उसमें 15 दिनों से भी ज्यादा का समय लग जाता था।
1: ये सफर नरेंद्र के जीवन का यादगार सफर रहा। उनके साथ माता भुवनेश्वरी, बहनें और दो छोटे भाई थे। एक दो नौकर भी साथ चल रहे थे। नरेंद्र बैलगाड़ी में बैठकर दोनों ओर के जंगल और पहाड़ों की शोभा देखकर मोहित हो गए।

0: पहाड़ी इलाकों गुफा में झरझर करते झरने, वहीं एक पहाड़ी गुफा में उन्होंने मधुमक्खियों का एक विशाल छत्ता देखा था। देखते देखते बालक नरेंद्र ध्यानमग्न हो गए। मधुमक्खियों का विशाल साम्राज्य, उनका संगठन, कार्यक्षमता और अनुशासन की बातें सोच सोच कर उन्होंने कई सीख ले ली थी। रायपुर में अच्छे विद्यालय नहीं थे, अतः नरेंद्र अपने पिता के पास ही पढ़ते थे। पिता उन्हें सिर्फ किताबी शिक्षा ही नहीं देते थे, पुत्र के बौद्धिक विकास के लिए विभिन्न विषयों का विवेचन भी किया करते थे। दोनों में बहस छिड़ जाती और पिता पुत्र से हार मानने को भी तैयार रहते। वहां कई विद्वानों का आना जाना होता था, कई विषयों पर आलोचनाएं होती थी। बालक नरेंद्र हमेशा वहां बैठे ध्यान पूर्वक सबकी बातें सुना करते थे और मौका पाकर अपना विचार भी व्यक्त करते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और वैचारिक क्षमता का परिचय पाकर बुजुर्ग चकित हो जाते और उसे बालक समझकर उसकी अवहेलना नहीं करते। एक दिन नरेंद्र ने ऐसी ही एक सभा में बंगला के विख्यात लेखकों के गद्य एवं कविताओं का उदाहरण देकर पिता के विद्वान दोस्तों को चकित कर दिया था।
1: बालक नरेंद्र बहुत ही आत्मसम्मानी थे। छोटा समझकर कोई उनकी उपेक्षा करे, ये वे सहन नहीं कर पाते थे। एक बार उनके पिता के एक मित्र के उनकी अनावश्यक अवमानना करने पर नरेंद्र ने सोचा, जब मेरे पिता मुझे तुच्छ मानकर अवहेलना नहीं करते तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने उस सज्जन से विनम्रता पूर्वक कहा,
2: आपकी भांति ऐसे अनेक लोग हैं जो सोचते हैं कि किसी की कम उम्र होने पर उसमें ज्ञान विचार नहीं होता, किंतु ये धारणा बिल्कुल गलत है।
1: उस सज्जन ने देखा कि नरेंद्र आहत सर्प की भांति क्रुद्ध हो गए हैं और उनसे बात करने को भी तैयार नहीं, तो वे अपनी गलती मानने को विवश हो गए।
0: रायपुर में रहते समय उन्हें परिवार का भरपूर साथ मिला। वे अक्सर पिता के साथ खाना पकाते थे और इस तरह पाक कला में निपुण हो गए। एक और विद्या उन्होंने रायपुर में सीखी थी, शतरंज खेलना। ये खेल उन्हें बहुत पसंद आया, बहुत ही ध्यान लगाकर खेलते थे। इस छोटे से बालक के द्वारा शतरंज की गहरी चालों को चलाते देख सभी अचंभित हो जाते थे। नरेंद्र ने कई दिग्गजों को हराया था।
1: बालक नरेंद्रनाथ को कभी कभी इंद्रियातीत अनुभूतियां हुआ करती थी। किसी वस्तु या व्यक्ति को पहली बार देखकर उन्हें लगता था कि उन्होंने पहले भी उन्हें देखा है, पर कुछ याद नहीं कर पाते थे। लोगों से विचार विमर्श करते वक्त उन्हें लगता था कि पहले भी तो ये बातें सुन चुके हैं, पर याद नहीं कर पाते थे कि कहां सुन चुके हैं। बाद में जब वे पुनर्जन्मवाद से परिचित हुए तो उन्हें लगा कि ये सब बातें शायद उनके पिछले जन्मों में घटी थी, जिनकी आंशिक स्मृति इस जन्म में उन्हें रह रहकर याद आती। पर बाद में उन्होंने समझा कि ऐसा सोचना ठीक नहीं है। उनका बालक मन इन्हीं विषयों में उलझता रहता था। उनके पिता ने भी उन्हें समझा बुझाकर उन उलझनों से उनके मन को मुक्त किया था।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है। खुलकर

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजे हैं, हमारी यह सभा अब संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।